ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई सन 2026 सुबह के 8:55 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस, और उसके बाद में होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना 9:20 पर, और 9:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए, और उसके बाद में होगी गैर फिल्मी गजलें 10:00। आज आप सुनेंगे गाने पुराने ज़माने के, और 10:30 पर होगा गाने नए तराने नए।

आज शाम 5 बजे युवाणी प्रोग्राम के अंतर्गत आप सुनेंगे फोन करें गीत सुने महिला जगत कार्यक्रम होगा अपने तय वक्त पर 5:30 पर। एक बार फिर आप सुनेंगे 6:05 पर फिल्म संगीत और उसके बाद में 6:20 पर माटी के स्वर कार्यक्रम।

0: किसान वाणी कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे और उसके बाद में 7:30 पर एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात्रि के 8 बजे दिल्ली से आप सुनेंगे संसद समीक्षा और 8:30 पर आप सुनेंगे घूमर लोक संगीत। ये थे कुछ कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले खास। और अब सुबह के 9 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार, केंद्र सरकार ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी, 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग ये टीका लगवा सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। 12 जिला और बगरू विधानसभा क्षेत्र से आज मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। और प्रदेश में आमजन को राहत देने के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के फॉलो अप कैंप लगाए जाएंगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। औषधि महानियंत्रक ने टाकेड़ा बायो फार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा विकसित क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति प्रदान की है। कंपनी के अनुसार ये वैक्सीन 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वीकृत है और इसे डेंगू संक्रमण के पूर्व इतिहास की जांच के बिना लगाया जा सकता है। इसे यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ब्राजील, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना सहित 40 से अधिक देशों में मंजूरी मिल चुकी है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के रेफरल प्रबंधन को और मजबूत बनाया जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं, विशेषकर गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की नियमित निगरानी और समय पर उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर 104 और 108 एम्बुलेंस की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और मरीज को भेजे जाने वाले अस्पताल में पहले से सूचना दी जाए ताकि उपचार में देरी ना हो। बैठक में दवाइयों, रक्त और अन्य जरूरी चिकित्सा संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की खरीद निर्धारित नियमों के अनुसार करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौते के तहत करीब 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से सीकर, झुंझुनू और चूरू सहित आसपास के क्षेत्रों तक यमुना का पानी पहुंचाया जाएगा। इससे करीब 75 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शेखावाटी में जल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास पर काम कर रही है। साथ ही क्षेत्र की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
2: आपने देखा किस तरह से हमने शेखावाटी की 662 हवेलियां हमारी चिन्हित हो गई है, जिनको बनाने वाले, जिनको सुधारने वाले जो वहां के लोग हैं या ओनर है, वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के संपर्क हमारा धार्मिक आस्था का केंद्र है। लगातार आप देख रहे, तो खाटू श्याम जी के लिए भी हमने सरकार ने कहा है कि हम उनको भी अच्छी सुविधा करेंगे, उसका विकास करेंगे। सालासर हनुमान जी का भी विकास करेंगे, शाकंभरी माता भी है, जीर्ण माता भी है, उसके लिए भी काम करेंगे। और उसको कैसे नेटवर्क से जोड़ना है ये भी काम करेंगे। जब हमें किसी क्षेत्र का विकास करना है तो उसका नेटवर्क, सड़क नेटवर्क बहुत आवश्यक है।
1: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए जैसलमेर रेलवे स्टेशन के लिए अब एक और नई परियोजना की मंजूरी मिली है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने स्टेशन की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए 110 करोड़ रुपए 51 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत की है। इसका क्रियान्वयन रेलवे की गति शक्ति इकाई करेगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: स्टेशन पर दो नई रनिंग लाइन, दूसरी पिट लाइन, दो नए प्लेटफॉर्म, मौजूदा फुट ओवर ब्रिज का विस्तार तथा सेकेंड एंट्री स्टेशन भवन का निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों से स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव और परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अतिरिक्त रनिंग लाइन और नए प्लेटफॉर्म बनने से अधिक ट्रेनों का संचालन संभव हो सकेगा। दूसरी पिट लाइन तैयार होने से ट्रेनों के रखरखाव, धुलाई और तकनीकी जांच की व्यवस्था मजबूत होगी। पर्यटन सीजन में यात्रियों और ट्रेनों का दबाव बढ़ने को देखते हुए यह विस्तार परियोजना स्टेशन को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करेगी। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना का पायलट प्रोजेक्ट आज से जयपुर जिले के बगरू विधानसभा क्षेत्र और बारा जिले से शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज शाम वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर बारा के जिला परिषद सभागार में स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में युवा भाग लेंगे। योजना का उद्देश्य युवाओं को खेल, कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता और महिला सशक्तिकरण से जोड़ना है। इसके तहत विधानसभा स्तर पर केंद्रीय सुयोग युवा क्लब बनाए जाएंगे, जिन्हें पंचायत और वार्ड स्तर के क्लबों से जोड़ा जाएगा। इस योजना के माध्यम से युवाओं को खेल किट और कौशल प्रशिक्षण तथा खेल और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार

0: आयोग ने सवाई माधोपुर जिले के एक सरकारी विद्यालय में छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय में एक महिला शिक्षक के 1,000 रूपए खो जाने के बाद कक्षा 9 और 11 की छात्राओं की 2 शिक्षकों ने तलाशी ली और उन्हें कपड़े उतरवाने के लिए मजबूर किया। छात्राओं के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप है। घटना के विरोध में अगले दिन अभिभावकों ने विद्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि साइबर अपराध और नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ये बात उन्होंने पाली के सदर थाना परिसर में आयोजित सीएलजी बैठक में कही। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुड़दंग करने वाले बाइक चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा।
1: इसमें जो सिटी में जो पुलिसिंग का जो है उसका जो इवनिंग जो गश्त है उसको मजबूत करके शाम के समय जो मोटरसाइकिल या अन्य तरीके से जो हुड़दंग का प्रयास करते हैं उनके बारे में एक विशेष कार्रवाई करके जल्दी अभियान चला के उनके रोकथाम के प्रयास करेंगे। देखो नशे खत्म के लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं और आपने बताया यहाँ पर प्रचलन भी है और मुख्य रूप से यहाँ रूट्स भी है। पहाड़ी के दूसरी तरफ से जो ओपियम ग्रोइंग इलाके हैं उधर से अभी माने का ये रास्ता भी पड़ता है। इसके बारे में समय समय पर हम निर्देश देते हैं, नाकाबंदी भी कराते हैं और काफी मात्रा में पकड़ी भी जा रही है। उस पे और हम अधिक प्रयास करके इनको पूरा एक तरह से खत्म करने का पूरा हमारा प्रयास है।
0: प्रदेश भर में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के फॉलो अप कैंप शुरू हो रहे हैं। ये शिविर 31 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि इन शिविरों में राजस्व, पंचायती राज, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी और महिला एवं बाल विकास सहित 22 विभागों के आमजन से जुड़े लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसके असर से कई स्थानों पर बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में जयपुर सहित प्रदेश के करीब 16 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। धौलपुर जिले के बसेड़ी में सबसे अधिक 65 मिलीमीटर वर्षा हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। केंद्र के अनुसार मानसूनी परिस्थितियां अनुकूल हो गई है। इसके असर से आज और कल पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी। 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग ये टीका लगवा सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। 12 जिला और बगरू विधानसभा क्षेत्र से आज मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। और प्रदेश में आमजन को राहत देने के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के फॉलो अप कैंप लगाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमे चैनल है एफ एम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस।

श्री राम को वन गमन करना था, किंतु सीता को वन जीवन के कष्ट भोगने देना राजा दशरथ को स्वीकार्य न था। अतः उन्होंने मंत्री सुमंत्र से ये कहा था, यदि दो चार दिनों में वन में घूम फिरकर राम वापस लौटने को तैयार न भी हों, तो वो सीता को अवश्य लौटा लाएं। श्री राम ने कई प्रकार से सीता को अयोध्या वापस लौट जाने की सीख दी, किंतु सीता का एक ही उत्तर था, हे करुणामय और परम ज्ञानी, आप विचार कर देखें, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। मंत्री सुमंत्र से उन्होंने कहा, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितैषी हैं, आपकी बात का खंडन करना मुझे शोभा नहीं देता, किंतु अत्यंत आर्त होकर मैं आपके सम्मुख आई हूं। पति के चरण कमलों के अभाव में जगत के सभी नाते रिश्ते मेरे लिए व्यर्थ हैं।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह है पहली पेशकश।

0: अभी आपने सुनी ये भक्ति रचना जगजीत सिंह की आवाज में।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अभी आपने सुनी ये भक्ति रचना लता मंगेशकर की आवाज़ में। लीजिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं वंदना में ये अगली प्रस्तुति। आवाज़ कविता कृष्णामूर्ति की है।

युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना भी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए में। प्रोटेस्ट और हार्निया के सर्जरी पर आधारित डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई से मनोज कुमार की बातचीत।
1: पधारे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी बिश्नोई, जो कि नागौर के जवाहरलाल नेहरू JLN हॉस्पिटल में जनरल सर्जन के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब से आज हम प्रोस्टेट व हर्निया के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। आज हम जानकारी आपसे लेना चाहते हैं कि प्रोस्टेट व हर्नियों के क्या लक्षण हैं।
2: प्रोस्टेट सामान्य केवल पुरुषों में होती है, हर्निया महिला और पुरुष दोनों में होते हैं। प्रोस्टेट में पेशाब की प्रॉब्लम होती है, जैसे पेशाब का बार बार आना, रात को बार बार उठना, या पेशाब धीरे लगना, या पेशाब शुरू करने में समय लगना, या पेशाब करने के बाद में और पेशाब की इच्छा होना, या कभी कभी पेशाब का रुक जाना भी होता है। हर्निया में शरीर के पेट के अंदर के जो भाग होते हैं वो कुछ पेट की दीवार से बाहर दिखने लग जाते हैं, जैसे गुब्बारे के रूप में फुलाव आ जाता है। मरीज को दबाने पे उसमें गैस सी फील होती है, सोने पे वो अंदर चला जाता है, खड़े होने पे थोड़े बाहर आने लग जाता है, तो ये हर्निया में दिक्कत होती है।

0: ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये तो आपने प्रोस्टेट और हर्निया के लक्षण बताए। डॉक्टर साहब, हर्निया शरीर के अंदर विशेष तौर से कौन कौन से भाग में होता है?
1: हर्निया शरीर में जनरली पेट के विभिन्न जगहों पे होता है, पेट के सुंडी बोलते हैं, अम्बिलिकस की जगह पे हो जाता है, अम्बिलिकस से ऊपर हो जाते हैं जिसको अपन एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं, अम्बिलिकस के नीचे हो जाता है, वेंट्रल हर्निया हो जाता है, या दोनों कुल्लों में जहाँ होता है जिसको अंग्रेजी में ग्रोइन कहते हैं, जो इंग्वाइनल हर्निया सामान्यतः कॉमन हर्निया होता है, जो इंग्वाइनल हर्निया होता है। इसके अलावा शरीर के पेट के अंदर भी कहीं हर्निया हो जाता है जिसको अपन डायफ्रामेटिक हर्निया वगैरह बोलते हैं,
0: वो
1: ये
0: बाहर दिखाई
1: होता
0: नहीं
1: है
0: देता
1: जो
0: मतलब।
1: बाहर दिखाई नहीं देता है।
0: तो डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट हो या हर्निया हो, इसके लिए विशेष तौर से कौन कौन सी जांचें होती हैं?
1: प्रोस्टेट के लिए मरीज के लक्षण, मरीज लक्षण लेके आते हैं, उसकी एज देखी जाती है। प्रोस्टेट सामान्यतः 50 साल के ऊपर के लोगों में ही होती है, तो प्रोस्टेट के लिए हम सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं, उसे प्रोस्टेट के साइज के बारे में पता चल जाता है, पेशाब पूरा लगता है कि नहीं लगता है, ब्लैडर में कितना रहता है उसके बारे में पता लग जाता है। हर्निया के लिए सबसे, जांच के लिए सबसे अच्छी यही है कि डॉक्टर देख के उसको,
0: पता कर लेता
1: हाँ,
0: है परीक्षण
1: इवेल्युएट करता
0: वगैरह।
1: है, पता लगाता है कि हर्निया है या नहीं है। जांच में हम सोनोग्राफी करा सकते हैं, जरूरत पड़ने पे सीटी स्कैन वगैरह हो सकती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या जटिल हर्निया लगता है तो उसमें MRI वगैरह भी
0: करानी पड़ सकती
1: करानी
0: है।
1: पड़ सकती है।
0: तो डॉक्टर साहब, अपने इस JLM हॉस्पिटल नागौर में प्रोस्टेट हो या हर्निया हो, इसकी जांच के लिए सुविधाएं उपलब्ध है क्या?
1: हाँ, JLN हॉस्पिटल में प्रोस्टेट के लिए सोनोग्राफी उपलब्ध है, उससे संबंधित ब्लड की जांचों की सुविधा उपलब्ध है, हर्निया के लिए सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध है, जरूरत पड़ने यहाँ उपलब्ध है, JLN में उपलब्ध है।
0: उसके लिए कोई शुल्क है या निःशुल्क
1: नहीं
0: ही
1: नहीं
0: है?
1: नहीं बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता है, निःशुल्क सारी जांचें और सुविधा।
0: और डॉक्टर साहब, ये प्रोस्टेट हो या हर्निया हो, ये क्या होते ही हमें सर्जरी करा लेनी चाहिए या कुछ समय बाद, या आप क्या एडवाइस देते हैं रोगियों
1: नहीं,
0: को?
1: प्रोस्टेट शुरू में क्या होता है, हल्के लक्षण होते हैं तो वो दवाई से या उसके बार बार डॉक्टरों को दिखाने से समय, उसमें कई टाइम तक उसको अपन मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जब सीवियर लक्षण हो जाते हैं, पेशाब रुकने लग जाता है, पेशाब बार बार नलकी लगानी पड़ती है, तब उसके लिए सर्जरी ही एकमात्र इलाज है। हर्निया के लिए सर्जरी ही एकमात्र इलाज है, वो चाहे तो आप हाथ वात करा सकते हो, या आपके पास समय नहीं हो तो आप उसको महीने 2 महीने डिले कर सकते हो, लेकिन हर्निया का इलाज एक सर्जरी ही है।
0: कहने मतलब हर्निया है जो बिना सर्जरी के ठीक
1: हाँ,
0: नहीं हो
1: हर्निया
0: सकता,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: प्रोस्टेट दवाई
1: बिल्कुल
0: से काम चल सकता है।
1: सही है, हर्निया विदाउट सर्जरी ठीक नहीं हो सकता।
0: डॉक्टर साहब, आजकल गांवों में कई लोग झाड़ फूंक करते हैं, कोई कहते हैं वो पेट को बांध देते हैं, कोई वो कहते हैं जो अपने मिट्टी के बर्तन का चिपका देते हैं, ये तो एक क्या अंधविश्वास है,
1: हाँ, ये एक
0: तो
1: अंधविश्वास है,
0: लोगों को इसमें नहीं पड़ करके,
1: बिल्कुल
0: इसीलिए
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आपकी
1: बिल्कुल
0: क्या राय है संबंध में?
1: बिल्कुल, इसमें हाथों हाथ अपने नज़दीक के डॉक्टर को बताना चाहिए, उसे जरूरत पड़ती है, हाँ, उच्च स्तर पे सर्जन को सलाह ले, और उसमें आजकल ऑपरेशन की अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, और आप मिल करके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से या कहीं भी आप हो वहाँ, और इलाज करा सकते हो, सर्जरी एक सुरक्षित है और इजीली अवेलेबल है।
0: डॉक्टर साहब, जैसे प्रोस्टेट में कई बार लोगों को कैंसर भी हो जाता है, वो का की स्थिति पहुंचती है?
1: हाँ, नहीं, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है वो, उसमें लक्षण तो यही होते हैं जो प्रोस्टेट के होते हैं, जनरल ये लक्षण होते हैं, उसके अलावा कैंसर कई बार आगे फैल जाता है तो उसके दूसरे लक्षण होते हैं। सामान्यतः कैंसर के, प्रोस्टेट का कैंसर होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, और वो ज़्यादातर कैंसर प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद ही पता चलता है, लेकिन उसका भी समय पे अच्छा इलाज है।
0: और हर्निया में कोई ऐसी कैंसर होने की
1: नहीं नहीं नहीं
0: संभावना?
1: हर्निया में कैंसर की कोई संभावना नहीं है। हर्निया में कई बार शरीर के अंदर के जो पार्ट्स या ऑर्गन या अंग होते हैं वो बाहर आकर के फंस जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, ये फंस जाते हैं, तो वो उस टाइम एक इमरजेंसी स्थिति हो जाती है, और टाइम से सर्जरी यदि नहीं की जाती है तो वो अंग वगैरह गल जाते हैं, तब तो उस पर एक रिस्क बढ़ जाती है, सर्जरी लंबी हो जाती है, सर्जरी के बाद में रिकवरी में टाइम लगता है, और मरीज को खतरा भी रहता है।
0: जान का खतरा भी हो जाता है।
1: हाँ,
0: और प्रोस्टेट और ये दोनों सर्जरी कराने में रोगी को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
1: नहीं, सर्जरी करने से पहले रोगी की सामान्यतः जांचें होती है और उसके आधार पे सर्जरी होती है। सर्जरी कोई ज़्यादा लंबी नहीं चलती है और सर्जरी के बाद में रिकवरी में जो टाइम लगता है वो भी 2-1 सप्ताह का लगता है। कोई ऐसा कोई ज़्यादा उनको बड़ी सावधानी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
0: साथ में मेडिसिन और आप देते हो, कितने दिन लेनी पड़ती है?
1: और मेडिसिन उसमें कोई हर्निया में कोई ज़्यादा मेडिसिन की नहीं लेनी पड़ती है, सप्ताह भर की मेडिसिन ले लो बहुत है। प्रोस्टेट में मेडिसिन की कोई आवश्यकता ज़्यादा लंबी आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो भी 2 सप्ताह 3 सप्ताह बाद में ठीक हो जाते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, आप जो प्रोस्टेट या हर्निया के रोगी हैं, कई लोग हर्निया हो जाने पे मन में एक भय बन जाता है, डर बन जाता है कि हम इसकी सर्जरी कराएंगे, क्या पता क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, तो ये डर कितने हद तक रखना चाहिए या
1: नहीं
0: सर्जरी तुरंत
1: नहीं
0: करा
1: नहीं
0: लेनी
1: नहीं
0: चाहिए?
1: इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपके जब लगे कि मेरे एक शरीर के साथ कोई अलग हो रहा है, कहीं से शरीर फूल रहा है या एबनॉर्मल स्थिति हो रही है, तो आप जाइए डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो देख के आपको बता देगा कि हर्निया है या दूसरी प्रॉब्लम है। फिर हर्निया में यदि इमरजेंसी स्थिति नहीं है तो आप सर्जरी में आपके अनुसार टाइम सेट कर सकते हो, 15 दिन बाद में, महीना भर बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। और इमरजेंसी स्थिति हो तो हाथों हाथ ऑपरेट करना पड़ता है, लेकिन सर्जरी बहुत सुरक्षित है। इसमें सर्जरी एक खुला ऑपरेशन भी होता है जो ओपन हर्निया रिपेयर भी होती है, एक आजकल लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर भी होता है। तो दोनों के अपने नफे नुकसान हैं, लेकिन दोनों सुरक्षित है।
0: दोनों में क्या अंतर है आप सर्जरी करने में? उसमें जो लेक्रोस्कोप आप बोल रहे हैं उसमें काट छांट नहीं होती है?
1: लेप्रोस्कोप में काट छांट थोड़ी कम होती है, दूसरा उसमें रिकवरी पीरियड होता है वो थोड़ा ठीक होता है, जल्द कम होता है। रिकवरी पीरियड में पेशेंट जल्दी थोड़ा ठीक हो जाता है, और बाकी को कोई ज़्यादा बड़े तौर पे कोई इतना नहीं है।
0: और प्राय रोगियों में डॉक्टर साहब ऐसा भी देखा जाता है कि हर्निया एक बार ऑपरेशन करा लेते हैं तो दोबारा फिर से बन जाता है,
1: हाँ बिल्कुल, ये भी होता है, लेकिन ये सब में नहीं होता है, ये 1-2%
0: 1-2%
1: दोबारा
0: में
1: होता
0: होता
1: है।
0: है।
1: वो डिपेंड करता है उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो कैसा वर्क करता है, या हर्निया रिपेयर किया आपने उस टाइम का कंडीशन थी, वो उस पर निर्भर करता है।
0: तो ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हर्निया और प्रोस्टेट के बारे में विशेष तौर से आपने गहनता से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: कार्यक्रम में इनसे मिले में अभी आपने सुनी ये वार्ता डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई की, प्रोटेस्ट और हार्निया की सर्जरी पर आधारित। लीजिए सुनिए ये गैर फिल्मी गजलें।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं गाने पुराने जमाने के। यह है पहली पेशकश, फिल्म का नाम खानदान।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: आप सुन रहे हैं गाने पुराने जमाने के, लीजिए सुनिए ये अगला गाना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म खट्टा मीठा से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। अभी आपने सुना ये गाना फिल्म खुशबू से आशा भोसले की आवाज में। आइए इसी कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं ये अगला गाना फिल्म किनारा से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

लता मंगेशकर और शमशाद बेगम के गाए फिल्म किस्मत के इसी गीत के साथ गाने पुराने जमाने के अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं गाने नए तराने नए। यह है पहली पेशकश।

अभी आपने सुना ये गाना फिल्म आ गया हीरो से मीत ब्रदर्स और मीका सिंह की आवाज में।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अभी आपने सुना ये गाना फिल्म जंजीर से। सुखविंदर सिंह, शादाब साबरी, अनजान और मीत ब्रदर्स की आवाज़ में। लीजिए सुनिए गाने नए तराने नए की ये अगली पेशकश। फिल्म का नाम क्रेजी 4।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

अभी आपने सुना ये गाना फिल्म बागी 2 से श्रेया घोषाल और पेरी जी की आवाज़ में। ये गाना हमने लिया है फिल्म दबंग 2 से। वाजिद और ममता शर्मा, श्रेया घोषाल की आवाजें हैं। साजिद वाजिद का संगीत और जलीस शेरवानी के बोल हैं।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

इसी के साथ गाने नए तराने नए अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: छाया गांगुली के स्वर में आप सुन रहे थे महादेवी वर्मा का लिखा ये गीत। संगीत था जयदेव का, ये फिल्म का नाम था त्रिकोण का चौथा कोण। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया। एक और आ गया। जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: ये आशा भोसले की आवाज है, संगीतकार जयदेव।

0: धीरे।
1: मन्नाडे के स्वर में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, रचना थी श्याम सागर की।
2: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
3: वो तेरे प्यार का।
2: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
4: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
2: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
5: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
2: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
6: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
2: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
6: विविध भारती हर पल साथ हर पल खास।
5: बेचारा
7: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
6: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
7: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
6: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
8: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
7: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
6: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
7: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
9: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब सुने चंदन दास की गाई गजल। कलाम है निदा फाजली का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

पीनाज मसानी की आवाज थी, मुमताज राशिद का कलाम था। पेश है भूपिंदर की आवाज में ये गजल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं। मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन, गहरी चिंता और मजबूत एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस बीच सिक्किम में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने

0: शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत की पहली डेंगू वैक्सीन चोडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआई की भर्ती मामले में बंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे और बंगलौर के भोले भाले युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर कट्टरपंथी बना रहे थे। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 77,420 पर और निफ्टी 72 अंक गिरकर 24,167 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। इस समय महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की देविका सिहाग और पुरुष सिंगल्स में एसएस प्रणय अपने अपने मुकाबले खेल रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: अनुरोध फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
5: तो दोस्तों आज है 21 जुलाई और शाम 4 बजे आनंद बख्शी के बेटे राकेश बख्शी से बातचीत सुन लीजिएगा। फिलहाल आप आनंद बख्शी के लिखे गाने सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम है यादों की महफिल। फिल्म आपकी कसम, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत,

0: मोम की गुड़िया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में, रचना थी आनंद बख्शी की।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: चलते चलते एक गाना और सुन लेते हैं दुश्मन फिल्म का। ये आन मिलो सजना फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत, संगीतकार हैं उत्तम सिंह, फिल्म दुश्मन, रचना आनंद बख्शी की।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की प्रसारण। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देने वाला प्रस्ताव पारित किया। संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति ने अरावली पहाड़ियों और इससे जुड़े मुद्दों पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। समिति अरावली क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों का अध्ययन कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट 31 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति का गठन 25 मई को किया था। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात सहित अरावली क्षेत्र से जुड़े पर्यावरणविद, सामाजिक संगठन, खनन पट्टा धारक, किसान, ग्रामीण, श्रमिक और स्थानीय समुदाय अपने सुझाव दे सकेंगे। समिति अरावली के पर्यावरण और जैव विविधता के साथ ही इस क्षेत्र पर निर्भर लोगों की आजीविका से जुड़े विषयों पर भी विचार करेगी। संबंधित पक्ष 21 दिन के अंदर अपने सुझाव और आवश्यक दस्तावेज समिति को भेज सकते हैं। प्रदेश में कैंसर मरीजों को अगले महीने से उनके जिले में ही टेली मेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ उपचार की सुविधा मिलने लगेगी। कल जयपुर में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS की समीक्षा बैठक के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि जिलों के मेडिकल कॉलेजों को SMS मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श की सुविधा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि नई कैंसर गाइडलाइन भी लागू कर दी गई है जिससे मरीजों का उपचार और होगा। बैठक में RGHS में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली विकसित करने के निर्देश भी दिए गए। स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अनुसार अब ₹2,000 से अधिक की जांच के लिए आने वाले आवेदनों का निस्तारण 30 से 35 मिनट में किया जा रहा है। बांसवाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय में गंभीर मानसिक रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए नई उपचार सुविधा शुरू की गई है। चिकित्सालय के मनोचिकित्सा विभाग में स्किजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के चयनित मरीजों को अब रिस्पैरिडोन लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप राठौड़ ने बताया कि ये इंजेक्शन हर दो

0: सप्ताह में लगाया जाता है और नियमित दवा नहीं लेने वाले मरीजों के उपचार में उपयोगी है। इससे उपचार की निरंतरता बनाए रखने और बार बार अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम करने में मदद मिलेगी। बाजार में इसकी एक खुराक की कीमत करीब 3,500 से 4,000 रुपये है। बारहवीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। मेलखेड़ी रोड स्थित एक निजी विद्यालय में आयोजित नशा मुक्ति जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला न्यायिक अधिकारी सत्यनारायण टेलर ने विद्यार्थियों को नशे से होने वाले नुकसानों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
2: घटा सावन सजना कौन कौन से गाने हैं, इन शब्दों पर याद किया क्या आपने? जरा लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद हो वो भी लिखिए।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना था। हमने पूछा था आपसे गीतकार संगीतकार का नाम, बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। मजरूह सुल्तानपुरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और बहुत सारे श्रोताओं ने पप्पा जल्दी आ जाना सात समंदर पार से इस गाने के लिए लिखा है बहुत कुछ। और बहुत सारी टिप्पणियां आई है कि बचपन की गुड़िया, बचपन का संसार, लेकिन आज की इबारत में और भी तो बहुत कुछ है। तो वो जो टिप्पणी है हम पढ़कर सुनाएंगे जरूर, और वो गाना भी हम सुनवाएंगे, क्योंकि इतने सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमारी मजबूरी बन गई है वो गाना सुनवाना। और कौन से गाने आपके जहन में इस वक्त आ रहे हैं? और आज एक खास बात और है, हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, आनंद बख्शी कलम के वो जादूगर जिसने अपने रचे मधुर गीतों से सुनने वालों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि उन्हें भुला पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। बचपन के बारे में ऐसा लिखा कि लोग कहने लगे, आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का। महबूबा की तारीफ, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। और पूरी पूरी लाइनें भी लिखी हैं, और आगे लिखा है इन्होंने कि आनंद बख्शी कलम के वो जादूगर जिसने अपने हृदय रचे मधुर गीतों से सुनने वालों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि उन्हें भुला पाना नामुमकिन है। बिल्कुल सही फरमाया है। और अब बात आनंद बख्शी की चली है, आज उनकी याद का दिन है, विविध भारती से उनके बहुत सारे गाने प्रसारित किए जा रहे हैं, और शाम को 4 बजे भी उनके बेटे राकेश बख्शी से बातचीत आप सुन सकते हैं। तो चलिए फिर एक गाना आनंद बख्शी साहब के नाम, रोशन का संगीत है, आपको बूझना है फिल्म का नाम। इस गाने को सुनते हुए आपके जहन में कौन कौन से और गाने कौंध रहे हैं हमारी इबारत से जुड़े हुए? फिल्म का नाम बूझना है आपको, फटाफट बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। देवर लता मंगेशकर की आवाज थी, आनंद बख्शी की याद को समर्पित था ये गाना, रोशन का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है सही, और ये भी लिखा है कि धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर होते हैं इस फिल्म में। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम पहला गाना सुन रहे थे चलो सजना तो हमें याद आया काली घटा छाई प्रेम रुत आई, और एक श्रोता ने लिखा है कि इस गाने को सुनते हुए बाबुल की दुआएं लेती जा ये गाना।

अगरबा और नदी में नहाने जैसे कार्यों के करते पढ़ाई के लिए कब हरदा पहुंच गए कुछ याद ही नहीं। हाँ याद है पिताजी का झूले पर बैठकर अक्सर गुनगुनाया जाने वाला गीत, रुमझुम बरसे बादरवा, रुनझुन बरसे बादरवा मस्त घटाए छाए, और पिया घर आजा फिल्म रतन जोराबाई अंबाले वाली की आवाज में। आज के प्रोग्राम की सूची में ये गीत निश्चित ही सम्मिलित होगा ऐसा अनुमान है। भाई अनुमान हो सकता है, कई बार सच होता है कई बार गलत भी होता है, तो आप इंतजार कीजिए पूरे प्रोग्राम के दौरान। हाँ लेकिन ये जो झूले वाली बात याद आई है तो जरा हमारे बाकी श्रोता भी बताएं कि क्या आप भी झूले पर बैठकर पींगे मारे हैं, वो झूले वाली बात याद कीजिए, सावन वाली बातें याद कीजिए। गानों के साथ तो हम जाने कहाँ कहाँ की सैर कराते हैं मन के उड़न खटोले से, तो आप जरा याद कीजिए वो गाने और साझा कीजिए झूले वाली बात सावन वाली बात। अब एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया में न जाने कितने मूल्यवान उपहार बिखरे पड़े हैं, मगर पापा की लाई हुई वो प्लास्टिक की गुड़िया से ज्यादा अच्छा और कोई उपहार है। गुड़िया की शादी गुड्डे से और विदा के समय जब वो गुड्डे वाली सहेली कहती अब ये गुड़िया हमारी हुई, तो सारी दोस्ती भूल कर अपनी

गुड़िया के अलावा आपके पापा कौन सा तोहफा लाया करते थे शाम को जब घर लौटते थे तो? कभी जब आपके पापा खाली हाथ आते थे तो कैसा लगता था, जरा वो भी बताइएगा। क्या गुड़िया के अलावा कभी टॉफी चॉकलेट भी लाए?

तकदीर फिल्म का गाना था लता मंगेशकर और सुलक्षणा पंडित, मीना पत्के और साथियों की आवाजें थी। गीतकार संगीतकार आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आनंद बख्शी की याद को समर्पित था ये गाना और बहुत सारे श्रोताओं ने लंबी तादाद में इस गाने का जिक्र किया और अपने पापा के तोहफों का जिक्र किया। एक श्रोता ने लिखा है कि पापा का साथ होना ही सबसे बड़ा उपहार होता है, बहुत ही भावुक कर देने वाला गीत है ये। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गुड़िये गुड्डे से तो नहीं खेल पाया हूं, लेकिन मेरी धर्मपत्नी मुझे बताती हैं कि वो उनकी बहनें बचपन में अपनी गुड़िया और दूसरे बच्चों के गुड़िया के साथ आपस में मिलकर शादी कराते थे, खूब मजे करते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी साहब के लिए लिखा है कि आनंद बख्शी जी ने गीत सिर्फ लिखे नहीं, उन्हें लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया गया। उनके शब्द इतने सहज थे कि हर कोई उसमें अपना एहसास, कोई रिश्ता, कोई याद ढूंढ लेता है। शायद यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है, सादगी में गहराई और हर दिल तक पहुंच जाने वाली बात। बिल्कुल सही फरमाया है कि सीधे सादे अंदाज में, सरल भाषा में गहरी बात लिखना बहुत मुश्किल है। एक श्रोता ने लिखा है कि भई आज तो पूरी लिस्ट वायरल हो गई है, आप तो प्रश्न करते रहिए, जवाब देते रहेंगे। तो हमने तो आपसे प्रश्न किया है कि अब बताइए कि आनंद बख्शी साहब के कौन से गाने इस वक्त आपको याद आ रहे हैं। कोई एक गाना अगर आपसे कहा जाए, चुनकर बताइए कि आपका बेहद पसंदीदा गाना, तो क्या आप सब बता सकेंगे? अगर बता सकते हैं तो जरा बताइए, हम भी देखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी साहब वो शख्सियत हैं जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया में कभी एक जैसा किसी का नसीब नहीं होता है जो

जिससे बच्चा उससे खेलने लगता है और रोना बंद कर देता है। माँ बच्चों को झूले में सुलाकर उस पर डोरी पर गुड़िया लटका देती थी, जिससे झूले के साथ गुड़िया हिलती रहती थी। पर अब वो बचपन है क्या? अब वो गुड़िया है क्या? अब तो नकली गुड़िया आती हैं और अब मोबाइल है, अब मिलता रहता है, बस यहीं से स्क्रीन की लत लग जाती है। आप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं जरा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक जमाना वो भी था कि बिजली, बंगले, सड़क, गाड़ियां, मनोरंजन के तमाम साधन बिल्कुल नहीं थे, फिर भी सजनी को साजन का और साजन को सजनी का इंतजार होता था। बिल्कुल सही बात कही है आपने। कैसे मिट्टी के तेल से जलते माटी के दीपक की रोशनी में हम लोग मिले थे। बड़ी मान मनोवल के बाद वो हमारे पास तो आई और शरारत से दिया बुझा दिया कि हमें शर्माती है, फिर अंधेरे में दीपक रोशन हुआ था और जिंदगी भर का साथ बन गया। और आज बेटे, नाती, पोते बहुत कुछ है। तो सचमुच तब मोबाइल और सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। रिश्ते बड़े प्रगाढ़ होते थे, आंखों की भाषा होती थी, होठों की भाषा होती थी। तो आप अपने अनुभव साझा करते चलिए। फिलहाल बहुत सारे श्रोताओं ने आनंद बख्शी के अनगिनत गाने लिखे हैं और उनमें से एक गाना हमने चुना है ये। तो आपने क्या ये गाना चुना था? याद कीजिए और बताइए इसमें हीरो हीरोइन कौन है। फिल्म महबूब की मेहंदी। गीतकार का नाम तो अंदाजा लगा ही लिया होगा आपने, संगीतकार का नाम जरा बूझिए।

महबूब की मेहंदी, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं? भाई आप अपने अनुभव ही तो बताइए कि आपने अनुभव किया ऐसा कुछ कि आपने कभी ये गुनगुनाया हो गाना किसी और के लिए, या किसी ने आपके लिए ये गाना गुनगुनाया हो। हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और लीना चंदावरकर। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि धन्यवाद, आपने ये गाना सुनवाया, मेरी भी पसंद का गाना था। किसकी पसंद नहीं हो सकती भला। हमने संगीतकार का नाम भी आपसे पूछा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और गीतकार आनंद बख्शी। और आनंद बख्शी के गानों के लिए जब हमने पूछा कि कौन सा गाना पसंद है, तो ये गाना भी आपकी पसंद में शामिल था। और बहुत सारे गानों का जिक्र किया है हमारे श्रोताओं ने, और

को मेरी बड़ी बिटिया ने एक वाक्या बताया कि उसकी एक सहेली के दांत पूरी तरह खराब हो गए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जो हमने पूछा था कि झूले पर कौन सा लोकगीत गुनगुनाते थे, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मिर्जापुर कैल हो गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैल बलमू सोने की थाली में जेवना परोसल, और दो तीन लाइन और लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की वो प्यारी यादें पापा का प्यार धीरे धीरे जवानी के दहलीज में बढ़ते

स्वाद, खट्टे मीठे अनुभव, सब कुछ जीना सिखा दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक पिता के द्वारा लाई गई गुड़िया सचमुच हर बिटिया के लिए एक अमूल्य उपहार होता है। ये वात्सल्य रस की प्रतीकात्मक और कोमल अभिव्यक्ति है, जिसमें पिता का निश्चल स्नेह, हृदय से जुड़ी भावनाएं रहती है। यहाँ गुड़िया का भौतिक अस्तित्व ममता की मूर्त की भावना को दर्शाता है। सचमुच एक गाने ने कैसे आप सबको द्रवीभूत कर दिया है, और कौन ऐसा शख्स है जो ये गाना जो हमने सुनवाया था, पापा जल्दी आ जाना गुड़ियों के बाजार से, गुड़िया चाहे ना ले ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, सचमुच एक मर्म है इस गाने में। और अभी तो हमने महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना सुनवाया, इससे जुड़ी हुई कोई खास बात आपके जहन में है तो वो भी बताते चलिए। और अब बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है गुल और बुलबुल वाला गाना कब आएगा, ये आ गया, लेकिन आपको पहेली का जवाब देना है कि कौन है इसमें हीरो, कौन है हीरोइन। त्वरित जवाब दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा शायद हीरो हीरोइन का नाम। गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं आप।

क्या ये गाना सुनते हुए आपको कोई कहानी भी याद आती है? कहानी की शक्ल में ये गाना लगता है ना।

हैं। हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, टिप्पणियां खत्म नहीं हो रही हैं। शशि कपूर और नंदा, एक श्रोता ने लिखा है, बहुत ही मासूमियत भरा सुपरस्टार हिट गीत है मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ में। और एक श्रोता ने लिखा है कि अद्भुत अभिनय था इस फिल्म में शशि कपूर का और नंदा का। कश्मीर की वादियों में फिल्माया गया ये गाना सुनने में खूबसूरत है, देखने में भी उतना ही खूबसूरत था। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि जहां तक मुझे याद है हमारे नाना जी ने कोई कहानी नहीं सुनाई, नानी और दादी जरूर सुनाती थी, देश के वीर जवानों की कहानी सुनाया करती थी। कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि अपने क्रांतिकारियों के बारे में कहानी सुनाना जैसे हम भूल गए हैं, बच्चों को जरूर सुनाइए ऐसी कहानियां। कहानियां सुनने से एक तो उनकी कल्पना शक्ति में विस्तार होता है, वरना तो वो मोबाइल में जो कहानियां देख लेते हैं उसमें उनकी सोचने की क्षमता कमजोर होती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे गांव की सच्ची घटना है, दो लोग गुल और बुलबुल की तरह प्यार करते थे, जब उन्हें घर वालों ने एक न होने दिया तो वो दोनों साथ में जान दे दिए। उफ, ये तो दर्दनाक बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि सच में ये गीत कहानी जैसा लगता है, जैसे कोई अपना पराया सा साथी कुछ बता रहा हो और हम उनसे हर बात बड़े ही भोलेपन से पूछ रहे हो। ये आनंद बख्शी की गीतकारी की कमाल है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम ऐप पर सुन रहे हैं गाने तो आधे मिनट देर से पहुंचते हैं, लेकिन हम जवाब तो रेत देते हैं। आ गया आपका जवाब भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि धर्मपत्नी के साथ अगर नोकझोंक ना हो तो जीवन में मजा ही ना आए, मैं तो जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ देता हूं तो वो लेक्चर शुरू कर देती है और मन ही मन में हंसकर खुश होता रहता हूँ। भाई ये तो बड़ी शरारत है। अगर आपकी श्रीमती जी सुन रही हो तो एक तरह से अच्छी बात है, अगर उन्हें गुस्सा आता हो तो गुस्सा उनका ठंडा भी हो जाता होगा। एक श्रोता ने लिखा है कि गौरवशाली बचपन के गुड्डे गुड़िये की गाथा गान कर जवानी के दहलीज के दहकते दहन को दर्शाती है आज की ये इबारत। और एक श्रोता ने लिखा है कि उस जमाने में गाने बनाने वालों ने बेहतरीन गाने बना दिए और गीतकार आनंद बख्शी के लिए इन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मेरे बच्चे

कि प्यार मोहब्बत जब आपने किसी से किया और आपकी पत्नी या आपके पति ने क्या बातें कही, ये गाना सुनिए और कभी आपने भी इस तरह की बात कही एक दूसरे से, क्योंकि जिंदगी में प्यार बहुत

फिल्म थी वो कौन थी? सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। ये हमारा सवाल था। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और मदन मोहन का संगीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मनोज कुमार और हेलेन अभिनेत्री, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि कमाल है ये गाना, हमने भी सोचा था, मेरी पसंद का था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे कहानियां सुनाने का बहुत ज्यादा शौक है, नाना नानी दादा दादी तो इस तरह दुनिया में नहीं रहे, मगर हाँ उनकी कहानियां जरूर याद आती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 38 साल हो गए ये कहते और दोहराते हुए, अब तो बच्चे हंसते हैं, कहते हैं पापा डिजिटल युग में नया गीत अपनाइए। उनको समझाइए कि हम अपने युग का गीत गा रहे हैं, आप अपने युग का गीत गुनगुनाइए, लेकिन गुनगुनाइए जरूर। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी मेरे पास ही बैठी रेडियो पर विविध भारतीय सुन रही है।

रतन फिल्म का गाना जोहराबाई अंबाले वाले की आवाज में, रचना थी डीएन मधुक की, संगीतकार नौशाद, और ये हमारा सवाल था। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है सही जवाब, कुछ श्रोताओं ने गलत भी लिखा है, लेकिन इतने जवाब नहीं आए जितने कि अन्य गानों के लिए आए थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो प्यार के इजहार का सबका अलग सा अंदाज है, पर होता बड़ा ही प्यारा है। रूठना मनाना, कभी कभी बात न करना, हमारे साथी तो रूठ कर खाना नहीं खाते थे, बड़ा ही मुश्किल होता था उन्हें मनाना। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह क्या पूछ लिया, जिंदगी अंतिम पड़ाव में पति जी से बड़ा प्यार और इजहार सुनने को मिला, लगता है सारी कमी पूरी हो गई। जब प्यार से कहते हैं तुम अपना ध्यान रखा करो, तुमने सोचा तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, अभी मैं 74 वर्ष हूँ। क्या बात है भाई, आपने तो हमारे जज्बात को छू लिया, और अच्छा लगा कि उम्र के इस पड़ाव में एक दूसरे से आप इजहार करते हैं और ये बात आपने यहाँ पर लिखी। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज बहुत सारे गाने हमारे और आपके मिले, हमें भी अच्छा लगा। एक श्रोता ने लिखा है कि शब्दों के साथ साथ थोड़ी सी इमोजी भी हम भेज दिया करते हैं, बस अपने जज्बात का इजहार जरूरी है। अब जरा घड़ी की ओर देखिए, घड़ी की सुइयां तो आगे निकल गई है। चलिए अब कार्यक्रम को यहीं पर समेट लेते हैं। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: आइए सुने त्रिवेणी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और

हमारे जीवन में फूलों का विशेष स्थान है। पूजा पाठ, त्योहारों, विवाह समारोहों और शुभ अवसरों पर फूल का उपयोग किया जाता है। हर फूल अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, जो पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। फूल केवल सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फूलों से मधुमक्खियां और तितलियां आकर्षित होती है, जो परागण की प्रक्रिया में सहायता करती है। इससे पेड़ पौधों का जीवन चक्र चलता रहता है और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। फूलों से हमें जीवन में कई तरह की सीख मिलती है। जिस प्रकार फूल कांटों के बीच रहकर भी अपनी खुशबू फैलाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी कठिन परिस्थितियों में अच्छाई और प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। फूल हमें विनम्रता, मुस्कान और दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने की प्रेरणा देते हैं।

सूखे हुए फूल केवल मुरझाई हुई पंखुड़ियां नहीं होते, वे अपने भीतर बीते हुए पलों की अनगिनत कहानियां संजोए रखते हैं। किसी किताब के पन्नों में दबा हुआ फूल किसी पुराने उपहार की तरह हमें उन खूबसूरत यादों की दुनिया में ले जाता है, जहां भावनाएं हमेशा ताजा रहती है। जब कोई हमें प्रेम, स्नेह या सम्मान के रूप में फूल देता है, तो वह केवल फूल नहीं, बल्कि अपने मन का एक कोमल भाव

मुलाकात की निशानी कभी किसी खास अवसर की स्मृति तो कभी किसी अपने के स्नेह का प्रतीक बनकर सूखे हुए फूल जीवन के अनमोल पलों को संभाल कर रखते हैं और खत में भी भेज दिए जाते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य

0: खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
0: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
1: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
3: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है, पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है तो भारत के युवा समझदार युवा उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना
4: होती है। सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: ये विविध भारती दोहराया।
5: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
1: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
6: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
1: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोफ को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोफ से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही

0: 46 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रुपए से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय msshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामचि जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

लोफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आज के सदाबहार नगमे प्रोग्राम में हम याद कर रहे हैं गीतकार आनंद बख्शी को। सुनिए अगला गीत उन्हीं का लिखा हुआ, किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

0: चाहते हो आखिर? तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए? वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है? हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: कटी पतंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज।

0: आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमक हराम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं चुपके चुपके फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। लिखा है इसे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है मंदाकिनी जी, तो आपको भी मंदाकिनी जी मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं।
1: सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी प्यार भरा नमस्कार, हमारे सभी सखियों और हमारे सखाओं को और साथ में मंजरी आपको भी
0: जी।
1: और मिलना जुलना तो होता ही रहता है, देखिए जैसे मौसम बदलता है ऐसे

सखा है उनसे हम ये कहना चाहेंगे, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। इसका आपको वर्णन नहीं करना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुहावरे का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, आपको बताना है ऐसा कोई प्रसंग जो आपकी जिंदगी में घटा हो। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप खिसियानी बिल्ली बनकर खंबा नोच रही होंगे, है ना।

0: इन यादों के साथ भी होता है ना मंदाकिनी जी।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए बचपन का जो बिताया पल है वो घर शहर अगर मोहल्ला की बात करें गांव है गलियां हैं, हम उन दिनों क्या क्या इस्तेमाल करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा रहन सहन था, कैसा खान पान था, घर में सीमित साधन होते हुए भी उसमें मिलकर हम त्योहार मनाते थे, कैसे मनाते थे, उनकी रौनक सब आंखों में याद करते ही तैर जाती है और कहीं ना कहीं मन को बड़ा सुकून मिलता है। यही यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं और परेशानियों में उन्हें याद कर मुस्कुरा भी उठते हैं कि कैसे थे वे दिन, हम कितने खुश रहते थे उसकी सबसे बड़ी।
0: तो रिश्तों में प्यार होता था, एक लगाव होता था मंदाकिनी जी, और अपनापन होता था, या कोई भी मेहमान या रिश्तेदार आते तो लगता था कि वे अपने साथ खूब दिन रुके, और उनके जाने की तारीख ये बहुत जाने की उत्सुकता बनी रहती थी कि वो कैसे भी पता चल जाए कि वो कितने दिन यहां रुक रहे हैं, कब जाने वाले हैं। तो उसी हिसाब से वो दिन बिताने मौज मस्ती करने के बारे में हम लोग सभी लोग ऐसा सोचा करते थे। फिर उनके रहने पर तरह तरह के जो घर में पकवान बना करते थे, तो छत पर देर रात तक की बातें करना, बच्चे बच्चों के संग खेलते थे, नदी नहर तालाब पर जाना, नहाना, खेत घूमना और पेड़ों पर झूलना आदि, बाग से फल तोड़ना चुराना, ये सब बहुत सारी यादें हैं जो एकदम से जुड़ जाती हैं उन्हें।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बचपन का वो जो समय था हमारे लिए इतना कीमती था कि आज भी हम उसे भुला नहीं सकते हैं। न जाने कितनी यादें थी, लालटेन में पढ़ते थे, कुछ बच्चे शाम होते ही खुले आसमान में चांद तानों को निहारते हुए सोते थे, और सब आज ही कहकर याद करते हैं कि क्या दिन थे वो भी। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था और ऐसे हमारे जमाने में वैसा होता था, ऐसे

0: सुकून कहाँ, अब तो हर दर्द की सीमा पार है। जो यादों में थे वो मुस्कुराते मिलते हैं, सामने हैं। अच्छा ये भी आपने बता दिया है कि हमारे श्रोता कहते हैं कि जो सामने लोग मिल रहे हैं वो हमें झूठी मुस्कान के साथ मिलते हैं।
1: जी
0: ऐसा नहीं है, हम सखियां तो आपसे सच्ची मुस्कान के साथ मिलती है
1: बिल्कुल
0: हमेशा,
1: जी
0: है ना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादों में सुकून तो सच में बहुत मिलता है, कितनी सारी पुरानी बातें हैं जिनको हम हटाना नहीं चाहते हैं, और बच्चे कहते हैं अभी हम हटाइए दूसरा लाइए, और ये एक माया है जिससे लगाव मन में रहता है, उसे हटाना नहीं चाहता, फिर उसको जब छोड़

0: तो
1: तो
0: बहुत अच्छा गीत सुनवाया भी आपने, यादों का मेला तो हमारे साथ लगा ही रहता है।
1: जी
0: और हमारी श्रोता लिख भी रही थी कि वो जब अलमारी खोलती हैं और पुराने कपड़े देखती हैं, बहुत सारी चीजें जो अलमारी में पड़ी हैं वो उनकी यादों में सजीवी, और फिर वो खो जाती हैं यादों में, अलमारी खोलती कई देर हो जाती है।

पुरस्कार 2014 में, भारत गौरव पुरस्कार 2016 में, JITO बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 में, टाइम्स पावर वुमेन पुरस्कार 2019 में और ग्रोथ बिट्स वुमेन आइकॉन पुरस्कार 2021 में मिला आपके पति शैलेश लोढ़ा, जो एक कवि और अभिनेता लेखक भी हैं। और जी, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा का मानना है कि सफलता केवल अच्छी शिक्षा से नहीं बल्कि सही सोच, अनुशासन, निरंतर सीखने की इच्छा और सकारात्मक दृष्टिकोण से मिलती है। वे युवाओं को अपने सपने पर विश्वास रखने, चुनौतियों से सीखने और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। तो ऐसी सफल महिला से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम लोग बढ़ते हैं एक गीत की ओर।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर

0: तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं उफ घरों में सामानों की उठाई धराई के बारे में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब पहले का समय होता था मंजरी, आज भी लगभग यही होता है, लेकिन कुछ अंदाज तौर तरीके बदल गए हैं। उठा धराई के काम का कहीं अंत तो होता नहीं। सुबह होते ही घर की महिलाएं या घर के लोग जो है घर के सामानों की उठा धराई में ही लगे रहते हैं। उनके दो हाथ 10 के बराबर हो जाते हैं। जिधर से निकले वहीं से सामान को झाड़ना पोछना सही से रखना शुरू कर देती हैं, खासतौर से महिलाएं। जो सामान जहां से उठाया वहीं रख दिया। परिवार में सबको समझाते हुए वो थकती नहीं कि वे सभी चीजें सही समय पर रखें, मगर भला किसी के कान में कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी जू तक नहीं रेंगती।
0: और एक समय था घर के छोटे बड़े दोनों तरह के घर हुआ करते थे मंदाकिनी जी, लेकिन सलीका बड़ा होता था। घरों में हर चीज अपनी जगह तय होती थी। दादी अम्मा कहती थी कि जो चीज जहां से उठाओ वहीं रख दो। अब यही छोटी छोटी सी आदत घरों को व्यवस्थित भी रखती थी और समय भी बचाती थी। पहले घरों में रसोई में तरह तरह के डिब्बे हुआ करते थे, आपको याद होगा है ना, और उनमें रंग से हम पहचान जाते थे कि अरहर की दाल के जो है वो है डब्बा है वो उसका ढक्कन जो है वो हरे रंग का है। चावल के डिब्बे का नाम बिगड़ चुका है, घिस चुका है, और चीनी के डिब्बे का ढक्कन चूहा कुतर गया है, लेकिन डिब्बा नहीं बदला क्योंकि चींटी जाने की जगह नहीं उसमें हो पाई थी, है ना। तो जब माँ या दादी की रसोई कितनी भी उनकी छोटी सी दुनिया जैसी होती थी, आंख बंद करके भी वो बता देती थी कि चाय की पत्ती वाला डिब्बा दाईं तरफ तो दूसरे खाने में रखा है और जीरा उसके ठीक पीछे। सच पूछिए तो मंदाकिनी जी, उस जमाने में डिब्बे भी शायद अपनी जगह छोड़ने से डरा करते थे, है ना। और कोई बहू भला अम्मा की धराई को इधर उधर कर भी देना तो डांट पड़ने के आसार बन जाते थे, बल्कि क्या है कि पढ़ ही जाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे उनका हम सभी कहना भी मानते थे, उनका सम्मान भी करते थे। जैसा कि आज बच्चे भी चिल्लाकर माता पिता को डांट देते हैं, यूं कहें कि टोक देते हैं कि क्या मम्मी आप रोज शोर करती हैं या क्या पापा, है ना। तो पहले अनुशासन होता था और सबसे मजा आता था जब बक्सा जब हम खोलते थे, अम्मा का संदूक खुलता था और कोठरी में अम्मा अपने उस बड़े से बक्से को संवारती थी। बच्चे फुदकते कंधे पर लटक जाते थे या पास में बैठकर उनके सामानों को निहारा करते थे और देखते थे कि दादी अम्मा का क्या खजाना है। ऊपर करीने से तह की हुई साड़ियां होती थी, उनके बीच में नीम की सूखी पत्तियां जो आज तो कहीं दिखाई भी नहीं देती हैं, और कहीं कपूर की हल्की सी खुशबू होती थी, और अम्मा की पल्लू में डिबिया बटुआ छुपा लेती जिसमें उन्होंने एक एक पाई जोड़ी होती थी। तो इस तरह का नजारा हमें याद आता है।
0: बिल्कुल। और उस बक्से में ना जाने कितनी सारी चीजें निकलती थी, जैसे चांदी के सिक्के, चांदी की सोने की सुपारी और चांदी की चश्तरी, कोने मुड़े हुए टूटे, और दादा का खत भी उसमें होता था मंदाकिनी जी, और पोटली में पुरानी आरती संग्रह, दुपट्टे में लिपटा श्वेत श्याम फोटो का एल्बम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का एल्बम, और उसकी यादों में खो जाती थी, और बच्चे पूछने लग जाते थे ये कौन वो कौन। यानी ये भी उठाई धराई का एक हिस्सा होता था। जब संदूक खुलता था तो उसमें यादों में ही आदमी खोया रहता था, व्यक्ति खोया रहता था। और अब अम्मा जो थी अपनी साड़ी के पल्लू में संदूक की चाबी बांध कर रखती थी, कभी कमर में खोज लेती और कभी अगर कोई पूछ भी बैठे कि अम्मा चाबी कहाँ है तो वो मुस्कुरा कर यही कहती भाई तुम्हें उससे क्या काम।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: ये सब बातें भी उस समय बेहद याद आती हैं।
1: हाँ बिल्कुल, यही नजारा होता था जो आप अभी पेश कर रही हैं हमारी सखे और सखियों को। सूती बनारसी रेशमी साड़ी तो कहीं चमकी ले गोटे का गोला, जिसकी जो है जरी पीली पड़ चुकी होती थी, शादी के लहंगे से निकला हुआ, वो भी संजो कर रखा होता था। छोटी पोटली, 2-3-5 के सिक्के, बिछिया की कई जोड़ियां, घिसी हुई टूटी पायल जो शायद किसी को बनवाने को तो नहीं बोल पाई, एक संकोच मन में रहा होगा अम्मा के, और या अब नई मिल गई होगी, नई पहन ली होगी कि कभी इसको ठीक करवा के फिर से पहन लूंगी। और कंगन मोतियों की मालाएं जो थी, कजरोटा, शीशा कंघी, दुर्जनिया तंबाकू का डिब्बा और उसमें धरे सूती धागा, और वो सुई बटन हुक न जाने क्या क्या, मतलब कपड़ों को धूप दिखाई जाती थी, छत पर जाकर कपड़े सुखाए जाते थे, बक्सा झाड़ा जाता था, उन्हें फिर से धरा जाता था, और इसी में पूरा समय गुजर जाता था।
0: बिल्कुल। और कितनी सारी यादें पास चली आती थी। और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों को धोना, सुखाना, धूप दिखाना, रजाई गद्दे धूप में डालना, पलटना, फिर वापस धरना, घर भर के कपड़ों की सिलाई ठीक करना, अलमारी बक्से जमाना, यानी गर्मी आने से पहले ही वापस इन ऊनी कपड़ों को समेटना, और पापड़ चिप्स कचरी जाने क्या क्या बढ़िया है इन सबको बनाना, और बारिश से पहले पीपे भरकर सब रख लिया जाता था, और दिन महीने साल साल उसकी उठा धराई के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और सब काम एक अभियान जैसे होते थे, और जैसे लगता था घर आंगन में एकदम मेला लग गया है।
1: और किसी के कोई शिकन या शिकायत नहीं होती थी चेहरे पर कि हम थक गए हैं या सारे दिन हम काम ही करते रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं, सब मिलकर घर को संवारते थे। बड़ा प्यारा नजारा होता था। मुझे याद है मेरी मौसी कहा करती थी कि हम गेहूं में तेल लगाकर उसको सुखाया करते थे, फिर उसको डब्बे में भरा करते थे। तो हम पूछते आप थकती नहीं है, कहती काहे की थकान, सब मिलकर काम करते हैं। तो घर के सभी सदस्य जानते थे कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कहाँ रखी है और कहाँ मिलेगी, और इसीलिए काम भी जल्दी होता था और बिना कारण जो भाग दौड़ हुआ करती है आज के जमाने में वो नहीं होती थी। आले ताके जिनमें लालटेन, कुप्पी, मोमबत्ती, माचिस रखी रहती थी और लाइट जाने पर हाथ बढ़ाकर जला लिया जाता था उसे। हाथ के पंखे होते थे और खटिया, पलंग, तकिए सिराने पर भी वो रखे होते
0: आराम
1: थे।
0: हाँ। मिल जाते थे आराम से, है ना?
1: जैसे ही लाइट गई हमारा हाथ जाता था या दादी अम्मा का, नानी का, और उठाकर पंखा जलना शुरू हो जाता था।
0: तो ये भी एक सही एक सामान को रखने का तरीका था कि एक जगह रखते थे, और घर का बड़ा हो या छोटा, सामान कम हो या ज्यादा, हर चीज का अपना एक ठिकाना होता था। शाम को पूरा परिवार मिलकर घर समेटता था, चारपाई अपनी जगह अखबार तय करके रख दिया जाता था, सिलाई का डिब्बा बंद होकर अलमारी में चला जाता था। सुबह घर ऐसा लगता था जैसे रात भर किसी ने प्यार से उसकी छोटी सी गूंद दी हो।
1: बिल्कुल सही कह रही हो मंजरी
0: जी।
1: लेकिन अब आते हैं हम आज के दौर पर जहां बिल्कुल सब कुछ अलग हो गया है। कभी चश्मा यहां, मोबाइल वहां, चाबी किसी मेज पर, रिमोट सोफे के नीचे, मतलब आधा समय कहां है सामान, कहां है मेरे मोजे, कहां है मेरा मोबाइल, इसी धुन में जो है पूरे घर में हंगामा बना रहता है आज के समय में। और सामान ढूंढने में लगभग पूरा समय, ऑफिस को लेट हो जाते हैं लोग बाग, लगता है जैसे घर का हर सामान रोज अपनी जगह बदलने की कसम खाकर बैठ गया हो।
0: बिल्कुल। और बच्चों के कमरे तो बिल्कुल अलग ही होते हैं कि उनमें चाहे जैसा भी सामान रखा हो तो बच्चे चाहते भी नहीं कि आप उनको समेटिए, वो कहते हैं कि भाई आप रहने दो माँ। और अब तो माओं का भी धैर्य छूट गया है कि भाई उन्हें लगता है कि क्या करना है इनका समेट के, तो फिर फैलाएंगे, क्योंकि वो भी जॉब कर रही, थकी आई है तो खाने में भी समय देना है उन्हें। तो जो उनके लिए अब क्या हो गया, छुट्टी वाला ही दिन उठाई धराई का हो गया है।
1: बिल्कुल। नौकरी पेशा जो महिला है ना, उन्हें संडे बहुत प्यारा होता है, पता है मंजरी? जब उन्हें कोई रविवार को बाहर बुलाता है तो वो जाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि पूरा दिन वो संडे का इसी काम में बिताती है। तो आज सुविधाएं बढ़ गई है, सामान भी इतना बढ़ गया है घर में, दुनिया भर की अलमारियां, दुनिया भर की हमने सामान उठा के घर में भर लिए हैं, और कहीं भी हम इधर उधर रख देते हैं तो फिर ये आवाजें लगाने का सिलसिला है, कभी खत्म नहीं होता, भाई मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है।
0: यानी कहने का मतलब ये कि जो उठाई धराई का जो काम था वो उस समय महिलाएं पूरे दिन भर इसी में लगी रहती थी, और कोई शिकवा शिकायत नहीं, चेहरे पर शिकन तक नहीं होती थी। तो आज के समय में है कि भाई अगर कोई आपका कर रहा है काम तो आप मिलकर हाथ बटाइए, और उठा धराई थोड़ी कम हो गई लेकिन आप अपना सहयोग दीजिए।
1: हाँ, तो मंजरी इसका अंत में जो इन सभी बातों का जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि घर की शांति जो है केवल सुंदर सजावट से नहीं आती बल्कि छोटी छोटी आदतों से आती है। जब हर वस्तु अपने स्थान पर हो तो मन भी शांत रहता है और समय भी बचता है, और घर स्वर्ग जैसा लगता है।
0: बिल्कुल। और हम लोग सुनते हैं गीत।
1: बिल्कुल।

0: हाँ दुबंजरी, अभी
1: फिर
0: हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार लिखे हैं कि भाई हल्की फुल्की बातें घर में सामान की जोठा पटक है, बहुत ज्यादा रोचक है ये विषय। जब हम घर में किसी सामान को एक नई जगह से सेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा मजा भी आता है, या कभी कभार झगड़ा भी हो जाता है कि नहीं, इस सामान को इस जगह पर रखना है, इस जगह पर नहीं रखना। इसमें परिवार वालों के अलग अलग मत हो जाते हैं, सबकी अलग अलग मर्जी होती है, किसी को वो सामान यहाँ जचता है, किसी को वहां जचता है, मुझे यहाँ मजा आ रहा है, और ये बहुत छोटा छोटा झगड़ा होने लगता है लेकिन मजेदार होता है। और लास्ट में सामान जहां पर भी रखा जाता है वो देखना पड़ता है कि अक्सर गृहिणियों की पसंद ही होती है कि लास्ट में घर की जो महिला है, मुख्य महिला, वो क्या चाहती है, वहीं पर सामान रखा जाता है।
1: और एक साथी लिखते हैं, जहां घर जहां लोग रहते हैं वहां रखी चीजों की जगह बदलती रहती है, कभी सफाई के लिए, कभी सजावट के लिए, और कभी बदलाव के लिए। इससे घर की सफाई होती है, बेकार वस्तुओं की पहचान होती है और घर अधिक व्यवस्थित बना रहता है। साथ ही इस बहाने से कई पुरानी खोई चीजें मिल जाती है जो भूली बिसरी यादों को फिर से ताजा कर देती हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखती है कि घर के सामान की उठापटक कई बार लगता है, अच्छा ये चीज यहाँ नहीं वहां रख कर देखते हैं, अच्छा ये सामान यहाँ नहीं वहां रख कर देखते हैं, और ऐसा करते करते फिर चीज की सही जगह कौन सी है ये भी भूल जाते हैं।
1: और एक लिखते हैं कि उफ, घर में सामानों की उठापटक और घर में गूंजती आवाजें, जरा ये अलमारी इधर सरका दो, वो डिब्बा ऊपर रख दो, अरे ये सामान यहाँ किसने रखा। बस यहीं से शुरू हो जाती घर में सामानों की उठापटक। इसी बीच अचानक कोई पुरानी तस्वीर, खोया जरूरी सामान, या किसी अपने का लिखा हुआ पत्र मिल जाए तो चेहरे की थकान पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इस उठापटक में कभी चाबी नहीं मिलती, चश्मा गायब हो जाता है, या फिर अन्य कोई जरूरत की चीज, फिर जवाब मिलता है अभी तो यहीं रखा था। ऐसे में झुंझलाहट और गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन उठापटक करते समय धैर्य भी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और खत है हमारे संदेश के रूप में कि सामान की उठापटक का मौसम आने ही वाला है, ये कहीं आ ही गया है, यानी त्योहार का मौसम, अगस्त माह से तैयारियां आरंभ हो जाएंगी, और इसमें शामिल रहेगा घर की सफाई, रंग रोगन, पर्दे बदलना, इन सबको करते करते कुछ तो सामान की उठापटक होगी ही, कुछ शरीर की भी, कभी गिरते हैं, कभी सामान उठाते हुए लड़खड़ा जाते हैं, कभी बड़ों की आवाज आती है, संभाल कर रखना भाई, गिरना नहीं गिराना नहीं, कहीं आवाज आती है अभी मजा, अभी यहां से हटा दो, बस यही करते करते कुछ टूट भी जाता है, कुछ बिखर भी जाता है।
1: यानी बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं।

0: और इसी की तरह देखिए मुहावरों की दुनिया में भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, जो हमने आज दिया था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे पर, तो इस पर लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया भी अजब गजब की है, जहां हमें गागर में सागर जैसा अनुभव होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यहाँ नोचने का अर्थ झटकने से खींचना, उखाड़ना या खरोचना होता है। जो व्यक्ति अपनी गलती के कारण शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय क्रोधित होकर दूसरों पर गुस्सा निकालता है, उसी पर यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है, मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि मुहावरों की दुनिया बड़ी निराली है। अभी हाल ही में मैं एक कहानी संग्रह की समीक्षा लिख रही थी, क्या बात है, और उसमें कहानी की नायिका बहुत खूबसूरत है और कुछ ऑफिस के कर्मचारी उसके बारे में तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं। मैं उस एक जगह पर अटक गई और फिर वहीं बड़ी देर तक कुछ नहीं सूझा, तो मैंने इसी मुहावरे का प्रयोग किया और इस मुहावरे के प्रयोग से मेरी समीक्षा को तर्क मिल गया, क्योंकि साथी कर्मचारी जब हर तरह से असफल हो गए तो नायिका के बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाने लग गए।
0: तो चलिए एक पहले गीत सुन लेते हैं, फिर हम आगे और संदेश पढ़ते हैं।
1: चलिए।

0: तो बात चल रही थी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे क्या है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि अपनी असफलता या लज्जा पर गुस्सा होना और झुंझलाट को किसी निर्दोष पर या व्यर्थ की चीजों पर निकालना। मुहावरे की उत्पत्ति और भाव, जब तक कोई बिल्ली किसी चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन चूहा भाग जाता है, बिल्ली पकड़ी नहीं पाती, उसे पकड़ नहीं पाती और शर्मिंदा होकर पास खड़े खंभे पर अपने नाखून गड़ाने लगती है। इसी स्थिति को इंसानों की इस मनोदशा से जोड़ा गया है, जहां व्यक्ति अपनी गलती या कमजोरी स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष मन देता है और मतलब का गुस्सा दिखाता है। वाक्य प्रयोग से बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ कुछ उन्होंने उदाहरण भी दे दिए हैं, जैसे हम अपने परीक्षा पेपर में देते हैं। हमारे श्रोताओं ने भी बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण लिखकर हमें भेजे हैं।
1: और इसके साथ ही एक लिखते हैं, किसानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी ही गलती होने पर खुद पर शर्मिंदा होना और गुस्सा करके किसी पर भड़ास निकालना या किसी चीज को नोच डालना, इन्होंने लिखा है। और इसी के साथ ही एक साथ लिखते हैं कि किसानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का अर्थ किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है, अन्य विकल्प असंगत है, अतः सही विकल्प किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है। एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है कि तुम खुद परीक्षा में पास नहीं हो सके और मास्टर जी पर दोष लगा रहे हो, ये तो वही बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
0: वही एक श्रोता ने लिख रहा है कि एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, अपनी सफलता या शर्मिंदगी के कारण गुस्सा होना और उस झुंझलाहट में दूसरों पर गुस्सा निकालना, यानी बेमतलब की उल्टी सीधी हरकतें करना। जब कोई व्यक्ति किसी काम में नाकामयाब हो जाता है या उसे अपनी ही गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है लेकिन वो उस गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो अपना गुस्सा या खीज किसी और चीज पर निकालता है। घर में भी अगर बड़ों का मन किसी बात पर खराब है तो अपनी खीज बच्चों पर हम निकालते हैं और अपने से छोटे पर भी हम निकालते हैं। इसे ही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
1: और एक साथी लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब कोई गलती पर शर्मिंदा ना होना गुस्सा किसी पर उतारते हुए क्रोधित हो जाए, ऐसी ही कहावत गुज जाती कि लाजवाने बदले गाजवू, शर्मिंदा ना होकर गुस्सा करना, इन्होंने लिखा है।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में और अन्य संस्थानों में देखा जाता है कि वहाँ उच्च अधिकारी अपनी खुद की असफलता के कारण उसे छुपाने के लिए कार्यस्थल पर कर्मचारियों पर क्रोधित हो जाते हैं और वो फिर अपने घर पर बेचारी पत्नी और बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं। इस मुहावरे का चरितार्थ करते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, जो कि बहुत ही गलत बात है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि घर परिवार रिश्तेदार में खिसियानी बिल्ली वाले बात हमेशा ही होती है। रिश्तेदारी में ही दो बहनों में कुछ मनमुटाव हो गया, जबकि उसमें से एक बहन बैठने पर कुछ कुछ बात बोल रही थी, दूसरी बहन को लगा कि ये उन लोगों की बात हो रही। उस समय तो कुछ नहीं बोली, बाद में वो हम ही लोग से उलझ गई और हमें समझ में नहीं आया कि इसके पीछे इतनी ये आग बबूला क्यों हो रही है। सबके सामने कुपचिकी चिल्लाई, बाद में जब उसे पता चला तो हम सब में से ये कहकर खूब हंसे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
0: और एक आखिरी और है संदेश, वो लिखते हैं कि पुराने समय में घी, दूध, मक्खन को छत पर रस्सी का छीका बांधकर सुरक्षित रखा जाता था, ताकि बिल्ली उछलकर भी वहां तक नहीं पहुंचे। जब बिल्ली वाकई में चढ़ने के लिए खंबे नोचती है तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंचती तो फिर वो खंबा नोचने लग जाती है।
1: तो चलिए इसी के साथ सुन लेते हैं।

0: तो मंदाकिनी जी देखिए, बातें करते करते प्रोग्राम एकदम समापन की ओर आ गया है, तो चलते हैं, लेते हैं सबसे विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: आज है जाने माने गीतकार आनंद बख्शी का जन्मदिन। वो गीतकार जिसकी गीत यात्रा 1958 से शुरू हुई तो पूरे 44 साल चली, यानी तकरीबन 5 दशक का सफर। इस सफर में आनंद बख्शी के गानों ने कभी हमें रुलाया,
1: जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई,
0: कभी थपकी दी और बहलाया।

0: हमारी खुशियों की साझेदारी की।
1: जय जय शिव शंकर, माता लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का।
0: कभी इन गानों ने हमारी मोहब्बत का

0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने और कुछ सुने किस्से आपके साथ शेयर करेंगे। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मुझे खुशी है कि मैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर आया हूँ। 1950 में बख्शी साहब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली में गए थे
0: जी,
1: उन्होंने वॉइस टेस्ट दिया था
0: उद्घोषक बनने का।
1: हाँ जी, और वो फेल हो गए थे।
0: बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी और खुद से एक वादा किया था जो सारा मामला है। पर सोचिए कि ये कनेक्शन बख्शी साहब का रेडियो के साथ है। एक और कनेक्शन है, जब उनका पहला गाना उन्होंने रेडियो पर सुना था, यहीं से बातें शुरू कर।
1: चुन्नू पतंग को कहता है काई,
2: चुन्नू पतंग को कहता है काई, बोलो बेटा टिंगू ये रंग है या राइट,
0: बोलो जी ये रॉन्ग है या राइट।
1: पहली बार उन्होंने अपना गाना सुना था
0: जी,
1: एक गली में दिल्ली में घूमते घूमते, अरे ये तो मेरा गाना बज रहा है। तो उनका जो बचपन का सपना था कि एक दिन मेरे गाने बजेंगे रेडियो पर
0: जी,
1: वो उस दिन पूरा हुआ।
0: क्या बात है। तो ये बख्शी साहब का जो रेडियो कनेक्शन है, उसके अलावा एक और कनेक्शन है, आप जानते हैं क्या? वो ये है कि दुनिया का कोई भी रेडियो स्टेशन जो फिल्मी गाने बजाता है, कोई दिन ऐसा

0: नहीं हो सकता जब बख्शी साहब के गाने नहीं बजते हो।
1: यस, और एक और कनेक्शन है
0: अच्छा
1: कि उनकी जो जीवनी है
0: जी
1: उसको ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में आरजे यूनुस खान ने किया।
0: जी,
1: वो भी
0: ये मेरा सौभाग्य है,
1: तीसरा कनेक्शन बन गया।
0: जी जी बिल्कुल। तो शुरू से शुरू करते हैं, बख्शी साहब कहाँ पैदा हुए थे और वो जो खानदान था वो किस हैसियत का खानदान था, वहाँ लोग क्या क्या काम किया करते थे?
1: तो बख्शी साहब पैदा हुए थे भारत में, फिर उसका विभाजन हुआ, भारत में रावलपिंडी में पैदा हुए थे, 17 साल उन्होंने रावलपिंडी में गुजारे और फिर विभाजन हुआ तो फिर वो पाकिस्तान बन गया।
0: जी,
1: तो 1947 में वो इंडिया आए,
0: सरहद के इस पार आ गए।
1: हाँ, जो उनके 17 साल थे वो उन्होंने एक गाना है उनका, मेरे देश में पवन चले पुरवाई।
0: जी,
1: मेरे देश में
0: बिल्कुल।
1: तो वो कहते हैं कि अगर मैंने गांव की जिंदगी नहीं जी होती तो ऐसा मैं गाना लिख ही नहीं पाता।
0: क्या प्यारी बात।
1: अगर मैंने वो गाना लिखा है इसलिए क्योंकि मैंने वो पानी पिया है, खेतों में नहा हूं, खेतों से अनाज उठाया है।
0: इसीलिए जिगरी दोस्त का वो गाना जो है वो इतना सुंदर बन पड़ा है।
1: हाँ,
0: उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है।
1: हाँ, पवन चले पुरवाई।
0: हाँ,
1: क्योंकि जिसे कि हमारे खुले गांव में,
0: हाँ,
1: सबसे ज्यादा मजा जो है वो एक आकाश का होता है, खुला आकाश, और दूसरा पवन।
0: बिल्कुल,
1: पवन का जो मजा है और जो बरसात का मजा है, पवन और खुले आसमान के नीचे, उसकी वो बातें बहुत करते थे।

0: उनको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। उन्होंने
1: वो जब रावलपिंडी से दिल्ली आए थे तो एक छोटी दवाई की शीशी में, खाली शीशी में वो मिट्टी भी लाए थे रावलपिंडी की, और जिंदगी भर उन्होंने वो मिट्टी रखी थी अपने कबर्ड में उस बॉटल के अंदर।
0: मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं कि जो मिट्टी से प्यार, जो गांव से प्यार है, उसकी एक मिसाल है मेरे देश में। पवन चले पुरवाई में बख्शी साहब लिखते हैं, अमवा की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियां हो पतझड़ मस्त बहारें जैसे, पत्थर भी हैं तारों जैसे मेरे गांव की गलियों के, मेरे खेत की मिट्टी ने सोने की मूरत पाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। ये गांव की मिट्टी से उनका प्यार था।
1: अमवा की

0: ये गांव वाले लिख सकते हैं। और एक रावलपिंडी की मिट्टी, पिंडी की मिट्टी, उसका
1: पिंडी कहते थे जी, रावलपिंडी नहीं कहते थे।
0: उन्होंने एक कविता लिखी है, उसका जिक्र कीजिए।
1: उन्होंने वो कविता लिखी थी क्योंकि उनको क्या होता है, वो भले वो विभाजन हो गया और एक दूसरा देश बन गया
0: जी,
1: लेकिन जन्म तो वही हुआ था ना।
0: बिल्कुल,
1: तो उनके लिए वो जन्मभूमि है। जब इंसान अपनी माँ से बिछड़ जाए 5 साल की उम्र में, तो वो भी तो मिट्टी है, वो भी तो एक भूमि क्या होती है, वो भी तो पैदा करती है ना। भूमि गर्भ होती है, गर्भ में से ही सब निकलता है ना, अनाज निकलता है, पानी आता है। तो वैसे ही जब माँ भी गुजर गई 5 साल की उम्र में, और मिट्टी भी रह गई पीछे 17 साल की उम्र में, तो एक जो दर्द महसूस होता है कि वो जो एक मातृभूमि है वो चली गई, दोनों माँ चली गई, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसकी कोख से जन्म लिया। तो इसलिए वो ऐसी उन्होंने ये कविता लिखी थी, कविता का नाम है
0: पिंडी की मिट्टी। तो मेरा सौभाग्य है कि वो कविता मैंने पढ़ी है। एक किताब है बख्शी साहब की कविताओं की, जिसमें वो संग्रहित
1: मैं जादू हूं चल जाऊंगा
0: जी,
1: उसमें लिखी, मेंशन की हुई है।
0: बख्शी साहब के बचपन की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ बांटिए। जैसे वो बच्चों के साथ खेलते थे, वो सिनेमा, साइकिल, गाना, ये सारी चीज।
1: क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे दादाजी, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे।
0: अरे ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई,
1: सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ एंटायर पंजाब, ऑल द जेल्स,
0: पंजाब प्रांत,
1: पूरा प्रांत, अनडिवाइडेड पंजाब का जो जो जेल्स थे वो जेलर थे, उसकी वजह से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेरी बिग, वेरी पावरफुल मैन। उनका उनका जो घर है अभी कुछ 3-4 साल पहले ही वो डिमोलिश हुआ है, 3 मंजिल का घर था वो। और ही वॉज द ओनली चाइल्ड फैमिली जिनके पास साइकिल थी। तो वो साइकिल भी इतनी खास चीज थी तब कि जब वो कहीं भी जाते थे साइकिल छोड़ आते थे, कोई ना कोई घर में साइकिल छोड़ जाता था वापस,
0: सब पहचानते थे
1: कि दरोगा जी के पोते की साइकिल है ये।
0: क्या कहलाती है, मोहियाल,
1: मोहियाल, मोहियाल। हाँ, पंजाबियों में एक कम्युनिटी होती है मोहियाल्स
0: जी।
1: तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, अभी मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं, मोर देन 50% रिलेटिव्स हमारे आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में है, बिकॉज वी आर अ मार्शल क्लैन
0: जी जी।
1: हाँ, वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, क्षत्रिय ऑफ सोसाइटी। और उनको शौक था फिल्मों का, और फिल्म देखने के लिए पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे फिल्म का काम करना या फिल्म देखना कंजरों का काम होता था,
0: खराब माना जाता।
1: हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहां पे पास में, तो वहां पे वो टेम्पररी नौकरी ले लेते थे कभी हफ्ते में 2-3 दिन। क्यों, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में।
0: अरे गजब।
1: हाँ, क्योंकि अगर आप सिनेमा में काम करोगे और लोगों को सीट बताओगे सीट कहाँ बैठना है, या डोरमैन का काम करोगे स्कूल के बाद, तो फिल्म पूरी देखने को मिलती है फ्री में। तो फिर दादाजी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, फिल्म देखने को मिलने में नहीं वाले। तो ये उनका टाइम पास होता था कि चलो मैं इसी बहाने फिल्में देखूंगा। तो जिस दिन पिताजी को पता चला कि इसने ऐसी नौकरी पकड़ी हुई है टाइम पास,
0: और जबकि वो बच्चे थे उस वक्त,
1: बच्चे थे और स्कूल की पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहे थे, और जाके इधर नौकरी कर रहे थे सिनेमा हॉल में फ्री में फिल्म देखने के लिए, तो जो उनके दादाजी की जो छड़ी थी, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी कि तुमने ऐसा क्यों किया जब हमारे को पैसों की जरूरत ही नहीं है, और तुम भी ये काम कर रहे हो, गलत काम है ये फिल्में देखना, अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है। इतना शौक था उनको
0: जी जी।
1: और वो करीब कुछ 12-13 साल की उम्र से ही नज़्में लिख भी रहे थे, उसकी धुन भी बनाते थे, उसको गाते भी थे, और उसपे एक्टिंग भी करते थे।
0: वाह वाह।
1: क्योंकि जब मोहल्ले में रामलीला होती थी
0: जी,
1: तो उनको भी पकड़ा जाता था, डायलॉग मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए रामायण का। तो जितने भी हमारे कल्चरल फेस्टिवल होते थे हिंदू के, तो उसमें सारे में बख्शी साहब टीनेजर को बुलाया जाता था, अरे वो बख्शी को बुलाओ, अरे वो दरोगा जी के पोते को बुलाओ, वो अच्छा लिखता है, अच्छा गाता है, अच्छी एक्टिंग करता है। तो सब कर लेते थे, लिख भी लेते थे, उसको धुन भी बना देते थे, गा भी लेते थे, उसकी एक्टिंग भी कर लेते थे।
0: और उनका ख्वाब बंबई जाने का था।
1: हाँ, फिल्में देखते तो पता चलता है ये कहाँ बनी है, बंबई से बंबई में बनती है। अच्छा, बंबई किधर है,
0: समुद्र के पार है।
1: समुद्र के पार है, तो उनको ये था कि मैं बंबई जाऊं, लेकिन उनको पता नहीं था बंबई क्या है, ये कि बंबई में फिल्में बनती हैं।
0: हाँ।
1: तो अगर गाना गाना है या गाना लिखना है या एक्टिंग करनी है या धुन बनानी है तो बंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो गांव में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं।
0: एक छोटे से बच्चे को ये समझ में आ गया कि उसकी मंजिल बंबई है।
1: हाँ। तो जब वो 14 साल के थे उनको नेवी में भर्ती किया गया, क्योंकि हमारी सारी एंसेस्ट्री नेवी में थी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या पुलिस, बिकॉज दे वर अ मार्शल क्लैन।
0: तो 14 साल की उम्र तो बहुत कम होती है, तो कैडेट बन गए वो।
1: कैडेट, यू वाज़ अ नेवल कैडेट, और उनकी भर्ती हुई दो शिफ्ट थी, INS हिंदुस्तान और INS दिलावर, इन दो शिफ्ट में पढ़ाई जाती थी नेवल की जो पढ़ाई है।
0: और ये तो अंग्रेजों का जमाना था।
1: हाँ, 1942। तो जो पहला साल उनका नेवी में था कराची पोर्ट में, तो वहां म्यूटिनी शुरू हो गई। तो जो मिटनी हुई वो बंबई में हुई, बॉम्बे पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, मद्रास पोर्ट और कराची पोर्ट।
0: ये जो बगावत थी नेवी
1: बगावत
0: की, ये बहुत मशहूर है,
1: बहुत मशहूर है,
0: इसका
1: बहुत।
0: इतिहास में दर्ज है इसका।
1: पहली बगावत, सेकंड बगावत थी जब ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि हम इस देश पर राज नहीं कर सकेंगे
0: जी।
1: क्योंकि देखिए आम आदमी प्रोटेस्ट करे तो वो तो करेगा प्रोटेस्ट, लेकिन अगर आपकी नेवल फोर्स आपके अगेंस्ट चले जाए, आपकी आर्मी आपके अगेंस्ट चली जाए, आपकी पुलिस आपके,

0: कू बन जाता है, दे कैन बी अ कू.
1: हाँ बिल्कुल
0: तो दैट
1: बिल्कुल
0: इज वेन दे रियलाइज यार ये तो इन पे राज करना मुश्किल होगा.
1: जी
0: तो उन्होंने उसमें भाग लिया था. और उनका जो ये जो उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी ना, नेवी इसलिए नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि वो पेट्रियोटिक थे. उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी कि कराची में बोट में पढ़ाई होती है, शिप में पढ़ाई होती है, और वो शिप में घुमाते हैं. तो जब मेरी शिप बंबई जाएगी, मैं शिप से जंप मार के भाग जाऊंगा, नेवी छोड़ के भाग जाऊंगा और जाके फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा.
1: अरे
0: तो
1: अरे अरे
0: उनका जो गोल था वो देश के लिए नहीं था नेवी
1: हाँ
0: ज्वाइन करना. वो जो देश के लिए गोल था वो जब म्यूटिनी हुई तब पैदा हुआ. वहां उनको एहसास हुआ क्योंकि जब वो पकड़े गए सब और जेल हुई, तो तब उनको उनमें ये एक एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं. तब तक उनको वो गुलामी का एहसास नहीं था,
1: क्योंकि उम्र भी बहुत कम थी
0: बहुत कम थी.
1: जी
0: और क्या होता है कि दादाजी भी पुलिस में है, सच पावरफुल पोस्ट, तो आपको कोई गुलाम की तरह रखेगा नहीं ना, तो आपको गुलामी का एहसास नहीं होता. तो जब भी इनको कराची में अरेस्ट किया गया, जब म्यूटिनी को स्मैश किया गया, डिमोलिश किया गया बाय द ब्रिटिश, उनके जो ऑफिसर थे वो अंग्रेज था, तो उन्होंने पकड़ा इनको, सबको पकड़ा, जेल में गए. तो जेल में जब गए और बख्शी साहब को देखा, तो उसने बोला ये बच्चा कौन है, ये तो अंडर एज है. तो बख्शी साहब को उन्होंने बोला कि तुम तो बच्चे हो, यू आर नॉट 18 एज येट, तो अगर तुम्हें जेल होती है, अगर मैं तुम्हें जेल में भेजता हूं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जेल की लाइफ बहुत अलग लाइफ होती है.
1: हाँ बिल्कुल
0: तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी इतनी कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं.
1: जी
0: लेकिन क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूं ब्रिटिश नेवी का, तो
1: बिल्कुल
0: मैं तुम्हें रस्टिकेट करूंगा नेवी से. तो उनको रेस्टिकेट किया गया, ही हैड टू लीव. फिर लीव करके फिर उनके बाद वो गए, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ, इंडिया आए, दिल्ली आए, तो वहां उन्होंने फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन की, सिग्नल्स.
1: इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो रॉयल इंडियन नेवी के जो फौजी अफसर थे उनके प्रति बहुत सम्मान था बख्शी साहब के जहन में, क्योंकि अगर वो जेल भेज देते तो पूरी जिंदगी बदल जाती।
0: हाँ, तो वो कहते हैं ना कि एक तो माँ होती है जो जन्म देती है, और एक
1: जी
0: जो माँ होती है जो एक आगे जिंदगी बढ़ाती है.
1: जी
0: तो ही ऑलवेज थॉट कि इट इज अ वेरी मदर लाइक एक्ट.
1: जी
0: एक माँ की तरह एक उन्होंने उस बच्चे को एक सेकंड लाइफ दी कि तू जा, देखो
1: जी
0: मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जेल में.
1: और छोड़ दिया, सबसे
0: छोड़ दिया,
1: इंपॉर्टेंट
0: हाँ,
1: बात।
0: यू आर रस्टिकेटेड विद डिसऑनर.
1: अब जब
0: फॉर
1: घर आए तो क्या हाल हुआ?
0: घर आए तो फिर नेचुरली तो फिर तो इमीजिएटली अपना एक साल में पार्टीशन हो गया ना देश का, अपना भारत का. तो फिर उससे पहले उनको उधर भेजा गया, गुरुकुल. जम्मू के
1: जी
0: पास में गुरुकुल था, तो वहां गुरुकुल में भेजा गया पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ रावलपिंडी में वो सिनेमा हॉल में ये चले जाते थे छोटा मोटा काम करने के लिए. पैसे नहीं मिलते थे लेकिन फिल्म देखने को मिलती थी. तो ये सब पकड़ी गई, सब उनकी सब चोरी पकड़ी गई था ये तो. और दूसरी एक बात थी कि एक बार उनके स्कूल में दो दोस्त बने थे उनके, तीन, ये तीन दोस्त थे स्कूल में, और तीनों का अब ये सपना था कि हम बंबई जाएंगे, कुछ काम करेंगे. बख्शी साहब का था कि मैं फिल्म ज्वाइन करूंगा,
1: और बाकी
0: बाकी
1: दो
0: दूसरों का
1: बंदे
0: कुछ था, उनका कोई सपना था. तो इन्होंने तीनों ने स्कूल की सारी किताबें बेच दी,
1: अरे बाप रे
0: बैग वैग सब बेच दिया, पानी की बॉटल सब बेच, सब कुछ जो भी स्कूल का सामान था सारा बेच दिया. और उस जिससे पैसे मिले वो जाके सुबह सुबह रेलवे स्टेशन में खड़े हो गए कि सुबह हम मिलेंगे इतने बजे और हम ये ट्रेन पकड़ेंगे, ये ट्रेन यहां जाएगी, यहां से वहां जाएगी, वहां से वहां जाएगी, वहां से बंबई पहुंच जाएगी,
1: हाँ
0: और हम घर में नहीं बताएंगे. अभी वो चले गए, पहुंच गए, अपना सामान वामान बेच के सब पैसे वैसे जेब में, जो भी 5, 10, 6 रुपए, 1 रुपया जो भी मिला होगा उसका जेब में डाल के, अपने दो तीन एक जोड़ी कपड़ा वपड़ा कपड़े की थैली में लटका के, पानी वानी, पहुंच गए स्टेशन. 5, 6, 8, 12 घंटे निकल के वो आए नहीं दोनों दोस्त,
1: अरे अरे अरे
0: घर चले गए वापस. घर चले गए वापस तो फिर मालूम पड़ा कि तो सारी किताबें बेच दी इसने, कल स्कूल है,
1: फिर
0: स्कूल
1: पिटाई
0: जाने के लिए
1: हुई।
0: सब शो जबरदस्त पिटाई हुई.
1: अरे
0: तो
1: अरे
0: उसका इलाज उन्होंने क्या ढूंढा कि यहां से निकालो, ये यहां खराब हो गया गांव में,
1: यहां गलत संगत हो
0: गलत
1: गई।
0: संगत होगी इसकी, और
1: हाँ
0: इसके बेकार बेकार से सपने हैं इसके बंबई जाने के, फिल्म लाइन ज्वाइन करने के. तो इसको गुरुकुल भेजो, गुरुकुल में खूब पिटाई होगी, इसकी पढ़ाई भी होगी और साथ में
1: स्ट्रिक्ट लोग हैं
0: डिसिप्लिन,
1: वहां पर।
0: स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता ना, बिकॉज एवरीथिंग इज धार्मिक. तो वहां ये सुधर जाएगा. तो भेजा.

0: गुरुकुल ज्वाइन किया, तो गुरुकुल में एक ऑफिसर आया था, ही वाज अ ब्रिटिश बॉक्सर, ब्रिटिश था वो, अंग्रेज था और वो बॉक्सर था और टीचर था, बॉक्सिंग सिखाता था वो।
1: अच्छा, मतलब गुरुकुल में इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाता था, मतलब कि बच्चे हट्टे कट्टे बने, तंदुरुस्त बने वो।

0: कसरत करें।
1: ब्रिटिश को था कि हम हर जगह हमारा पैर दबा के रखें, तो जो दो गुरुकुल में पढ़ाई इंग्लिश नहीं होती थी लेकिन उनको अपना दबदबा सब जगह रखना था, तो उन्हें वहां भी अंग्रेज को भेजते थे वो, कि ताकि वो नजर रखे सब बच्चों पे और स्टूडेंट्स पे कि हो क्या रखे, हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट तो नहीं हो रहा गुरुकुल में। बॉक्सर था तो वो बॉक्सिंग सिखाता था सबको, पीटी वीटी कराता था, तो बॉक्सिंग सिखाने के लिए कोई सीखने को रेडी नहीं था, किसी को शौक नहीं था, क्योंकि हमारी जो एंसेस्ट्रियल है अपना, हमारी जो कल्चर है उसमें वो है ना कुश्ती,
0: बिल्कुल
1: बॉक्सिंग तो है नहीं हमारे इसमें, तो उसको अभी कैसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो अगर बॉक्सिंग सीखोगे तो बड़ा ग्लास दूध का मिलता था, उसमें मलाई ऊपर रहती थी।
0: अच्छा,
1: तो वो दूध का ग्लास और मलाई के साथ पीने के लिए उन्होंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली कि यार साला इधर मलाई और दूध मिलेगा,
0: दूध मिलेगा।
1: फॉर एवरी क्लास एवरी स्टूडेंट गेट्स वन ग्लास ऑफ मिल्क विद मलाई ऑन टॉप। वो जमाने के ग्लास इतने बड़े बड़े रहते थे,
0: बिल्कुल। और वो पंजाबी व्यक्ति दूध और
1: दूध का शौक, मलाई, गांव में पैदा हुए हैं
0: जी,
1: तो ज्वाइन किया। अच्छा, वहां पर वो जो ऑफिसर था ना वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, वो सिखाने के लिए नहीं आया था, वो अपना गुस्सा निकालता था सब पे, और रोज एक स्टूडेंट को पकड़ के इतनी पिटाई करता था कि वो बच्चे बेहोश हो जाते थे। तो बख्शी साहब ने देखा यार इतना तो खूब पिटाई हो रही है लेकिन यार दूध भी मिल रहा है, तो वो क्या करते थे, रोज जब क्लास होता था ना, हफ्ते में एक दिन क्लास होता था, वो किसी न किसी के पीछे छुप जाते थे
0: ताकि रिंग में ना आना
1: पड़े। हाँ, और रेंज में नहीं आया, आंखों से आंखें नहीं मिल सके।
0: हाँ।
1: तो 3-4 महीने तो बड़ा दूध पिया, मलाई खाई, मजे के ले लिए।
0: हाँ।
1: लेकिन एक दिन वो अंग्रेज ने देख लिया इनको, बोला यार तुम कौन हो, हैव यू जॉइंड न्यू, तुम क्या नया आए हो इधर? इसे नहीं, कब आए तुम इधर क्लास में? वो सर 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए
0: अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा
1: ये। उनकी तो डबल पिटाई की उन्होंने।
0: अरे बाप,
1: अरे जबरदस्त खूब पीटा बख्शी साहब को।
0: बख्शी
1: साहब अगले दिन भाग गए वहां से।
0: अरे अरे,
1: सुबह उठे सीधा ट्रेन पकड़ी। क्या वो जमाने के जो बच्चे थे ना
0: जी,
1: वो आज के जमाने के जो हमारे मेट्रो बच्चे हैं या टायर टू सिटी के बच्चे, वो उतने प्रोटेक्टेड नहीं थे वो। तो सीधा अगले दिन ट्रेन पकड़ी जम्मू से और घर वापस आ गए कि बाबा बहुत हो गया, मुझे पढ़ाई नहीं करनी और। तो उसके बाद फिर विभाजन हो गया।
0: हाँ,
1: तो फिर वो पूरा स्टोरी चेंज हो गई ना, सारे लाइफ पाथ ही बदल गया पूरा।
0: तो एक दिन रातों रात ये तय किया गया कि पूरा परिवार दिल्ली जाएगा।
1: हाँ, तो उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हमारे मोहल्ले में दंगा होने वाला है, और क्योंकि वो दरोगा जी थे वो।
0: हाँ,
1: तो उनका हर घर को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली कल्चरली सर्टेन पोजिशन बट ऑल्सो मैन ऑफ पावर, कि भाई इसका घर तोड़ेंगे आज उस हिसाब से। तो इनको रातों रात निकलना पड़ा वहां से। तो जो भी हाथ लगा, बर्तन गहने वहने, हाँ, खाना, जो भी छोटा मोटा खाना पीना पानी, वो लकी थे क्योंकि उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे ऑफ पंजाब जेल। तो उनको दिल्ली आने के लिए एक डकोटा प्लेन में आए। देवर 2-3 फैमिलीज, देवर वेरी प्रिविलेज्ड पीपल, और वो डायरेक्ट फ्लाइट से दिल्ली आए रावलपिंडी। पता नहीं बीच में रुके होंगे फॉर रिफ्यूलिंग, आई डो नॉट नो, बट आई नो दैट दे केम टू दिल्ली टू रेफ्यूजी कैंप। और बहुत लकी थे क्योंकि लाखों कहानियां जो लोगों का लूटा गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो उनकी पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी, तो सारे के सारे सेफ। तो जो भी वो उनका हाथ लगा, और घर की चाबी बाजू वाले को देके आए थे कि बाबा हम आ रहे हैं वापस, 2-3 महीने में वापस आ जाएंगे,
0: क्योंकि
1: किसी को ये नहीं था कि वापस कभी नहीं आ सकेंगे। तो इस विश्वास से कि हम एक दिन वापस आ जाएंगे, सब चीजें ठंडी हो जाएंगी, वापस आ जाएंगे, तो पड़ोसी को घर की चाबी देके आ गए। तो यहाँ कुछ 4-5 दिन निकले और सब सेटल हो गए, खाना पीना, और रेफ्यूजी कैंप में जगह मिल गई रहने के लिए, क्योंकि दरोगा जी थे वो, रिटायर्ड नहीं हुए थे, ही वॉज इन पावर स्टिल बट ही वॉज दिल्ली। तो रेफ्यूजी कैंप में उनको जगह वगैरह मिल गई, सब ठीक हो गया। तो सबको पूछा कि भाई क्या क्या लाए हो, कि उस जमाने में चांदी के बर्तन वॉज वेरी कॉमन, तो बर्तन चांदी के, ज्वेलरी जो लेडीज होती है तो ज्वेलरी लगती है, हमारे कल्चर में तो यही ज्वेलरी, गोल्ड लेना, क्योंकि 5 बहन है, और ही वॉज ओनली सन फ्रॉम द फर्स्ट मदर एंड 2 ब्रदर्स फ्रॉम द सेकंड मदर।
0: सौतेली माँ भी उनकी एक थी।
1: हाँ, सौतेली माँ। तो ये सब पूरी दादा दादी साथ में, पूरे सब ज्वाइंट फैमिली। तो सब ने बताया कि किसी के पास ज्वेलरी, किसी के पास ये वो कपड़े वपड़े। तो जब बख्शी साहब का पूछा कि तू क्या लाया घर से, क्योंकि उनको रातों रात भाग के निकला ना वहां से, सुबह होने से पहले हमें यहां से निकल जाना है। तो जब उन्होंने बताया सामान जो लाए हैं, तो उनको खूब डांट पड़ी दादाजी से, बाबूजी से और दादाजी दोनों से, कि बेवकूफ क्या उठा के लाया, ये क्या काम आएगा किसी के, ये सब क्या लाए थे वो 17 साल की उम्र में रातों रात वहां से जब निकले, अपनी गुजरी हुई मां की फोटोज, क्योंकि वो 5 साल की उम्र में गुजर गई माँ, तो उनकी मेमोरीज बहुत कम है माँ के साथ,
0: तो वो तस्वीर उनके लिए
1: वो
0: बहुत
1: तस्वीर
0: मायने
1: ही
0: रखती
1: उनकी
0: थी
1: मेमोरी थी कि ये
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा कि मेरी

0: तो माँ बहुत जल्दी गुजर गई, तो मेरे पास तो ज्यादा यादें नहीं है माँ के साथ, तो ये तस्वीरें ही हैं जिनको मैं देख देख के वक्त गुजारता हूँ। यू नो, जब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि क्या है, उनके पिताजी ने भी शादी कर ली सेकेंड, तो नेचुरली कोई भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाता ना, तो बच्चे को थोड़ा प्यार नहीं मिलता, ये नहीं कि कम मिलता है, और हर एक बच्चा अलग होता है। कोई बच्चे को लगता है मुझे ज्यादा सेंसिटिव होता है कि मुझे कम प्यार मिल रहा है, तो फिर वो माँ की तस्वीर देख के रोते थे वो। तो उनको ये था कि उन्होंने बाबूजी को बोला था कि पैसे तो हम काम करके कमा लेंगे, कोई भी काम करके आप आदमी इंसान पैसे कमा लेता है, लेकिन माँ की तस्वीर अगर रह जाती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा।
1: गजब, क्या गजब की बात
0: तो
1: बोली।
0: मैं लोगों को हमेशा ये जो किस्सा सुनाता हूं उसका मकसद ये है सुनाने का, जो इंसान 17 साल की उम्र में रातों रात कपड़े नहीं उठाए, पानी नहीं उठाया, खाना नहीं उठाया, ज्वेलरी नहीं उठाई, जो चांदी का ग्लास था वो नहीं उठाया, माँ की तस्वीर उठा के लाया, वो ही इंसान आगे जाके गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी
1: वाह,
0: प्यारी है ओ माँ।

0: और कोई नहीं
1: क्या
0: लिख
1: बात
0: सकता
1: है।
0: ऐसा गाना। मुझे याद है जब हम मम्मी के साथ लड़ते थे, क्योंकि हम हर बच्चा मम्मी के साथ लड़ता है, क्योंकि मम्मी एक है जो हमारे नॉनसेंस ले लेती है ना, बाकी तो बाप तो सीधा उठा के दो चांटे लगा देगा। तो मम्मी के साथ वो लड़ते थे, लड़के लड़ नहीं सकते क्योंकि एक जनरेशन गैप है। ऊपर से एक पिताजी का एक होता है ना रोब होता है, बाबूजी दादाजी पिताजी इनका एक रोब होता है बहुत हमारे घर में।
1: बिल्कुल
0: मम्मी फ्रेंड होती है ना,
1: यस, बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: हम दोस्ती ज्यादा मम्मी से करते हैं, तो मम्मी से बहुत लड़ते थे। तो हमेशा डैडी मम्मी को बोलते थे कि तुम जो बदतमीजी से बात करते हो अपने मम्मी के साथ, तुम बुरे बच्चे नहीं हो, तुम्हारी माँ जिंदा है, इसलिए तुम्हें पता नहीं माँ की क्या कीमत होती है।
1: क्या
0: हमसे
1: बात है।
0: पूछो जिनकी माँ नहीं है, माँ से कैसे बात की जाती है, तुम्हारी माँ है इसलिए तुम्हें माँ की कीमत नहीं पता।
1: माँ का मोल समझो।
0: हाँ
1: दूसरी चीज वो जो लेके आए थे अपने घर से, वो थी पिंडी की मिट्टी।
0: वो मिसप्लेस हो गई, पता नहीं कहाँ, आई डोंट नॉट नो वेर इट वेंट। मैंने बहुत उसको खोजा उनके जाने के बाद, जब मैंने उनका वॉलेट खोला, मुझे उनकी कृष्ण जी की फोटो मिली, एक गीता का एक वर्स मिला मुझे उसमें, एक बॉटल नहीं मुझे वापस मिली।
1: कि उन्होंने अपने गांव की मिट्टी एक बोतल में भरी कि अब ये छूट रही है मेरी मातृभूमि। ये कितनी बड़ी बात है
0: हाँ इसलिए उन्होंने कितने खूबसूरत गाने लिखे हैं मिट्टी पे,
1: जी।
0: कितने खूबसूरत, मतलब एक से नंबर एक गाना है उनका मिट्टी पे। और मिट्टी खो देने का, माँ खो देने का, और मिट्टी खो देने का, इंसान खो देने का, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, जाने कहाँ चले जाते हैं वो लोग,
1: दुनिया से जाने
0: दुनिया से
1: वाले
0: जाने वाले। आप देखो ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि जिया है उसे।
1: वो उनकी जिंदगी की कहानी।

0: रावलपिंडी से जुड़ी यादें वो शेयर करते थे, और वो कौन कौन सी यादें, अभी तक हमने बहुत सारी यादें वहां की बांटी हैं, तो कुछ और बात है जो रह गई जो उन्होंने आपको सुनाई हो रावलपिंडी से जुड़ी हुई कहानी?
1: जो रावलपिंडी में थे तब उनको पता चला था कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी।
0: हाँ, क्यों स्टूडियोज होते थे बड़े बड़े,
1: तो वो लाहौर गए थे काम ढूंढने के लिए। नहीं, उनकी एक कविता एक उर्दू मैगजीन में छपी थी, क्योंकि पढ़ाई उर्दू में होती थी वहां पर रावलपिंडी में। तो उनका जो लिखाई है वो भले ही हिंदी है, हिंदी गाने हैं, लेकिन वो उर्दू में लिखते थे हिंदी गानों को हमेशा, क्योंकि उन्होंने हिंदी सीखी नहीं थी। जो उनकी हिंदी थी वो बोलचाल में थी
0: जी जी,
1: हाँ, लेकिन लिखने में वो हिंदी गाने उर्दू में लिखते थे।
0: ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि बख्शी साहब अपने गाने उर्दू में लिखा करते थे।
1: हाँ, मैट्रिक पास ना 8th स्टैंडर्ड तक, तो वो पब्लिश हुई थी उनकी एक नज़म लाहौर में, तो वहां इंडस्ट्री भी थी, तो वहां भी वो गए थे कि चलो इसी बारे में थोड़ा काम भी ढूंढूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं तो वो फिर वापस आ गए थे।
0: जी, पार्टीशन के बाद जब पूरा परिवार दिल्ली आया, दिल्ली में किस तरह के हालात हुए और वहां से कहां गया पूरा परिवार?
1: बिकॉज देवर रेफ्यूजी कैंप में थे ना वो, तो दिल्ली से फिर उनको पुणे शिफ्ट किया गया रेफ्यूजी कैंप।
0: सरकार ने भेजा?
1: सरकार ने। फिर वहां से वापस वो दिल्ली आए, क्योंकि पंजाबी थे वो, तो उनको महाराष्ट्र शूट नहीं किया। दे वॉन्टेड समबडी, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव वही है पंजाब में ही है, पंजाब हरियाणा, तो उन्होंने बोला कोई ये हमारा इधर तो कोई है ही नहीं, हमारा कोई पहचान वाला ही नहीं है महाराष्ट्र में, तो पुणे से फिर वापस उनको शिफ्ट किया गया। फिर उनको घर दिए गया दिल्ली में, सराय रोहिल्ला जगह है, सराय रोहिल्ला। तो फिर पार्टीशन हुआ अगस्त में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं, तो उन्होंने ही ज्वाइन इन द सिग्नल्स एज एन इलेक्ट्रिशियन एंड टेलीफोन ऑपरेटर।
0: ओके,
1: तो उनका जो कोड नेम था एज अ सोल्जर, क्योंकि सोल्जर को सिग्नल में वॉच कोड सिखाया जाता है
0: जी जी,
1: और टाइप राइटिंग सिखाई जाती है, जो तब की कम्युनिकेशन थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हर ऑफिसर को कोड नेम दिया जाता था, क्योंकि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई योर नेम, सो दैट अगर हमारी रिकॉर्डिंग टैप हो रही है एनिमी से, इफ एनिमी रिकॉर्डिंग
0: आवर, तो वो नहीं जान पाए,
1: उनको पता नहीं चलेगा ये कौन बात कर रहा है,
0: बंदा कौन है, उसकी लोकेशन क्या है,
1: लोकेशन क्या है। तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
1: वाकई में आजाद थे वो,
0: क्या बात,
1: आजाद दिल के।
0: अच्छा, उनकी आर्मी सिग्नल कोर में पोस्टिंग से पहले
1: जबलपुर में पोस्टिंग हुई थी।
0: हाँ,
1: ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम जबलपुर,
0: ट्रेनिंग वहां हुई
1: 3 साल की, जो ट्रेनिंग थी वो जबलपुर में हुई। तो उनका जो सर्टिफिकेट है जो मैंने पब्लिश भी किया है किताब
0: जी,
1: में
0: जी जी,
1: वो जबलपुर का है, वो सिग्नल सेंटर जबलपुर जो हाँ, आपका गांव है।
0: बिल्कुल। वहां पर स्पेलिंग लिखी जबलपुर, आज भी आर्मी सिग्नल कोर का जो ठिकाना है हाँ, वो अभी भी जबलपुर में है, एक बड़ा सा गेट है, और क्योंकि मेरा शहर है तो जब कभी हम वहां से निकलते हैं जो भी साथ होता है उसको मैं हमेशा ये कहता हूं कि यहां बख्शी साहब रहे हैं। तो इलेक्ट्रिशियन के काम में उनको दिलचस्पी होने लगी थी, मैंने उनकी कॉपी दिखी है जो आपने दिखाई थी ट्रेनिंग वाली, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बने हैं, बहुत सारे नोट्स लिखे हैं साइंस के, तो वो देख के ऐसा,
1: लेकिन कमाल की बात है, ही वाज सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, लेकिन डरपोक नंबर वन, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हो जाए घर में ना गड़बड़, डरपोक नंबर वन।
0: तो मतलब टच नहीं करते थे,
1: स्क्रू ड्राइवर डालने में भी घबराते थे कि शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, हाथ में लगा शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, ही वाज लाइक दैट।
0: नहीं, लेकिन वो जो नोटबुक आपने मुझे दिखाई थी उसमें तो क्या सर्किट,
1: सब कुछ, लेकिन
0: बहुत सुंदर राइटिंग में सब कुछ है।
1: फोबिया होता है शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, तो उनको वो शॉक लगने का बहुत डर रहता था, एक चिपकली का डर, एक शॉक लगने का डर, और एक लिफ्ट में चढ़ने का डर, तीन उनके डर थे, और अकेले रहने का डर। तो उनका अकेले रहने का जो डर था ना, उसको एनालाइज किया गया, वो करीब लेट 1990s में, मेरे ख्याल में गुजर जाने से कुछ 2-3 साल पहले, ही मेट अ साइकोलॉजिस्ट कि अभी तो मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूं, मेरा नाम है सब जगह, इज्जत है, जो मैंने सोचा भी नहीं था जिंदगी में होगा वो भी हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे डर है प्लेन में नहीं चढ़ने का, लिफ्ट में नहीं जाने का, घर में अकेले नहीं रहने का।
0: मतलब कोई ना कोई उनके साथ होना जरूरी था।
1: घर पे भी हमारा काफी बार डैडी के साथ झगड़ा क्यों होता था, क्योंकि वो बोलते थे अभी मम्मी बाहर गई है तुम घर बैठो, बाहर नहीं जाना, मम्मी आएगी तब जाना। बोलता अभी अब जाना, खेलने के लिए जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, या गोटी खेलने जाना है, या गिती गिती खेलने जाना है, दोस्त बुला रहे, नहीं नहीं मम्मी आएगी या भाई आएगा, गोगी आएगा तब जाना। तो हम लड़ते थे डैडी के साथ, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद जब मैंने उनकी डायरी खोली तब मुझे पता चला कि ये जो डर था उनका घर में अकेले नहीं रहना, कोई ना कोई होना चाहिए घर में, या तो जो हमारे घर में लोग काम करते हैं वो होने चाहिए, या मैं या माय ब्रदर और माय सिस्टर और माय मदर, कोई होना चाहिए, अकेले नहीं। उसको एनालाइज किया गया हूं साइकोलॉजिस्ट का, उन्होंने रिमार्क लिखा है दैट बिकॉज यू आर अबैंडन्ड एज अ चाइल्ड, बिकॉज यू लॉस्ट योर मदर एट द एज ऑफ 5, और आप पिताजी ने दूसरी शादी की, और क्या होता है भले वो माँ अच्छी हो दूसरी आई है, लेकिन वो माँ नहीं है,
0: तो एक अकेलापन आ जाता है।
1: अकेलापन से ज्यादा होता है अबैंडनमेंट।
0: जी जी,
1: अबैंडनमेंट हर्ट्स यू।
0: यस,
1: अकेलापन मे नॉट हर्ट यू, लेकिन इफ यू फील अबैंडनड यू आर हर्टिंग योर सेल्फ,
0: कि मेरा तो कोई नहीं है,
1: मेरा तो कोई नहीं है, नहीं मुझे छोड़ा गया है,
0: हाँ,
1: मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, तो क्योंकि 5 साल की उम्र है ना, तो उसको लगता है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ा है, तो बचपन से माँ चली गई, मतलब माँ ने छोड़ दिया मुझे, तो वो जख्म था, वो भरा नहीं कभी, इसलिए वहां पे क्या गाने लिखे बख्शी साहब ने, कमाल सर, आई डोंट थिंक एनीबडी हैज रिटन एज गुड एज आनंद बख्शी रिटन ऑन मदर।

0: 60s 70s 80s में माँ की बहुत अहमियत थी सोसाइटी में, तो फिल्म में कहीं ना कहीं माँ का कैरेक्टर आ ही जाता था, स्ट्रांग कैरेक्टर,
1: और वहां फिर गाने लिखने की।
0: हाँ, जो आजकल नहीं है फिल्मों में, आजकल फिल्मों में आपको देखो दोस्ती खत्म हो गई है, दोस्ती में कोई गाना नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं दिखा रहे दोस्ती का, तो ये सब है। तो उनका जो ये था ना कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, उसकी दो वजह थी, एक तो ही फेल्ट लेटर तो वेन ही ग्रू ओल्डर देन ही रियलाइज दैट शी डाइड, बिकॉज शी डाइड इन चाइल्ड बर्थ, जब सेकंड चाइल्ड पैदा हुआ ना बख्शी साहब के बाद, तो वो चाइल्ड बर्थ में गुजर, उस जमाने में ना चाइल्ड बर्थ में बहुत डेथ हो जाती
1: थी लेडीज की, बिल्कुल,
0: लेकिन वो जख्म जख्म होता है, कोई जख्म बढ़ते नहीं है, हर जख्म नहीं बढ़ता
1: वाला, और प्लेन में सफर न करने वाला डर क्यों था?
0: दैट इज जस्ट अ फोबिया, एंड साइकोलॉजिस्ट ने बोला, अगर आपको, उन्होंने बोला कि भाई जब मैं आर्मी में था तो मैं तो पैराशूट से जंप मारता था 70 रुपए के लिए ज्यादा, हमको 70 रुपए ज्यादा मिलते थे अगर हम पैराट्रूपिंग करें, वो आदमी प्लेन में नहीं चढ़ रहा है, आप सोचो। तो उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि भाई इसका इलाज क्या है, तो उन्होंने कमाल का क्योर दिया हमको, उन्होंने बोला कि आप जब बंबई आए थे ये डर था, ही सेड नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये डर बाद में आया, कब आया, जब शोहरत आई, शोहरत के साथ डर आया। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्लेन में वापस चढ़ना है, अगर आपको लिफ्ट में वापस जाना है, आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी जिंदगी थी 1956 में,
1: स्ट्रगल,
0: ट्रेन में जाना, बस में जाना, कार स्टेशन से वो टिकट निकालते थे फर्स्ट क्लास का, और वो वही ट्रेन पकड़ के चर्चगेट जाते थे, फिर चर्चगेट में जाके समुद्र के किनारे मंडरा पे बैठते थे, जहां वो बैठ के गाने लिखते थे, वहां एक दो घंटा गाना लिखा, दो तीन जो भी मूड हुआ तो लिखा, नहीं हुआ तो ऐसे बैठ के, वो जो जिंदगी जी थी उन्होंने
1: उसको 1956
0: में उसको रिपीट किया गया, ताकि ये डर जाए, क्योंकि वो आदमी खो गया है, उस आदमी को वापस कैसे लाना है, वो आदमी बनो,
1: अरे गजब,
0: तो वो आदमी वापस आएगा, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ने वो आदमी पैदा किया था ना, जो ट्रेन में जाता था काम ढूंढने, बस में चढ़ता था काम ढूंढने, लिफ्ट पे चला जाता था काम ढूंढने, वो इंसान खो गया, क्योंकि अब इसके बाद गाड़ी आ गई है, वेल्थ आ गया है, घर आ गया है, नाम और शोहरत आ गया है, तो वो इंसान खो गया है। तो उस डॉक्टर ने कहा था उनको, साइकोलॉजिस्ट ने, तुम वो इंसान बनो, क्योंकि वो इंसान पीछे रह गया है। फिर हफ्ते में 3 दिन चर्चगेट जाते थे ट्रेन में, और ऐसे बहुत लोगों ने मिले लोग, आई सॉ योर फादर टुडे यार एट पेंटर स्टेशन यार, माय फ्रेंड्स यू आर गोइंग ऑन ट्रेन यार,
1: ट्रेन से जा रहे थे क्या बात है।
0: हाँ, एक जर्नलिस्ट मुझे, मैं 2-3 जर्नलिस्ट से मिला रहे, हम बख्शी साहब को देखते थे यार
1: ट्रेन में जाते,
0: हाँ, क्यों जाते थे,
1: हाँ।
0: तो मेरे कभी बैठेंगे तो सुनाऊंगा कहानी।
1: अरे बाप रे, ये भी बहुत ही कमाल की कहानी।
0: तो हमें, अगर हमें ताकत चाहिए ना, जो हमारी ताकत जवानी में थे, तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा।
1: ये बहुत बारीक,
0: तो स्पिरिचुअल ताकत वापस आएगी।
1: जी, बहुत बारीक बात। वापस जबलपुर चलते हैं, जहां आर्मी सिग्नल कोर में बख्शी साहब की ट्रेनिंग चल रही है, और वहां बख्शी साहब अपनी कलाकारी भी दिखाते हैं, और आर्मी वालों को ये यकीन हो जाता है कि यार ये बंदा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए नहीं बना है।
0: तो क्या हुआ कि उनका सपना जो था वो मोहल्ले वालों ने एनकरेज किया, अरे तू बंबई जा यार, तू बंबई जा यार, यार तू इधर क्या कर रहा है यार, तू गांव में क्या कर रहा है, बंबई जा। तो वो तो एक बचपन का सपना होता ना, लेकिन जब वो आर्मी में अडल्ट हो गए थे, विभाजन हो गया था देश का, मतलब इट वॉज अ वेरी सीरियस एटमोसफियर ना, यू हैव लॉस्ट योर हाउस, यू हैव लॉस्ट योर प्रॉपर्टी, यू हैव लॉस्ट योर वेल्थ, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जस्ट नौकरी, सरकारी नौकरी है बस, और देश के लिए आप काम कर रहे हो, बिकॉज दैट व्हेन यू जॉइन द आर्मी इट वॉज पेट्रियोटिज्म, व्हेन यू जॉइन द नेवी इट वॉज मैं बंबई जाऊंगा, वहां से जंप मार के फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। जो उनका जो बचपन का सपना था उसने रूप लेना शुरू किया। कैसे? उनके जो कलीग्स थे आर्मी में, जो सोल्जर्स होते हैं साथ में आपके काम करते हैं, और जो आपके सीनियर्स थे, उन्होंने इनको एनकरेज किया। और एक तो कैप्टन, उन्होंने तो ऑफिशियल आर्मी के लेटर पे चिट्ठी भी लिखी थी, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आनंद प्रकाश बख्शी वैद इज एन एक्सीलेंट राइटर एंड एक्सीलेंट सिंगर and he performs very good stage shows and I so-and-so commander officer captain recommend him to anybody in the film industry to please give him a work as a songwriter.
1: गजब। यानी एक फौजी अफसर ये लिख रहा है कि ये बंदा बहुत अच्छा कलाकार है, इसको सिनेमा में काम दो,
0: में काम दो।
1: वाह वाह,
0: वो है मेरे पास, चिट्ठी है हमारे पास, मेरे पास रेडीनेस, वो संभाल कर रखा है, क्योंकि वो चिट्ठी जाके दिखा देते बॉम्बे में आके, देखो मेरे ऑफिसर ने मुझे भेजा है, अब यहाँ क्या उसकी कीमत,
1: इंडस्ट्री वालों को थोड़ी पता है
0: क्या कीमत है कैप्टन की।
1: जी, आर्मी में वो परफॉर्म क्या करते थे बड़े खाने के दिन?
0: प्लेस, फिक्शन, नॉन फिक्शन, उसमें एक्टिंग भी कर लेते, लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे, गाते थे भी, और एक्टिंग भी कर लेते थे। यू आर द मेन स्टार ऑफ बड़ा खाना शोज।
1: और ये
0: एनुअल
1: इंपॉर्टेंट बात है कि उस जमाने में उन्होंने उस दौर के मशहूर गानों को सुन के उनकी धुन पर गाने लिखना शुरू कर दिया।
0: हाँ, जब आर्मी में थे तो बरसात की एक रात लगी थी
1: जी,
0: उन्होंने उस फिल्म को 29 टाइम्स देखा था, 29 टाइम्स। क्यों देखा था? ताकि वो कहानी को घोल के पी जाएं, और फिर उस फिल्म के गाने लिखे थे पूरे।
1: ये उनका रियाज था,
0: ये उनका रियाज था। वीकेंड पे जो

0: मिलती थी ना, तो जाके फिल्म देखते थे सिटी में, वापस आके बैरिक्स में उसी फिल्म के पूरे गाने वापस लिखते थे और सुनाते थे सब। इसीलिए सबने रेकमेंड किया, यार तूने तो यार क्या लिखा यार, ये तो वैसा ही है जैसा हमने फिल्म में देखा था यार, उससे भी अच्छा लिखा तूने यार। तो वो एनकरेजमेंट पहली बार उनका जो सपना था ना वो कॉन्क्रिटाइज हुआ कि मैं यहां के लिए नहीं बनाऊं, मैं वहां के लिए बनाऊं।
1: तो उन्होंने आर्मी छोड़ी कैसे,
0: छोड़ी
1: बंबई आए,
0: 1950 में,
1: साल कौन सा था?
0: 1950 में छोड़ी, जो भी उनकी सैलरी थी उसको जमा किया सेविंग्स बंबई 1950, और 3 महीने में सारे पैसे खत्म हो गए।
1: बंबई तो शहर ही निराला है।
0: और वापस आर्मी ने को लिया, 6 साल काम किया आर्मी में, सिग्नल्स नहीं उनको वापस से एक्सेप्ट किया।
1: 1950 में बंबई आए
0: हाँ, 3 महीने
1: और
0: में वापस
1: तीन
0: चले
1: महीने
0: गए,
1: में वापस चले गए
0: वापस
1: और
0: चले गए
1: वापस
0: हार
1: आर्मी में।
0: हार के। और वो जो टोली ना उनके सीनियर ने उनको छुट्टियां दी थी, तो दे वो वेलकम डेम, उनको बल्कि सिंपथी हुई कि यार बेचारा अपना छोड़ा मुंडा वापस आ गया है, चलो यार इसको रख लो यार, क्योंकि आपने जो 3 साल काम किया है ना वहां भी तो नाम कमाया, तो उनको नौकरी मिल गई इमिजिएटली। फिर उनकी शादी हो गई, क्योंकि
1: और
0: शादी के
1: शादी
0: लिए
1: भी
0: जो भी
1: लखनऊ में
0: था,
1: हुई,
0: हाँ शादी लखनऊ में हुई।
1: ये लड़की कैसे
0: और
1: मिली?
0: शादी में एक लड़का मिला उनको, तो बोला यार तू यहाँ क्या कर रहा है, वो रावलपिंडी का था उनकी गली का, तो बोला यार तू इधर क्या कर रहा है, तो बोला मेरी तो शादी है। तेरी शादी है? हाँ, तो तू इधर क्या कर, मेरी बहन की शादी है, तो मेरे मम्मी का भाई था वो।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ,
1: अच्छा
0: क्योंकि वो दोनों में अरेंज मैरिज होती थी ना,
1: ये रिश्ता किसने जोड़ा था?
0: उनकी एक बुआ थी, शी वॉज वो पत्री बनाती थी, जन्म पत्री,
1: अच्छा।
0: एस्ट्रोलॉजी, शी वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड में, पोस्ट कार्ड हमारे मेरे पास है, मैंने उसको अभी फाइनली डिस्प्ले किया हॉल में,
1: जी
0: उसको फ्रेम करके रखा हुआ है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी बख्शी साहब के, उनके पिताजी को, बाऊजी को, कि मैंने नंद के, नंद उनका घर का नाम था नंद,
1: हाँ, आनंद से नंद।
0: नंद, नंद इज ऑल्सो नेम फॉर कृष्णा, क्योंकि वो
1: बिल्कुल
0: कृष्ण भक्त थे वो।
1: जी।
0: तो नंद के लिए मैंने कुड़ी देखी है लड़की, और वो थोड़ी सावली है, वीटिश कॉम्प्लेक्शन, और थोड़ी भारी है, स्लाइटली प्लम्प। और सबसे कमाल की बात है शी इज अ सीमस्ट्रेस, ग्रेजुएशन इन
1: सिलाई कढ़ाई
0: सिलाई।
1: बहुत अच्छा करती है।
0: हाँ, और सबसे अच्छी, सबसे खास बात है कि वो साइकिल चलाती है।
1: अच्छा, साइकिल चलाना बहुत बड़ी
0: हाँ,
1: खासियत
0: बहुत
1: थी।
0: बड़ी बात थी लेडीज के लिए, गर्ल के लिए, लड़की साइकिल चलाए वो, अरे ये तो डेक्कन क्वीन है भाई ये तो।
1: वाह वाह वाह
0: नहीं
1: वाह वाह। तो बख्शी साहब देखने गए?
0: नहीं कुछ देखना होगा ना, क्या कौन से जमाने की बात कर रहे हैं सर आप, देखने देखने
1: सीधे शादी तय।
0: सीधा शादी तय। और उनका भाई था, उनको पता नहीं था कि भाई है इसका ये।
1: हाँ, ये देखिए, ये कमाल की
0: हाँ,
1: बात है। और यही बख्शी साहब ने आगे
0: और
1: चल के
0: साहब ने
1: गाना
0: गाना भी लिखा
1: लिखा,
0: है यार,
1: लड़की साइकिल
0: साइकिल
1: वाली।
0: वाली बी आर चोपड़ा की फिल्म थी वो।
1: हाँ।

जाने माने गीतकार आनंद बख्शी के जन्मदिन पर ये थी उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत।

बख्शी साहब की यादों का सिलसिला इतना विस्तृत है कि सारी बातें एक एपिसोड में शामिल करना मुमकिन नहीं है। अगले हफ्ते राकेश आनंद बख्शी से बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मिलेंगे आज ही के दिन अगले हफ्ते शाम 4 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थीं भावना सिंदल और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो आप अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 5 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और आज के इस कार्यक्रम का होस्ट सोम कविया, लेकर हाजिर आपके इस कार्यक्रम को। श्रोताओं, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ आज का ये कार्यक्रम हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे चर्चा के विषय पर। तो हमारा आज का जो चर्चा का विषय है साथियों, वो है युवा लेखकों के लिए सरकारी प्रोत्साहन और पहल के रूप में। तो भारत में युवा लेखकों को साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने, उनकी रचनात्मकता को मंच देने और उन्हें एक सशक्त पहचान दिलाने के लिए सरकार, विशेषकर शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी NBT द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की गई है। उनके बारे में हम आपसे बातें करेंगे, जिसमें सबसे पहले है प्रधानमंत्री युवा योजना। यह भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी पहलों में से एक है। युवा YUVA, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स योजना का उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के युवा और उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करना है। मेंटोरशिप कार्यक्रम, इसके तहत एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं का चयन किया जाता है और उन्हें देश के जाने माने साहित्यकारों और संपादकों द्वारा 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। छात्रवृत्ति, चयनित युवा लेखकों को मेंटोरशिप योजना के तहत प्रति लेखक 50,000 रुपये प्रति माह 6 महीने के लिए कुल 3 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रशिक्षित लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अनुवाद को भी बढ़ावा दिया जाता है। इन पुस्तकों का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी किया जाता है, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बल मिलता है। उसके बाद अगली जो पहल है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार और फेलोशिप के रूप में। भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी युवा प्रतिभाओं को पहचान और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा जाता है, जिसमें 35 वर्ष या उससे कम आयु के लेखकों को उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें एक उत्कीर्ण पट्टिका और नगद राशि दी जाती है। ट्रेवल ग्रांट, नए जो लेखक हैं उनको देश के अन्य भागों का दौरा करने, वहाँ की संस्कृति को समझने और साहित्यिक सम्मेलनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है साहित्य अकादमी पुरस्कार के रूप में। और एक अगला चरण है साथियों, जिसमें विश्व पुस्तक मेलों में विशेष मंच प्रदान किया जाता है, जिसके तहत शिक्षा मंत्रालय और NBT द्वारा आयोजित किए जाने वाले नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में युवा लेखकों के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। अब हम बात करें एक भारत श्रेष्ठ भारत और डिजिटल पहलें, MyGov प्रतियोगिताएं। सरकार MyGov पोर्टल के माध्यम से समय समय पर कहानी लेखन, निबंध लेखन और कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है, जिससे जमीनी स्तर की नई प्रतिभाएं सामने आती हैं। इसके साथ साथ मातृभाषा में लेखन को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत युवाओं को अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में लिखने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार की इन सभी पहलों का मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को बनाए रखना और आधुनिक दौर में भारत की सॉफ्ट पावर को वैश्विक स्तर पर मजबूत करना है। ये योजनाएं न केवल युवा लेखकों को आर्थिक और बौद्धिक संबल प्रदान करती है, बल्कि उन्हें एक पेशेवर लेखक के रूप में स्थापित होने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। तो ये हमने बात की, हमारे युवा साथियों के लिए बड़ा सुनहरा मौका। आप अगर एक लेखक के तौर पर अपना पेशा चुनना चाहते हैं तो भारत सरकार की तरफ से भी आपको सहायता उपलब्ध रहती है और वहाँ आप अपने इस पेशे को जो है बढ़ा करके अर्थार्जन भी कर सकते हैं और सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिए चलते हैं आपको संगीत की दुनिया में, सुनवाते हैं ये गीत।

0: हमारे ईमेल आईडी पर youtexperedmagaur@gmail.com पर, और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, कार्यक्रम युवाणी में आगे बढ़ते हैं और अब हमारे स्पेशल सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है फ़ोन करें गीत सुने। इसमें हमारे युवा साथी हमें फ़ोन करते हैं और अपनी पसंद के गीत सुनते हैं। तो हमारे सबसे पहले हम युवा साथियों के लिए कहना चाहेंगे कि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, हर कदम पे मिलेगी सफलता तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। इसी भाव के साथ आज के इस स्पेशल सेगमेंट को शुरू करते हैं और देखते हैं हमें किन हमारे दोस्तों ने फ़ोन कॉल्स की है। सबसे पहले फिल्म आरजू के लिए फरमाइश आई है मिर्धा कॉलेज नागौर से अनवर हुसैन की। इसके साथ साथ इसी गीत के लिए भी पसंद मिली है अमर सिंह कॉलेज नागौर से मुकेश शर्मा की। तो आइए सुनते हैं फिल्म आरजू का ये गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: फ़ोन करें, गीत सुने। इस सेगमेंट में हमें अगली कॉल प्राप्त हुई है इमामुद्दीन की कुचेरा से। आप सुनना चाहते हैं फिल्म धर्म कांटा का ये गीत। इसके साथ साथ इसी गीत के लिए भी फरमाइश आई है राम निवास सांगवा, जाट कॉलोनी नागौर से। सुनिए फिल्म धर्म कांटा का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
3: कार्यक्रम युवाणी के स्पेशल सेगमेंट फोन करें गीत सुने में फिर से आपका स्वागत। अब सुनवाते हैं आपको कुंभाराम चावला, शास्त्री नगर कॉलोनी नागौर से आपकी पसंद दोस्ती फिल्म का ये गीत, और इसके साथ साथ इसी गीत के लिए पसंद प्राप्त हुई है मेजर करीम नगर नागौर से बिलाल अहमद की। आइए सुनते हैं ये गीत।

अगली फ़ोन कॉल्स हमें प्राप्त हुई हैं इकबाल सिंगल अजमेरी गेट नागौर से, अनूप सिंह एंड मिसेस अलाय से। आप सुनना चाहते हैं फिल्म नागिन का ये गीत।

तो दोस्तों ये था हमारा फ़ोन करें गीत सुने स्पेशल सेगमेंट का आखिरी गीत। आप भी हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करें, अपनी पसंद के गीत सुने इस कार्यक्रम में। और अब जो है इन शब्दों के साथ आप मुझे इजाज़त दें कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। करते हैं इस कार्यक्रम से नमस्कार, एक वादे के साथ फिर मिलेंगे।

अभी आप सुन रहे थे युवावाणी कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमिट चैनल। शाम के 5:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत।

0: गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसे ही सखियों ने याद किया तो आपका मनपसंद प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी राजेश्वरी। सभी श्रोताओं का और मेरी प्यारी सखियों का महिला जगत प्रोग्राम में स्वागत है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज की बात के साथ, और आज की बात में हम शामिल कर रहे हैं खुद को ऐसे बनाएं बेस्ट पेरेंट्स, मतलब अपन खुद किस तरह से अपने बच्चों के अच्छे माता पिता बन सकते हैं। देखिए, एक बेहतरीन पेरेंट्स या फिर माता पिता बनने के लिए कोई जादुई नुस्खा नहीं होता, बल्कि ये धैर्य, बच्चों के साथ पॉजिटिव रूप से जुड़ने और अपनी आदतों में कुछ सुधार करने की एक निरंतर प्रोसेस होती है, जिसे अपना कर हम खुद जो हैं एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। अच्छे पेरेंट्स वही होते हैं जो अपने बच्चों में अच्छे गुण, अच्छी परवरिश उन पे जो है अच्छी परवरिश दे सकें, और अपने बच्चों को जो है पेरेंट्स एक अच्छा और कामयाब बना सके, वही होती है अच्छी पेरेंटिंग। तो एक अच्छे और आदर्श माता पिता बनने के लिए हमें कुछ ऐसे बिहेवियरल जो चेंज होते हैं, व्यावहारिक तरीके जो होते हैं, उनको हम अपना सकते हैं। जैसे हमें अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए, वो किस तरह से बोल रहे हैं, हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जो है उनको एक पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। जब बच्चे आपसे कुछ कहे तो उन्हें बिना किसी रुकावट के पूरा ध्यान देकर पहले तो आप सुने कि बच्चा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, या फिर उनकी प्रॉब्लम्स को समझे और उन्हें जो है अपना पक्ष रखने का पूरा जो है मौका दें, तभी तो बच्चा जो है आपको खुद पॉजिटिव ले पाएगा। साथ ही एक एग्जाम्पल पेश करें बच्चे के सामने, बी ए रोल मॉडल बने, यानी बच्चा वही सीखता है जो देखता है, जो वो आपको करते हुए देखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ों का सम्मान करे, सच बोले, शांत रहे, तो आपको खुद भी वैसा ही करना होगा। बड़ों के सामने जो आपके बड़े हैं उनका आदर करना चाहिए और हमेशा सच बोलें, साथ ही आपका स्वभाव जो है शांत रखें, तो जैसे आप हैं वैसा ही बच्चा होगा। जो बच्चा आपको करते हुए देखेगा बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो आपको खुद को भी घर पर इन बातों का पालन करना होगा और खासकर ध्यान रखना होगा। अब हम यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

सखियों, हम बात कर रहे थे अच्छी पेरेंटिंग की। तो पॉजिटिव डिसिप्लिन जो होता है उसको बनाए रखें और अपने बच्चे को सिखाएं, क्योंकि बच्चा जो हम घर पे काम करते हैं या फिर हम किस तरह से रहते हैं उसी को देखकर जो है बच्चा सीखता है। तो कई बार होता है कि बच्चे कुछ गलती कर बैठते हैं और हम उन्हें सज़ा दे देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे को सज़ा देने की बजाय उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दें तो आपका बच्चा जो है या फिर हमारा जो बच्चा है वो सुधरने की कोशिश करेगा और एक अच्छा इंसान बन पाएगा। साथ ही उन्हें समझाएं कि गलतियां सभी से होती हैं और हर जो गलती है एक सीख देकर जाती है और हर व्यवहार का एक परिणाम होता है। तो मतलब बच्चा जो है आपको देख के सीखेगा और अपनी गलतियों से भी वो सीख पाएगा। साथ ही एक चीज़ होती है कि हम उसके दोस्त की या फिर हमारे पड़ोसियों में जो बच्चे हैं उनका एग्जाम्पल दे देते हैं कि वो बच्चा तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, आप पढ़ नहीं रहे हो, ये नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, तो अपने बच्चे को जो है हताश कर देते हैं। तुलना से हमें बचना चाहिए, यानी जो कंपैरिजन होता है उसे अवॉइड करना चाहिए। अपने बच्चे की तुलना किसी भी दूसरे बच्चे से नहीं करनी चाहिए, इससे उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास जो होता है वो कम होता है। इसके बजाय उनके हुनर और उनकी खूबियों की सराहना करें तो बच्चे जो है उत्सुकता के साथ जो है पॉजिटिविटी के साथ जो है अपने आप में बिल्कुल एक अच्छा सुधार कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम बच्चे की तुलना करेंगे तो बच्चा जो है अपने आप को कम समझने लगता है, फिर उसमें थोड़ी सी नकारात्मकता आ जाती है। इसलिए तुलना करने से बिल्कुल बचें और अपने बच्चे में जो भी खूबी है उसको तराशें, उसको निखारना शुरू करें। कोई भी बात जो है बच्चा जैसा भी कर रहा है उसे करने दीजिए, वो मतलब गलत नहीं करेगा, तो बिल्कुल अच्छी बात है ये। साथ ही भावनात्मक जो जुड़ाव होता है उसको बनाए रखें। आप अपना और अपने बच्चे का जो रिश्ता है, जो अटैचमेंट जो होता है उसको बनाए रखें। साथ ही अपनी बातें थोपने की बजाय उनसे बात करें। कभी भी अपनी बात जो है अपने बच्चे के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए कि आपको ये करना है तो यही करना पड़ेगा। मतलब आप अपनी इच्छाएं उन पे ना थोपें, वो खुद जो करना चाह रहे हैं उन्हें करने दीजिए। मान लो सब्जेक्ट की ही बात करें तो 10th के बाद बच्चे का मन होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, तो कई बार ऐसा होता है कि माता पिता हम जो हैं बच्चे को कहते हैं कि साइंस लो या फिर आर्ट्स लो, बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग ही उसे सब्जेक्ट दिलवाएं, या फिर अगर म्यूजिक लेना चाहता है तो म्यूजिक दीजिए। मतलब हर बच्चे का हुनर जो है अलग होता है, इसलिए कोई भी बात कोई भी चीज़ जो है बच्चे पे थोपनी नहीं चाहिए। साथ ही गलती को स्वीकार करना सिखाएं। बच्चा अगर कोई गलती कर देता तो उसे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे ये समझाना चाहिए कि गलती हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा नहीं होगी, ये समझाएं, ताकि बच्चा बिल्कुल नकारात्मक नहीं सोचे, नेगेटिविटी नहीं आए बच्चे में। इसलिए अपने बच्चे को जो है हम खुद ही सुधार सकते हैं। साथ ही खुद का भी ख्याल रखें, हमें खुद का भी तो ख्याल रखना है, क्योंकि हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए साथ ही खुद का भी ख्याल रखें। अब ले चलते हैं आपको फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, चर्चा में शामिल कर रहे हैं आपके और बच्चे के बीच ना हो स्क्रीन की दीवार। सखियों, आपके और आपके बच्चे के बीच डिजिटल, अभी जो ज़माना चल रहा है वो डिजिटल का हो गया है, तो डिजिटल स्क्रीन की दीवार को हटाना ही मजबूत पेरेंटिंग और बच्चे के मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहद ज़रूरी होता है और अच्छा भी होता है। आज के समय में मोबाइल, टेबलेट और टीवी बच्चों के साथ हमारी जो बातें हैं उनको कम कर रहे हैं, हमारे समय को कम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे और माता पिता जो हैं समय बिल्कुल अपने आप को कम दे पा रहे हैं। इस अदृश्य दीवार को, यानी जो दिख ही नहीं रहे, उस दीवार को घिराने और बच्चे के साथ गहरा रिश्ता बनाने के लिए आपको जो है व्यावहारिक ऐसे कुछ कदम हैं वो हम उठाकर हमारे रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। सखियों, बातचीत के दौरान स्क्रीन को कहे ना, यानी हम जब बातचीत कर रहे हैं तो बीच में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए हमारे और हमारे बच्चे के बीच। साथ ही आई कांटेक्ट बनाए रखें, अपनी आँखों को के सामने आँखों में आँखें डालकर बात करें। जब भी बच्चा आपसे कुछ कहें तो अपना फ़ोन पूरी तरह से एक तरफ रख दें और अपने बच्चे की बात सुने, साथ ही उसकी आँखों में देखें। बात करते समय बच्चे की आँखों में देखकर ही आप पूरी बात जो है सुने, ताकि आपको समझ आए और आप जो है पूरा समय अपने बच्चे को दे पाएँ। साथ ही बच्चा जब कुछ बात बता रहा है आपको, तो आप उसे बीच में ना टोकें। बच्चे को अपनी भावनाएं पूरी तरह से व्यक्त करने का मौका दें, ताकि बच्चा जो है खुलकर आपसे बात कर सके। साथ ही घर में जो है बिल्कुल स्क्रीन फ्री जोन बना देना चाहिए, यानी कुछ समय ऐसा हो जो डिजिटल जो हमारे ये इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे हटकर हो। मतलब हम पार्क जा सकते हैं, उसमें कुछ गेम्स खेल सकते हैं, जिससे अपना जो है समय वो आप अपने बच्चे के साथ बिता सकते हैं। लेकिन हम यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सखियों, हम घर में स्क्रीन फ्री जोन बना सकते हैं। जैसे भोजन का समय है तो उसमें डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय किसी भी कैंडिडेट को मोबाइल या फिर टीवी इस्तेमाल ना करने दें, उससे भी आपका समय बिल्कुल अच्छा जाएगा। बेडरूम के कुछ नियम्स बना लीजिए, जो सोने से कम 1 घंटे पहले सभी डिजिटल जो डिवाइस है उनको कमरे से बाहर कर दें या फिर एक जगह रख दें, ताकि आप अपना समय अपनी बातें कर सकें। साथ ही जो डिजिटल डिटॉक्स होती है, हफ्ते में 1 या 2 दिन कुछ घंटे पूरे परिवार के लिए 9 गजेट टाइम जो होता है उसको तय करें, जिससे आप जो है अपना समय अच्छे से बिता सकते हैं। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म संगीत की दुनिया में और सुना देते हैं ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
3: सखियों, स्वास्थ्य टिप्स में हम बात करेंगे मेनोपोज बीमारी नहीं। बिल्कुल सही, मेनोपोज कोई बीमारी नहीं है। ये हर महिला के जीवन में एक नेचुरल और सामान्य शारीरिक बदलाव होता है जो आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की उम्र के बीच होता है। इसके दौरान जो ओवरीज है उससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना कम कर देते हैं, जिससे मासिक धर्म पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इस दौरान कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जैसे हार्मोन के स्तर में गिरावट के कारण शरीर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। हॉट फ्लेश होना, गर्मी लगना, अचानक चेहरे और गर्दन पर बहुत ज़्यादा पसीना आना, मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन, थकान या फिर नींद न आने की प्रॉब्लम होती। हालांकि ये बिल्कुल नेचुरल है और कोई बीमारी नहीं है। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म सफर की ओर, सुनवा देते हैं ये गीत।

सखियों, घड़ी की सुई यही इशारा कर रही है कि प्रोग्राम जो है अपनी समाप्ति की ओर है। आप अपनी रेडियो सखी राजेश्वरी को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला जगत, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बज रहे हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता

0: और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पास कर दिया। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के मुख्य प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह अब मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी तथा महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। सोशल मीडिया पर JAAC ने 23 जुलाई को महत्वपूर्ण दिन बतलाते हुए लोगों से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की थी। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स में भारत के HS प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ से हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग को थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान ने हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:05 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्म शेषनाग से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्म संगीत का अगला गीत आपके लिए उदित नारायण, अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज में फिल्म इश्क है तुमसे से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्म संगीत में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में फिल्म नगीना से गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे माटी के स्वर कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे मुंशीराम सिनोद और पार्टी के गाए कुछ लोक भजन और लोकगीत। प्रस्तुत है पहली रचना।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आप सुन रहे हैं माटी के स्वर कार्यक्रम और आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशीराम सणौद और उनके साथियों की आवाज़ में ये लोक भजन।
4: धनपति धर्म ना करे नरपत करे ना न्याय, भजन करे ना भगतड़ा तो कीजे कौन उपाय, कीजे कौन उपाय जी। सलायक सुनो हमारी दो बेती पूर नदी जद आवे भारी, जाय गड़ी दा खामता धरती टिके ना पाम। धनपति धर्म

अभी आप सुन रहे थे माटी के स्वर कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाया मुंशी राम सिनोद और साथियों की आवाज़ में लोक भजनों को। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 MHz पर शाम के 6:30 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद होगी जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इन समाचारों को हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। कहा, सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए संकल्पबद्ध। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही आज दूसरे दिन भी बाधित रही। राज्य सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम शुरू किया। और प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी

0: कर दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और हमेशा दी जाएगी। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी आज विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही नहीं हो पाई। विभिन्न मुद्दों पर हुए शोर शराबे को देखते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही तीन तीन बार स्थगित हुई। इसके बाद इसे दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। नीट परीक्षा पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों के कारण लोकसभा में गतिरोध बना रहा। वहीं राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने परीक्षा प्रणाली और छात्रों के मुद्दों को लेकर हंगामा किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दों पर बात करना चाहता है। उन्होंने संसद में विद्यार्थियों के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित उच्च अधिकार समिति ने अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित मामलों पर जनता से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं। समिति ने राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के हितधारकों और पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों तथा स्थानीय समुदायों से, जिनकी आजीविका और कल्याण इस क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, उनसे 31 अगस्त तक सुझाव आमंत्रित किए हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित अभियान है। इसमें युवाओं का पंजीकरण, प्रशिक्षण और विभिन्न योजनाओं से जुड़ाव एकीकृत प्रणाली के माध्यम से होगा। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही खेल, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और डिजिटल नवाचारों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री युवा सुयोग की पायलट परियोजना की शुरुआत बगरू विधानसभा क्षेत्र से की गई है। इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास से इसका शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं से संवाद भी किया। श्री शर्मा ने कहा कि देश की प्रगति के लिए युवा शक्ति का सकारात्मक होकर सही दिशा में बढ़ना आवश्यक है।
2: ये प्लेटफॉर्म हमारे युवाओं के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, खेल के लिए, कौशल विकास के लिए और सुशासन से जोड़ने के लिए ये बहुत बड़ी पहल है और इस पहल के माध्यम से लगातार हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। युवाओं का धैर्य, आत्मविश्वास, अथक परिश्रम और विकसित भारत की ताकत, वो सभी हमारे युवाओं से जुड़ी है। जब युवा शक्ति सही दिशा में सही संस्कारों के साथ लगती है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र आगे बढ़ता है।
1: उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी इस मौके पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना के तहत प्रदेश के पात्र परिवारों को अब राज्य के बाहर भी निशुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है। राज्य सरकार की ओर से लागू की गई आउटबाउंड इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी व्यवस्था से देश के विभिन्न राज्यों में पात्र लाभार्थी 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज ले सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि 6 महीनों में प्रदेश के 30,000 से ज्यादा लोगों ने अब अन्य राज्यों के अस्पतालों में निशुल्क इलाज करवाया है। सरकार ने पिछले साल 15 दिसंबर से ये योजना लागू की थी। इसके बाद पात्र परिवार देश के अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबद्ध अस्पतालों में उपचार का लाभ ले सकते हैं। गौरतलब है कि देश भर के 16,000 से अधिक सरकारी और 14,000 से अधिक निजी अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है। जयपुर में आज जेडीए मुख्यालय में परियोजना कार्य समिति पीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, यातायात व्यवस्था में सुधार करने और जल निकासी तथा हरित विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लगभग 200

तो 19 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इनमें विद्याधर नगर के पास स्वर्ण जयंती ऑक्सीजन पार्क, रामनिवास बाग क्षेत्र में रॉयल हैप्पीनेस पार्क और राजस्थान उत्सव पार्क के लिए भी मंजूरी दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में करीब 2 सप्ताह के अंतराल के बाद मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात का दौर चला। सीकर में देर रात शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। सीकर ग्रामीण में 11 सेंटीमीटर से अधिक पानी बरसा। उधर झालावाड़ जिले के मनोहर थाना में जारी बरसात के कारण परवन नदी उफान पर आ गई है। 12 जिले में भी आज करीब 1.5 घंटे मूसलाधार बारिश हुई। भरतपुर में भी सुबह से ही कभी हल्की तो कभी तेज बरसात का दौर बना हुआ है। कोटा जिले में भी मौसम का मिजाज बदला और ग्रामीण अंचल झमाझम बारिश से तरबतर हो गए। झुंझुनू, चूरू, कोटपुतली, बहरोड, डीडवाना, कुचामन में भी मॉनसून सक्रिय है। बारिश होने से लोगों को उमस और तपन से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 33 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट बताया है। मॉनसून की रफ्तार पकड़ने से प्रदेश के प्रमुख बांधों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। बिसलपुर बांध अपनी क्षमता का लगभग 66% से ज्यादा भर चुका है। वहीं राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए राज्य में जागरूकता शिविर लगाए जाने पर जोर दिया है। श्री देवनानी ने से भारतीय स्टेट बैंक के जयपुर सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक ओमकारनाथ चौधरी ने आज भेंट की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए कानूनी साक्षरता और नशा मुक्ति जागरूकता शिविर लगाए गए। इसी कड़ी में ब्यावर के विभिन्न स्कूलों में नशा मुक्ति और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। भरतपुर में भी न्यायिक अधिकारियों की ओर से विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने के लिए से नो टू ड्रग्स मुहिम चलाई गई। उधर हनुमानगढ़ में भी विद्यार्थियों ने नशा मुक्त जीवन का संकल्प लिया। टोंक जिले के मालपुरा में 4 व्यवसायिक फर्मों पर राज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने तलाश और जब्ती की कार्रवाई की, जिसमें करोड़ों रुपयों की फर्जी बिलिंग के जरिए कर चोरी किए जाने के संकेत मिले हैं। ये कारोबारी तिलहन, खाद्य तेल और चीनी के व्यवसाय से जुड़े हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये चारों फर्में एक ही व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही थी। जब्त किए गए दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र में डिग्गी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। ये दोनों भाई खेत में पाइप ठीक करने गए थे। इस दौरान एक युवक फिसल कर पानी की डिग्गी में गिर गया। दूसरा भाई उसे बचाने के लिए डिग्गी में कूदा, किंतु पानी गहरा होने के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। घटना के बाद गोताखोरों की मदद से उनके शव बाहर निकाले गए। डीग जिले के सरकारी स्कूलों में इको क्लब बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सतत विकास लक्ष्यों और केंद्र सरकार के लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन के तहत ये पहल की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी बलवीर सिंह ने बताया कि इन इको क्लबों के माध्यम से साल भर वर्षा जल संग्रहण, वन महोत्सव और पौधरोपण की गतिविधियां होंगी। इनके जरिए बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 2025 के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये परीक्षा 26 और 27 जुलाई को 2 पारियों में होगी। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर में भी जिला स्तरीय परीक्षा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 28 जून को हुई वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे।
यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं

0: समय के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही आज दूसरे दिन भी बाधित रही। राज्य सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम शुरू किया और प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं साकेत गोयल। अरावली पर्वतमाला की गोद में बसे सिरोही जिले में पिछले दिनों कई महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई। जिले में प्रशासनिक स्तर पर कई आयोजन हुए जिसमें लोगों की बढ़ चढ़कर भागीदारी रही। वहीं धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से भी जिले में उत्साहपूर्ण माहौल रहा। इस बीच माउंट आबू का सुहावना मौसम पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सिरोही जिले के आबूराज के ज्ञान सरोवर में विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से दो दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर पिछले दिनों संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे शिविर आत्मचिंतन और व्यक्तित्व विकास के माध्यम से कार्यकुशलता, सकारात्मक नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि ये शिविर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सभी को संकल्पित भी करेंगे। श्री मेघवाल ने कहा कि शिविर में मंथन के बाद तैयार किया गया घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार को तेज करेगा। चिंतन शिविर में देशभर से आए विधि विशेषज्ञों, न्यायिक अधिकारियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने न्यायिक सुधारों, तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था, पारदर्शिता और जन सुलभ न्याय जैसे विषयों पर विभिन्न सत्रों में चर्चा की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले पिछले दिनों सिरोही जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने मानपुर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान बुद्ध की शांति, करुणा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। पत्रकारों से बातचीत में श्री अठावले ने कहा कि MSME सेक्टर को मजबूत कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले भर में विशेष उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आबूराज में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि अरावली की गोद में बसा आबूराज आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है और योग के लिए सर्वोत्तम स्थलों में से एक है। इस अवसर पर हजारों लोगों ने सामूहिक योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आम जन की सरकारी समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। एक ही स्थान पर लोगों को विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। आज से शिविरों के फॉलोअप कैंप भी शुरू हुए हैं। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने पिंडवाड़ा में आयोजित सुगम्य सिरोही अभियान के प्रमाणीकरण शिविर का पिछले दिनों निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अभियान के दूसरे चरण में शिवगंज, आबू रोड और सिरोही में भी दिव्यांग जन प्रमाणीकरण शिविर आयोजित किए जाने हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसी दौरान जिला कलेक्टर ने पिंडवाड़ा क्षेत्र के घरट, मालेरा, जल जीवन मिशन, पंचायत भवन, नर्सरी, मोरस बांध का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है। कभी हल्की बारिश तो कभी घने बादल और कभी धुंध से ढकी अरावली की पहाड़ियां पर्यटकों का मन मोह रही है। नक्की झील, गुरु शिखर, सनसेट पॉइंट, टॉड रॉक, पीस पार्क और प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर सहित सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अच्छी चहल पहल देखने को मिल रही है। छुट्टियों के दिनों में होटल, रेस्तरां और स्थानीय बाजारों में भी रौनक बढ़ जाती है जिससे स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों को फायदा हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सिरोही जिले में पिछले दिनों उल्लेखनीय कार्य हुआ। हरियालो राजस्थान अभियान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिले भर में हजारों की संख्या में पौधे लगाए गए। ग्राम पंचायत रामपुरा के पीपल की चारागाह में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पिछले दिनों शिवगंज शहर को बड़ी सौगात मिली। अमृत योजना 2.0 के तहत लगभग 31 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से शहरी जल योजना के संवर्धन और पुनरुद्धार कार्य का भूमि पूजन किया गया।

0: नई जल टंकी सहित कई कार्यों से शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही सिरोही जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा वाला पेपर लीक वेवणु रोकण सारू सगळाउ मिलर कोशिश करण बाबत कह्यो। सरकार रो दोषिया रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई रो संकल्प दोहरायो। संसद रा दुन्यू सदना माए विपखरा सदस्या रा हंगामा रा कारण आज दूजा दिन ही कामकाज नी भे सक्यो। राज्य सरकार नौजवाना ने और मजबूत बनावण सारू मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम चलायो। और प्रदेश माए चौमासारी बिरखा ओजू शुरू हुई, कई थोड़ा में बरसियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे बस समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवता भगत माए वेवण वाली परीक्षा वाला पेपर लीक वेवण रोकण सारू सगली संबंधित पार्टियां मिलर कोशिश करण बाबत कहो है। आज संसद भवन माए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए रा संसदीय दल री हर सप्ताह वेवण वाली रणनीति मीटिंग पाछे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आ जानकारी दीनी। वे बतायो के प्रधानमंत्री परीक्षा वाला पेपर लीक करण वाला रा खिलाफ कड़ी कार्रवाई करण सागे देश रा नौजवाना रा भला रो संकल्प दोहरायो। रिजिजू कहो के लाडला दिना भिया नीट पेपर लीक मामला रा सगला आरोपिता ने गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी जेल में बंद है।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब करके करें।
1: श्री रिजिजू कहो के प्रधानमंत्री मोदी न्यारा न्यारा देशा सागे करी जिया मुक्त व्यापार समझौता रा बारा मा ये जानकारी दीनी। वे कहो के किसाना रा भला माथे खास ध्यान दियो चियो है और हमेशा दियो चावेला। संसद रा पावस सत्र रा दूजा दिन आज ही विपखरा सदस्या का न्यू करी जे हंगामा रा कारण दोनों सदना री कार्रवाई नी चाल सकी। शोर शराबा रा कारण दोनों सदना री कार्रवाई पहली तीन तीन दफा और पछे आखा दिन सारू टालती रिची। नीट परीक्षा पेपर लीक समेत न्यारा न्यारा मुद्दा रा कारण लोकसभा री कार्रवाई माई लगातार अड़चन आई, जदके राज्यसभा माई विपखरा सदस्य परीक्षा प्रणाली और विद्यार्थियों जुड़िया मुद्दा माथे हंगामो कीनो। लोकसभा माई विपखरा नेता राहुल गांधी आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाओं मुलाकात कर विपक्ष कानू विद्यार्थियों रा मुद्दा माथे बातचीत री मंशा जताई। वह संसद माए विद्यार्थियों रा मुद्दा माथे विगतवार चर्चा री मांग कीनी। ये पाछे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोशल मीडिया रे जरिए कहो के सरकार नीट और वाऊ जुड़िया आंदोलन रे बारा माए संसद माए चर्चा सारू तैयार है। सुप्रीम कोर्ट कानून बनाई जी समिति अरावली री डूंगरियां और पहाड़ियां जुड़िया मामला माथे जनता री राय मांगी है। समिति राजस्थान हरियाणा गुजरात और दिल्ली रा इनू जुड़िया एड़ा लोगां पर्यावरणविदां इन्हें बचावण वाला और स्थानीय समुदायों राय मांगी है, जानी काम कमाई और भलो इनू जुड़ियो है। समिति ने 31 अगस्त ताई राय दी जा सके है। राज्य सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म माथे आधारित मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम चलायो है। इन तहत नौजवाना रा नाम मंडावण सिखावण और न्यारी न्यारी योजनावां जुड़ाओ एकीकृत प्रणाली रे जरिए भे सकेला। इनरो मकसद नौजवाना ने नौकरी धंधा रा मौकाओं जोड़ और खुद रे पाण उबा करनो है। मुख्यमंत्री युवा सुयोग री पायलट परियोजना री शुरुआत जयपुर कने बगरू विधानसभा हलकाओं करी जी है, जिनने आगे पूरा राज्य माए बधाई जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज मारा रहवास हूँ इन री शुरुआत कीनी। ई मौके वह नौजवाना सागे बातचीत कीनी।
3: ये प्लेटफॉर्म हमारे युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए, खेल के लिए, कौशल विकास के लिए और सुशासन से जोड़ने के लिए ये बहुत बड़ी पहल है और इस पहल के माध्यम से लगातार हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। युवाओं का धैर्य, आत्मविश्वास, अथक परिश्रम और विकसित भारत की ताकत वो सभी हमारे युवाओं से जुड़ी है। जब युवा शक्ति सही दिशा में सही संस्कारों के साथ लगती है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र आगे बढ़ता है।
1: उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल इस मौके मौजूद हा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना राते प्रदेश रा पात्र परिवारा ने अब दूजा राज्य में आई मुफ्त इलाज मिल रियो है। राज्य सरकार री ओर चलाई जी आउटबाउंड इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी व्यवस्थाओं पात्र लोग देश रा न्यारा न्यारा राज्य में आए 25 लाख रुपया ताई रो कैशलेस इलाज ले सके है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो के 6 महीना में प्रदेश रा 30,000 लोग दूजा राज्यां रा अस्पतालां में मुफ्त इलाज करायो है। सरकार लारला साल 15 दिसंबर ने आ योजना चलाई ही। ई पाछे हुई पात्र परिवार देश रा दूजा राज्यां में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाओं जुड़िया अस्पतालां में इलाज करा सके है। देश रा 16,000 सरकारी और 14,000 गैर सरकारी अस्पतालां में ओ सुविधा मुहैया कराई चियो है। जयपुर रा जेडीए मुख्यालय में आज परियोजना कार्य समिति पीडब्ल्यूसी री मीटिंग राखी जी। इनमें शहर रा बुनियादी ढांचा न मजबूत बनावण, आवण जावण री व्यवस्था में सुधार करण, पानी री निकासी, हरित विकास और जनता रा सुविधा में बढ़ोतरी जुड़िया प्रस्ताव माथे चर्चा करी जी। जेडीए रा आयुक्त सिद्धार्थ महाजन री सदारत में भी ई मीटिंग में करीब 219 करोड़ रुपया रा खर्च वाली विकास री कई परियोजनावां ने मंजूरी दीरी जी। इन दौरान विद्याधर नगर कने स्वर्ण जयंती ऑक्सीजन पार्क, रामनिवास बाग हल्का माय रॉयल हैप्पीनेस पार्क और राजस्थान उत्सव पार्क सारोई मंजूरी दीरी जी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य में करीब 2 सप्ताह पाछे चौमासारी बिरखा ओजू भेवण लगी है। लाडला 24 घंटा में कई थोड़ा बरसात हुई। सीकर में मोड़ी रात सरूफियो बरसात रो सिलसिलो आज सवारे ताई चालतो रहो। सीकर जिला रा गावाई हलका में 11 सेंटीमीटर उबत्तो पानी बरसियो। झालावाड़ जिला रा मनोहर थाना में भी बरसात परवन नदी उफणबा लगी है। 12 जिला में आज करीब 1.5 घंटा ताई जोरदार मेह बरसियो। भरतपुर में सवारे हुई बिरखा वह रही है। कोटा जिला रा गावाई हलका में झमाझम बारिश हुई। झुंझुनू, चूरू, कोटपुतली बहरोड और डीडवाना कुचामन हुई बिरखा वेवन रा समाचार मिलिया है। मौसम विभाग आज 33 जिला में बारिश रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। चौमासारी बिरखा ओजू जोर पकड़बाऊ राज्य रा खास खास बंधा माए पानी आवन लग गयो है। बीसलपुर बंधो बूतारो 66% उबत्तो भर गयो है, जबकि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बंधा माए पानी रो लेवल लगातार बध रियो है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बधता साइबर अपराधा न ध्यान राखता थका जागरूकता शिविर लगावण माथे जोर दिनो है। वे आज भारतीय स्टेट बैंक रा जयपुर सर्कल रा मुख्य महाप्रबंधक ओंकार नाथ चौधरी सागे बातचीत दौरान आ बात कही। वे कहो कई सारू मोटा पैमाना माथे जागरूकता अभियान चलावण जरूरी है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण री ओर आज सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में कानूनी साक्षरता और नशा मुक्ति जागरूकता शिविर लगाई चिया। ब्यावर री न्यारी न्यारी स्कूल में विद्यार्थियों ने नशीली चीजा काम लेवण उवेवण वाला नुकसान रे बारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण री ओर जानकारी दीरी जी। विद्यार्थियों ने नशो नीकरण और स्वस्थ जीवन शैली अपनावण रो संदेश दियो चियो। भरतपुर माई न्यायिक अहलकारान री ओर न्यारी न्यारी स्कूल माई नो टू ड्रग्स मुहिम चलाई ची। जयपुर नगर निगम री ओर कुत्ता और बिल्लिया ने टीका लगावन रो खास अभियान चलाई चियो है। निगम रा आयुक्त ओम कसेरा बतायो कहीं सा गई पालतू कुत्ता रा रजिस्ट्रेशन रो काम ही शुरू करण बाबत जयपुर माई शिविर लगाया चावेला। व वे बतायो का ऑनलाइन तरीका हुई घर बैठिया कुत्ता रो पंजीकरण करायो जा सकेला। टोंक जिलारा मालपुरा माए राज्य कर विभाग री प्रवर्तन शाखा तिलहन खाद्य तेल और शक्कर रा कारोबार जुड़ी चार फर्मा माथ तलाशी और जब्ती री कार्रवाई कीनी। इन दौरान करोड़ा रुपया रा फर्जी बिल लगार टैक्स चोरी करण री ठा पड़ी। जब्त करी जा कागजात री जांच करी जा रही है। श्री गंगानगर जिलारा राय सिंह नगर हल्का माए डिग्गी माए डूब जावन रे कारण दो जना री मौत वे की। एक ही परिवार रा दोन्यू जना खेत माए पाइप ठीक करण किया हा जमायो एक जनो रपट और पानी रे डिग्गी माए पड़ गयो। वाने बचावन सारू दूजो जनो ही डिग्गी माए कूद्यो पर पानी गहरो वे वणु दोनों जना डूब गया और मारी मौत वे की। हादसा पाछे गोताखोरा ने मदद दोनों लाशा बाहर निकाली ची। डीग जिलारी सरकारी स्कूला माए इको क्लब बनाया चावेला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति रा लगातार विकास रा लक्ष्य और केंद्र सरकार रा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन रा तेत आशीर्वाद करी ची है। जिला शिक्षा अधिकारी बलवीर सिंह बतायो के आ इको क्लबा ने जरिए आखा साल बिरखारो पानी भेड़ो करण वन महोत्सव और पौधा रोपण रा काम करिया चावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग कान्यू 26 और 27 जुलाई ने दो दो पारियां माए ली जावन वाली कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 2025 री जरूरी तैयारियां पूरी कर ली रही है। परीक्षा सारू जिला स्तर माथे कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। ये विचार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड री ओर 28 जून ने कराई जी वन पाल सीधी भर्ती परीक्षा री प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करती रही है। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा वाला पेपर लीक वेवणु रोकण सारू सगळाऊ मिलर कोशिश करण बाबत कह्यो। सरकार रो दोषियां रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई रो संकल्प दोहरायो। संसद रा दोन्यू सदना माए विपक्ष रा सदस्यां रा हंगामा रे कारण आज दूजा दिन ही कामकाज नहीं भे सक्यो। राज्य सरकार नौजवानां ने और मजबूत बनावण सारू मुख्यमंत्री युवा सहयोग कार्यक्रम चलायो। और प्रदेश में चौमासारी बिरखा ओजू सरू भी कई थोड़ा मौसम में बरसियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
4: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर।
0: किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनना सगला बहनें बहनें टाबरने गणे हेत और को सु राम राम। और किसान भाई देखो हमारे साथ है आज है मनोज भाई। मनोज भाई राम राम।
4: राम राम शरण भाई आपने और किसान वाणी सुनवाला सगला श्रोताओं ने गणा हेतु गणा कोडू
3: राम राम, राम। देखो मनोज भाई देखो राम राम करा घर भी तीन पर भी तीन खेती आरी पशु और जे इरे साथ साथ देखो अपन जे बात करा यार देखो कई तरह के काम री बात आप बतावा भी जे आप देखो अभी जिया चौपाल का नहीं आया तो देखो यहाँ लगे हो चलो बरसात आने वाली
4: आज बादल छाए है और मौसम में एक मोई कहे गए एक दो दिन में बरसात होनी चाहिए
3: होनी चाहिए।
4: देखो बरसात पहली प्री मानसून तो शरण भाई ठीक ही हुई पहली वाली क्या जी और अब बाहर जी की तो खासा लंबी खंचीज की जी को बयान है अपन सगड़ा ने किसान ने सगड़ा ने बरसात की जरूरत है
3: जरूरत है जरूरत कही। देखो मनोज भाई जय बरसात की बात करा तो देखो अपनी जगह फसल है माने लगभग देखो एक महीनो ही को है। अब की बार कही हो जो प्री मानसून की बरसात आई भी आपने है जो लगभग 10 जून 11 जून का खेती अपने
4: वो भी कर दी
3: तो भी बुआई में देखो अब जी महीनो डेढ़ महीनो उंडकी और बारिश होनी तो बरी है जो फसल है जो बिल्कुल जड़न के कगार मत आएगी और इंद्र भगवान ने आई मेहरबानी का टेम सर जो बरसात हो ना तो पच कह सकेंगे देखो बहुत ही है जो अच्छो मामलो है किसान भाई है जो बढ़िया आस भी रखे देखो आस रखनी जरूरी है। देखो किसान जगन आप अंदा तक
4: बिल्कुल सही
3: बिना देखो जो को सब काम है नहीं जो अपनी अर्थव्यवस्था कृषि माता इस निर्भर है
4: बिल्कुल कृषि माता बरसात बिना तो कृषि है ही को नहीं। और अब बरसात की बात कर लीजिए अब बार थोड़ो कहीं है ज्यादा बात चीज चल रही
3: बात तो बिल्कुल आप
4: मोदी जी आप कैच द रेन
3: हाँ पानी बचाओ
4: पानी बचाओ पानी पकड़ो मतलब पानी को संरक्षण क्या कर लिया जे भाया खेत के मायने खेत लड़ाई करे हुए जे पापा किसान खेत के मायने डिग्गी हुए ढूंढ हुए और तो भी पानी बचोड़ा डेढ़ महीना मायने अपन खेत में बिजली है तो मोटर लगा सिंचाई कर सका खेत में मान लो पानी की कोई बिजली सुविधा नहीं है तो ट्रैक्टर के द्वारा पंप लगा भी छोटी मोटी सप्लाई करा
3: तो पानी उजत करा
4: पानी उजत करा
3: तो केस का रेन बहुत आप बढ़िया बात देखो भारत सरकार और शुरू करियो एक कार्यक्रम राष्ट्रीय वो जल संरक्षण अभियान है मनोज भाई ये उद्देश्य अपन करा उद्देश्य री बात हो वर्षा जल को ज्यादा से ज्यादा अपने संग्रहण करना चाहिए और एक अपने जो जमीन को भूजल इस तरह बढ़ेला और जट भी बारिश है तो बट वर्षा जल आप संचित करा। अब देखो मनोज भाई जी भारत में बढ़ती जनसंख्या जलवायु परिवर्तन है भूजल को अत्यधिक दोहन है जल संकट लगातार बढ़ रही है और एड़ा में कहीं है कि जल जो संरक्षण करनो बिने बचानो आप बहुत आवश्यक काम
4: आवश्यक है
3: तो इन अभियान के अंतर्गत आप जगह लोग है आपने देखो अपने घरारे माई स्कूल माई कार्यालय माई खेता में जटे भी वर्षा जल है बिन जल संचयन प्रणाली को अपना अपनावा और ज्यादा ज्यादा आप भैया ने जो प्रेरित करा कि भाई जल है तो मनोज भाई कल
4: है
3: जल बिना कुछ नहीं।
4: शरण भाई बात सही की त्योहार की खेत में तो आप संरक्षण करने की बात कराई है पर आप खेत में घर बने है या खेत के बारे घर में अब गांव में घर है तो अपन मकान की छत्ता की साफ सफाई कर प्रार अपन का होद है टंका है
3: बरतन
4: में पानी भी काम आवे और एक अलावा खूब भरण कोई कुआ है तो सीधी ढलान मायने पानी आप घाल दिया कटे या जमीन में खड़ा खोद पानी आप मान लो ऊंडा घाला तो पानी को इस तरह जमीन में बढ़ जावे
3: तो हार्वेस्टिंग
4: सिस्टम भी
3: सिस्टम है तो केसदार रेन अभियान है आप देखो अपना भैया ने बताया वो जो केसदार अभियान जल संरक्षण अभियान है आप कर सका तो आई बात है अपने घर की देखो छत्ता है बट आप जल संचयन प्रणाली लगावा और जो बरसात को जल है वो टांका में संग्रहित करा भूमिगत संरचना संग्रहित करा और जगह तालाब है कुआ है जलाशय बारी देखो बरसात की टाइम अपन
4: सफाई
3: करो जल वर्षा है वो बिल्कुल है जो साफ रहे स्वच्छ रहे तो अपन देखो बीमारियों दूर रहेला और ज्यादा ज्यादा मनोज भाई है पेड़ लगावा और पेड़ अपन देखो ज्यादा संख्या तादाद में लगावा तो बरसात बिल्कुल है जो उचित रहे अवेली और जगह जल स्रोत है बारी अपन रक्षा करा
4: बिल्कुल
3: ध्यान भी रखा अपना बढ़ेरा ही देखो जगह नाडी तालाब थावड़े
4: मारी
3: बिल्कुल है जो सुरक्षा करता एक आदमी तैनात कर रखता प्रेरित रखता
4: और सरकार तो अपने एक विशेष प्रेरणा देने वास्ते वो काम करे पर बिना किए अपन को कर्तव्य बनाए को काम अपने
3: करना चाहिए करना चाहिए बिल्कुल
4: तो आ तो बात हुई अपन की जल संरक्षण की मौसम की बरसात की
3: बरसात
4: आप सरवण भाई चौपाल माता कोई फसलों की बात भी करें
3: बिल्कुल
4: फसलों की बात भी
3: करें
4: तो आज फसल का मायने अश्वगंधा के बारे में बातचीत करा अश्वगंधा है जिसका नाम वैज्ञानिक नाम है विथानिया सेमनीफ्लोरा वो एक औषधीय फसल है और आयुर्वेद का मायने एक उपयोग है जिसको आप तनाव कम करने वास्ते इम्यूनिटी बढ़ाने वास्ते ताकत देने दवाया मायने भी इको काम आवे
3: वो तो बहुत जोरदार काम है अश्वगंधा भी देखो अश्वगंधा भी नागौरी जो कि राजस्थान में नहीं मतलब भारत में है जो को प्रसिद्ध है
4: बिल्कुल हमारा प्रधानमंत्री जी फॉरेन में गया विदेश में बटे जी का खिलाड़ी आया बटे का जी का नेता लोग आया जो कोई मिलने वाला ना तो भी ना नागौर की अश्वगंधा ने एक विशेष कहीं किया जी को जी आई टैग
3: मिलो
4: जी आई टैग नाम दे भी नाम कोई दूसरो आदमी आगो कह सके नागौर की फसल नहीं उगी बारह की फसल है बिन अपन नागौर को नाम ले नहीं बेच सके
3: नहीं बेच सके
4: नागौर के अश्वगंधा नाम बिकी तो बढ़िया चीज है इको डेट प्रचार प्रसार अपा देश का प्रधानमंत्री भारत नहीं भारत बारह में उपहार दे बराबर भी करियो
3: करियो है तो बहुत देखो अपार वास्ते बड़ो गौरव विषय है और अब देखो अश्वगंधा री अपा बात करा इरी खेती री बात करा तो देखो एक एड़ी मनोज भाई अनूठी फसल है जो कम पानी में उजावे कम उपजाऊ जबकि जमीन है भी एक बेहतरीन तरीके अपा मुनाफो ले सका और आवारा पशु है नी मोटी बात है इनके नहीं खा सके नहीं खा सके
4: गणेश की खेती का अपन रखवाली करने की भी जरूरत को नहीं अपने आप ही उग जाओ एक बार हो जाना एक बार से अपन बात करा उपयुक्त जलवायु और माटी क्या की चाहिए तो शुष्क और अर्ध शुष्क मिट्टी वे बयान की जलवायु मायने फसल चौकी पैदा हो जाए बलुई दोमट मिट्टी वे हल्की लाल मिट्टी वे जी का मायने
3: पीएच मान 7-8
4: और ध्यान रखने वास्ते खेत में कोई घनी जल रखनी चाहिए जल भराव घो नहीं होना चाहिए घने पानी की आवश्यकता
3: और जब बुआई री टेम री बात करा समय री तो देखो ये मुख्य बुआई है वा मनोज भाई लेट मानसून हुए तो भी चले और जून के अंतिम सप्ताह में
4: और जुलाई तक
3: जुलाई को प्रथम सप्ताह है आप बुआई बिल्कुल आप आराम कर सका
4: सिंचाई की बात करा तो आज सूखा में आसानी फसल हो जाए और बहुत कम पानी मायने हुए फिर भी मानसून के बाद अगर जरूरत पड़े तो एक या दो हल्की सिंचाई करता तो
3: कहना ही और इस साथ देख कटाई री बात करा उपज री बात करा तो बुआई लगभग आप कह सका 150-180 दिन यानी चार लगा 6 महीना के बाद में पौधा की पत्तिया है पीली पड़ जावे और तब आप देखेंगे आरी है जो पकआउट हुए तो यारी जो की सूखी जड़ा है बीज है बाजार में अच्छा दवा में है जो बिल्कुल बिके और अच्छा मुन्ना फड़ो काम है
4: और इके देखो जड़ा तना सगला ही काम आवे लेवण वास्ते और नागौरी अश्वगंधा है जिकी को तो बार विशेष भारत सरकार अपांगे मायने दियो तो अपांगे को मान बढ़ी हुई है नागौर को और जान सोजत में मेहंदी स्पेशल मानी थी बयान दूसरे अपांगे राज्य दान किया जी की अश्वगंधा मानी जन लागी
3: अपने वास्ते बड़ी अच्छी बात है
4: और एक उच्च औषधि गुण वाली है इनमें पाया जाने वाला जी का इक्विटी कंपाउंड सफा कहते हैं तो वह ताकतवर है और एक ही तनाव मुक्त मायने ब्लड प्रेशर मायने तनाव कम हुई तो ब्लड प्रेशर बीमारियां कम हुई
3: अपने आप ही कम हुई
4: गोडा का दर्द मायने और शरीर में ताकत बढ़ाने मायने इनमें भी विशेष रूप काम आवे एक बीज वैजी का चमकीला लाल बीज भी अगर और शुद्धता की एक उत्तम क्वालिटी है जिकी अपन घाटे की मानी जावे
3: तो देखो कितना देखो गुण विगार कितनी अच्छी है जगह अपनी जो की है और आप देखो इन्हें मनोज भाई को जीआई टैग मिलियो मेरे फायदा री बात करा तो एक तो देखो अपनी वैश्विक पहचान हुई है जका में नागौर अश्वगंधा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर एक ब्रांड के रूप में पहचान मिली के नागौर में जीआई टैग मिलियो और दूसरी सब बड़ी बात है नकली उत्पादन में रोक लगी कोई भी जगह दूसरा क्षेत्र का व्यापारी है जबकि साधारण अश्वगंधा नागौरी बता और माने नहीं बेचेला और ग्राहक है माने बिल्कुल शुद्ध मिलेगी तो आ एक बहुत बड़ी अच्छी बात
4: और चलो अश्वगंधा सब जगह उग है किसान की आमदनी बड़ी है पर नागौर जिला का जगह किसान अश्वगंधा की खेती करे ज्यादा आमदनी पैदा हुई और आज बात हुई अश्वगंधा की खेती और आज आप एक बात और करा फसल आप बहुत होती सुरक्षा लेने वास्ते सरकार अपने फसल बीमा योजना चला
3: फसल बीमा
4: जिको देखो श्रवण भाई कम प्रीमियम है समुदाय नाम मात्र की कोई राशि लगे बहुत ही कम प्रीमियम लगे जिका माई की ये सो तो राजस्थान सरकार देवे
3: की केंद्र
4: और की केंद्र सरकार देवे दोनों मिल पर आप आधी पूर्ति बे कर दे और थोड़ा पैसा में अगर आप बीमो करा देवा तो फसल बोवा जटो लगार बीज बोण लगार फसल कटाई के 15 दिन तक चाहे भले बाढ़ आ जाओ भूकंप आ जाओ आग लाग जाओ सूखो हो जाओ कीड़ा लाग जाओ फसल में बीमारी लाग जाओ बेगो सगड़ा को मुंह आ जाए जो अपने सरकार देवे तो अपन फसल बीमा जान करणो चाहिए करणो कटे जैसे पेट बंदी बैंक हुए या पेट बंदी कोई अपन की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है जट अपन किस क्रेडिट कार्ड और बनेड़ा है बटो पूछताछ कर प्रो करो ताकि अपन मुंह हो जाओ सोरो लेना पड़े पहली आ सुविधा ही जिकी बैंक जिका कोई लोन लियोड़ा होता खाली बे किसान वास्ते ही पर अब सरकार यान की व्यवस्था कर दी कोई भी को फसल बीमो ले सके तो आपा यान आपा मेन का को दाव दंडा को बीमो करावा बयान फसल को बीमो ही करा लिया तो आपा खासा हद तक बस सका।
3: देखो बहुत बड़ी बात है और जब बीमारी बात करो तो देखो एमआई को नहीं खरीफ रे माते खरीफ रबी किसी भी फसल में तो बीमा करा सका तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाई है जो को फसल बीमा करावे और इरो लाभ
4: ले
3: तो ऐ तो देखो मनोज भाई है जो की बातचीत करी और भी कराला तो क्यों ना सुनो आप कामरी बात

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: तो मनोज भाई आ तो सुनी कामरी बात। और अब देखो देखिए आप बात कर रहे हैं, देखो टेम टेम सर है जो गवा रमाई जमा या पचे गवा में जो किसान भाई मिले जय किसान मिले में वो मंथल भी करा। तो देखो आज आपने है जो को आप किसे गांव गया और किस किसान बात करी बा भाई करा फूक दी।
7: आज किसान नहीं कर प्रेरित बयान तो किसान ही है।
6: हाँ किसान
7: पशुपालक बात करे, नागौर शहर का ही है, रविकांत नाम को पशुपालक है और बहुत बड़ी डेयरी रख है जिगा में 250 पशुधन है और वो युवा होते हुए भी आप पूछो को व्यापार चला
6: रही है।
7: अनुभव सुना
6: तो पहले भैया सुनो आप अंतर।
7: देखो भैया टाइम टाइम सर वो किसान हूँ पशुपालक हूँ बातचीत करने वास्ते गांव गांव तर जाया करा हाँ। आज मैं नागौर में ही अटे मानसर रोड में एक डेयरी है, डेयरी में भाई खड़ा है बातचीत करा। राम राम साह।
8: राम राम साह।
7: क्या नाम है सर?
8: रविकांत।
7: रविकांत जी डेयरी तो कैसा पशु चल रही था?
8: घर में सात आठ जन आप खुद लगेड़ा और अपने 5-6 वर्कर लगेड़ा है।
7: 5-6 वर्कर लगेड़ा
8: गोबर वास्ते अलग लेडीज आवे
7: गोबर उठाने वास्ते। तो इतनी गायों को मान मौसम गर्मी को चल रही है, पहली बात मौसम के हिसाब में करा बरसात हाल आप कमी हुई है तो पंखा का लगेड़ा सगड़ा मायने पर फिर भी गर्मी रहे थे ना कि गाय ने
8: भैंसा वास्ते फोकर लगवाया बार 2 साल पहले तो फोकर सिस्टम लगवा रखे है तभी के वास्ते हो जाए शानदार।
7: सोलर कूलर चलो
8: नहीं फोकर लगेड़ा फोकर
7: फिर क्या
8: फोकर फमारा।
7: अच्छा जहाँ
8: ऊपर
7: फमारा
8: आष्टे माला पे
7: वो फमारा चले ठंडक रहे
8: ठंडक रहे
7: गाया मत ही रखो
8: नहीं गाया मत तो नहीं लेकिन भैंसा का बाड़ा वहां रखा और गाय का बाड़ो के ऊपर अपन खुद को घर बनाए है तो भी ठंड नीचे जी
7: बार गर्मी में नहाना पड़े।
8: हाँ गाय नुहानी पड़े और भैंसा ने भी रोज डेली नुहानी पड़े गाय रोज रोज को नुहानी पड़े 2-4 दिनों नुहानी पड़े और भैंसा ने तो डेली नुहानी पड़े।
7: पानी कितना पाना पड़े हमारे ने
8: पानी तो गर्मी के साथ फुल पानी पीवा पार तो
7: 2-3 बार दे।
8: हाँ 2 बार
7: तो अब आ रही मौसम है ना बंटा अंटा में कहीं चीज दो
8: बंटा में हमारा पार्ट चल रही है कपास की खड़ सोयाबीन की चपड़ और चने की चूरी मूंग की चूरी और उड़द की चूरी
7: कुल मिलाकर पौष्टिक चीजें सब दे रही हो।
8: हाँ
7: तो गाया निरोगी है?
8: हाँ गाया सब निरोगी है। और
7: किसी किसी नस्ल की गाया
8: है आपा गाना? सब लगभग सब क्रॉस ब्रीड गाया है।
7: हाँ।
8: साहिवाल क्रॉस ब्रीड, गिर क्रॉस ब्रीड, राठी सिमन जो लगवाए वो
7: तो गाया गया वो इंजेक्शन द्वारा ही गर्भाधान करो या
8: नहीं? दोनों सिस्टम आपा गाना
7: दोनों सिस्टम ही रखा।
8: हाँ सांड भी है गाया वास्ते और भैंस वास्ते फाड़ो भी है
7: और सिमन वो भी
8: सिमन भी करवा।
7: तो कुल मिलाकर गाया का मायने बीमारी सीमारी हो जाए कोई गाया कोई बीमारी सीमारी हो जाए घर जाए कोई डॉक्टर बुलाओ कोई।
8: हाँ डॉक्टर चिकित्सक है पाक नर्सिंग जी
7: के गाय मार बनाया
8: नाड़िया तो यार जो साफ सफाई वास्ते जो पानी की व्यवस्था
7: गोमूत्र
8: और
7: गौमूत्र और इकट्ठो करो
8: इकट्ठो कौन करा
7: भारी गाड़ो गौमूत्र का भी उपयोग कर सको चाहो तो
8: कर सका लेकिन तो आपने
7: बैठा को नहीं इतना साउंड साउंड नहीं और पानी प्यान गया और तो खुद के कुआ है।
8: हाँ,
7: है। के। पानी है में?
8: पानी फुल
7: है
8: खारो पानी है लेकिन है फुल जितो निकालो रात का वापस आ जाओ।
7: अच्छा पहुंचो आ जाए कुल मिलाकर ऊपर की मेहरबानी
8: पानी की
7: और पीने वास्ते नल को पानी रहा
8: वास्ते अपन टेंकर लगाना पड़े
7: क्योंकि तो आदमी हो जाए जरूरत पड़ेगी तो और भी सप्लाई को पानी आवे बराबर
8: सप्लाई का पानी बहुत दिक्कत है सप्लाई पानी की। हाँ समस्या बहुत ज्यादा समस्या है
7: कुल मिलाकर टेंकर में बाहर पड़े
8: रोज का 4 टेंकर पानी आवे।
7: तो टेम को दूध तो गाय बताओ तो घणो ही महंगो
8: दूध तो घणो ही होवे
7: पछी गाय करो गांव गांव देओ या डेरिया में देओ या शहर में सप्लाई करो
8: सिटी सिटी सप्लाई आपाणी आपण दुकान भी है दुकान सप्लाई हो जावे डेरी फार्म में सप्लाई हो जावे और आपा सिटी में घूम घूम भी दिया करा
7: मैं देखो धान दिन भर में घूमता ही रहो अटाओ तो ही रहूंगा ताकि डेरी में कई बार हां रवि कांत जी तो थे युवा हो कि पढ़िया बण्या हो
8: हां पढ़ाई करो 12th
7: 12th कर छोड़ दे कोई बात नहीं घर कोई तो मोटो धंधो है और बढ़िया कह था कि खुद को धंधो हो कहीं नौकरी कहीं दूजो काम करो ताकि डेयरी व्यवसाय बहुत मोटो है तो संतुष्ट हो पढ़िया लिखा हो धंधो
8: संतुष्ट फुल संतुष्ट हाँ और पढ़ाई में तो बस करनी ही बाकी सरू इम ही हो कि भाई अपन एम ही की करना है तो आप यूँ फुल संतुष्ट और इम अपन जीवन व्यापन हो रहा है
7: मतलब पूरा परिवार को अपन बढ़िया
8: जोरदार
7: काम हो जाए सवा टाणा सब निकल
8: जाए आराम निकल जाए और
7: पूरा परिवार भी टेम रह जाए और फिर रहो भी गया कि खाली धंधा के हिसाब मन मन लगे ताकि जगह हिसाब साफ सफाई है खान पान की व्यवस्था है सेवा भाव ज़्यादा है फिर गाई कहानी चाहो भाई ने मान लो अपा है कि देखभाल क्या करनी चाहिए गौ पालन क्या करना चाहिए
8: गौ पालन व्यवसाय के हिसाब नहीं करना चाहिए
7: हाँ
8: अपा एक देखो जावे तो डेयरी फार्म में यान करो जन अपा एक खुद को अपने पर्सनल काम है अपा गौ सेवा सेवा है कुछ नहीं है आप एक सही ढंग करो गौ पालन और पशु वाला सोलह रखो
7: क्यों मतलब सेवा भाव
8: रखो सेवा भाव रखो बाकी
7: एम सांगो क्या भी पशु है जान ब्याह तरह पशु है या बीमार पशु है मैंने अलग मान दो
8: हाँ बीमार पशु बूढ़ा पशु सब अलग रहे और अपने जो ब्यापन पशु बना अलग रखना पड़े और बीमार ना हो यार यार वृद्ध पशु ने बने अलग रखा
7: हां वृद्ध तो गौशाला मोन गलो
8: है हां आपा 12 गाट नो काम ही बने
7: अडेरा को बोल बेदार आ सेवा है
8: आ सेवा
7: आ सेवा मोटी लोग प्राय गाई है दूध दूध वेज दूध की सेवा करे
8: नहीं नहीं नहीं आपा ने हर तरह का पशु है चाहे रीप्रेग्नेंट हो या नहीं हो एक बार अपन बाड़ा में आएगी फिर वापस पहुंच जावे बस वो भी है तो भी की आपा आपा घर भी घर पानी भी घर रखा
7: तो बीमार है अपाई जाए क्या बने एन सब में अलग अलग बांधो
8: हाँ अलग अलग सब अलग सेटिंग
7: और एन जान मान लो नीरो चारो तो कह दियो हरो चारो भी देता
8: हरो चारो बार इसी जन्म आज आवन लाग जावे रात अपने हरी चारे कटिंग वेड़ी कुत्तर आया करे जवार की कुत्तर बा अपने चार पांच महीना छह महीना जितने दिन आज डर तक बा अपन चलती रही
7: और सरकार उदाहरण कोई विशेष सहयोग मिले के लिए कौन था तो रविकांत भाई भयान गाय कहने जाओ पशुपालन क्या करना चाहिए कहीं कहीं तैयारी करनी चाहिए क्या की व्यवस्था रखनी चाहिए
8: तैयारी कहीं करनी चाहिए पशुपालन एक अपनो एक व्यवसाय भी है और अपनो भरण पोषण भी हो जाकर तो बिन एक चौका तरीका करना चाहिए एक
7: सेवा
8: भाव तो है ही है भाई और बिना डंगू करो आप कोई पशु हो चाहे बुड्ढो हो तो बिना बारह मत काटो और अगर जितनी आप कर सको आपके साबुन बिस्तर मत बिन करो आप और बाकी भगवान दे रही है तो अभियान ही सिमन चेंज करता रहा और अभियान की पछड़ी आपा आती रहे
7: रविकांत भाई तावड़ी करी अने घणो घणो धन्यवाद राम राम सर
8: राम राम सर
6: तो मनोज भाई आप है जो रविकांत जी बात करी तो आम जगत देखो घना ही है जो पशु डेयरी जाने राके पशु पालक है देखो अच्छी तरह तो दूध है मक्खन है सब तरह का तो आप हिसाब आप बात करी और भय ते पुक्त करी आ तो हुई बात और अब देखो दे लाल सप्तारी बात करा तो मनोज भाई लाल सवाल सप्ते सवाल पूछी जो भाई भैंस है मेरी कोई एक उन्नत नस्ल रो नाम लिखकर चौपाल ते पुक्त करनो है तो देखो उत्तर तो आप बतावा क्योंकि भाई है जो बार बीजे पड़ोतरा या कोई तो ये रहे देखो मुर्रा नस्ल है बदावरी है जाफरावादी आज को सवाल
7: आज सवाल पूछ लो मैं
6: बिल्कुल
7: आज सवाल हो अश्वगंधा फसल पकड़ में कितना टाइम लगे और तो यह प्रश्न का जवाब आज मंडी का भाव है
6: बिल्कुल मनोज भाई है जो आयडा है तो भाई तबियत पूछता करा मंडी में देखो जे हमारी बात करे तो अपन भाई भी ध्यान भी रखे तो मूंगारी बात करा तो मंडी में मूंग है जगह बिकिया 5500 लगा 7500 रुपया
7: और गवार भी क्यों तंगे 5,000 लगार 5,750
6: और जीरा की बात करा तो जीरा रा भाव मंडी में जाते को नीचा में है जो को मनोज भाई 17,000 और ऊपर रा महीने है जो को 22,000 रुपया क्विंटल
7: सौंप बिकी ताकि श्रवण जी 7,000 लगार 13,000 रुपया तक
6: क्विंटल
7: और इस सब गोल के बोले लगी 9,000 लगार 13,600 तक।
6: हाँ और ये जो असल वाली बात करा तो वो भी है जो को 5,800 लगार 6,100 रुपया क्विंटल और दाना मेथी बिकी 5,700 लगार और 6,000 रुपया क्विंटल और सिंधी सुवारी बात करा तो वो 6,000 लगान 7,500 रुपया क्विंटल और यही तारा मेरो बिकियो 5,500 लगान 6,325 और जवार भाव रिया 4,500 लगार 6,000 रुपया क्विंटल और तिल भी देखो काला भी तिल है सफेद तो काला तिल की बात करा तो 9 लगान 11,000 रुपया और सफेद की बात करो 10,000 लगान 11,600 रुपया क्विंटल। तो अब जका किसान भाई ने लागे कि भाई भावड़ा ठीक है तो आप अपनी जींस है जो मंडी में ले जावे
7: और
6: जल्दी ले लेवे।
7: बिल्कुल बिल्कुल अब सिंजा बोर का टाइम है सरणो भाई कोई भजन वजन सुनाओगे आज?
6: बिल्कुल देखो आज बात आज बात घनी करी और भी करा तो क्यों ना कोई सामने टाइम है तो आप भाई ने आज मंगलवार भी है तो सुनावा लोग भजन।

0: मनोज भाई सुनियो देखो भजन और अब देखो कार्यक्रम जो जो चौपाल टेम कुंचोड़ो पूरा हो रही है तो आप क्यों नहीं सीख ले मतलब देवा भी तो भाई ने सीखते हैं देखो पेड़ लगाओ जीवन बचाओ तो भाई हूँ ज्यादा ज्यादा है विनोद भाई ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाओ और सुरक्षा वास्ते अपने जीवन बचाने वास्ते एडो काम
1: सीख के साथ ही आपको मनोज भाई और
0: सरुण भाई ने दे रहा हूँ सीख राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: बदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
0: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
0: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
0: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
2: जी।
0: तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
0: जॉन बील मेला
2: जी,
0: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
2: जी।
0: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
2: अजीत जी, ये भी बताती हूँ लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी
0: जी। पूछिए पूछिए।
2: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
0: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
2: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे, क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए बताइए।
0: हाँ विमलेश जी, लेन देन तो होता था लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
2: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ये बहुत प्राचीन तरीका था
0: जी। बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर।
2: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
0: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है
2: जी।
0: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
2: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी
0: जी। श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
0: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है
2: जी।
0: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
2: श्रोताओ, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
0: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे
2: जी। फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
0: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
2: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अनूठे जोनविल मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जोनविल मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जोनविल मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
2: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
0: सांकेन।
3: आज वल्लरी बहुत उत्साहित है, क्यों? हाँ, ये जानते हैं।
4: यमन भैया कहाँ हो भैया?
5: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ,
4: चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो। भैया, खुश होने की बात तो है ही, पता है पापा का ईमेल आया है।
5: अच्छा, क्या लिखा है?
4: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है, कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
6: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहाँ जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
3: वल्लरी, यमन और उनकी माताजी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
4: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
5: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
6: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
3: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
6: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
3: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
4: नमस्ते पापा।
3: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
4: ठीक है।
3: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
4: बड़ा मजा आया।
3: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो सामान उठाओ अपना, आओ टैक्सी पे चलते हैं। आजा आजा आजा। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
6: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
3: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया।
7: अरे भाई चावतान जी घर पर हैं क्या?
8: अरे आइए आइए वर्मा जी, नमस्ते नमस्ते।
4: नमस्ते अंकल।
8: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी, है ना?
7: बिल्कुल ठीक पहचाना।
8: आइए, स्वागत है आप सबका।
7: धन्यवाद।
8: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा।
7: अरे भाई हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
4: अंकल हमारा यहाँ आने का बहुत मन था, बड़ी सुंदर जगह है।
8: थैंक यू।
4: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
8: ओहो वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
7: जी,
8: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
7: बिल्कुल ठीक कहा।
8: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
7: अरे
8: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखकेन का पर्व जो है।
7: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
4: अच्छा तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
7: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया आई हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
8: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
4: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
8: बेटा ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी।

0: उत्सव भी कहते हैं।
1: जल उत्सव क्यों?
0: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
1: अच्छा।
0: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हैं।
1: हाँ।
0: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
1: जी।
2: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
0: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
2: तो हम भी चले?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो आ जाओ।
2: चलो चलो चलो।
3: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
4: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
3: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चाउतान जी से कहा,
2: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
4: इतने में किसी ने चाउतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
5: अरे।
3: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चाउतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
0: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
2: अच्छा।
0: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़ कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
2: जी अंकल।
0: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
6: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
0: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
6: हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए।
4: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
7: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
8: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan, sung by Neha and Children, recorded by Butty Langlingdo, produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
4: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
3: कुसुम लता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू जी के साथ फिमलेश को आज्ञा दीजिए.
3: नमस्कार.
5: उमंग उमंग उमंग उमंग.
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग. FM 103.7 MHz पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल. रात्रि के 8 बज रहे हैं. कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संसद समीक्षा. कृपया प्रतीक्षा करें.

अच्छा सुनिए, पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आपने ही बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय ये अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11

0: बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे, उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खड़गे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने कहा कि नीट पीपर लेक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में आईसीपी शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपनी विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
2: आकाशवाणी जयपुर।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगा हर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे एल्बम सॉन्ग्स। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सुशांत और इंद्रकला राय की आवाज़ में इस गाने के साथ।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एल्बम सॉन्ग्स में अगला सॉन्ग आपके लिए सोनू निगम की आवाज में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे हैं एल्बम सॉन्ग्स, लीजिए अब सुनिए आतिफ असलम को।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आप सुन रहे थे आतिफ असलम को। इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये एल्बम सॉन्ग्स का प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लीजिए अब सुनिए अनिल नागौरी की आवाज में ये लोक भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लीजिए अब सुनिए अल्लाह जिलाई बाई की आवाज़ में ये अगला लोकगीत।

0: एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ही रहे हैं। मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।

0: दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
3: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय कि आप रिफॉर्म्स लाइए, आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे हम करेंगे रिफॉर्म, कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
4: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटना स्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
5: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवारों को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच एनडीआरएफ की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा, एक नई पहल, पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
0: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमरीका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे, मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार, विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, कहा सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: FM 103.7 MHz पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं आशा भोंसले की आवाज में ये गजल।

तुम चांद से ज़्यादा हसीन हो, ये बात हवा से मत कहना। हवा ज़रा सरफिरी है, चांद को जाकर बता देना। पेश है अगली गज़ल पंकज उदास की आवाज़ में।

गुलाम अली की गाइस गज़ल के साथ ही हमारा आज का ये सुगम संगीत का प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुनेंगे।

अभी आपने किशोर कुमार और साथियों को मोहब्बत फिल्म में सुना। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर और अमित कुमार की, फिल्म का नाम लवर्स।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए और यह है कार्यक्रम के अंतिम पेशकश गुलाम फिल्म से। तर्ज बनाई है जतिन ललित ने, रचनाकार हैं समीर, आवाज कुमार सानू और अलका याग्निक की।

में कुमार सानू और अलका याग्निक को सुना। इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिसने मुंबई की शहरी चमक दमक के बारे में ये बात कही।

0: पागल।
1: दोस्तों आनंद बख्शी की गीतकारी का संसार इतना विस्तृत है कि आधे घंटे के एक कार्यक्रम में उनकी गीतों की दुनिया को समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अपने तरीके से याद करेंगे इस अनमोल गीतकार को जो 21 जुलाई 1930 को जन्मा था रावलपिंडी में। वो रावलपिंडी जो बंटवारे के बाद सरहद के उस पार रह गई, तब ये लड़का 17 बरस का था और उसकी प्यारी रावलपिंडी उससे छूटी जा रही थी। इस रावलपिंडी की याद में बहुत बरस बाद आनंद बख्शी ने लिखी एक नज्म, और ये नज्म हमें फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
2: जब पार्टीशन हुआ था, बख्शी साहब 17 साल के थे, तो उन्होंने 17 साल जिंदगी जीती रावलपिंडी में, तो दूसरा देश बन गया, लेकिन वो थी बख्शी साहब की जन्मभूमि, उन्होंने वहां जन्म लिया था, वहीं गाने सुने, वहां उधर का कल्चर उन्होंने पिया और खाया, जिसकी वजह से वो गीतकार भी बने आगे जाके। पंजाबी कल्चर, फोक कल्चर, सूफी गाने, जब यहाँ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एक नज्म लिखी, उस नज्म का नाम है रावलपिंडी, और तकसीम के ऊपर है उनकी फीलिंग्स, और उन्होंने इस खूबसूरत पोएम को इस तरीके से लिखा जैसे कि एक आदमी एक बिलेवड के लिए लिखता है या कोई जो छूट जाता है जिंदगी में पीछे, उन्होंने उस हिसाब से ये पोएम लिखी है। तो मैं ये नरेट करना चाहता हूँ दो अपने बख्शी साहब फैंस के लिए।
1: जरूर।
2: सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, मैं यहाँ आ गया वो वहां रह गई, कुछ ना मैं कर सका, कुछ ना मैं कर सका, देखता ही रह गया, कुछ ना वो कर सकी, देखती रह गई। लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, जो नहीं बट सकी चीज वो रह गई। याद पिंडी की आती है अब किस लिए, याद पिंडी की आती है अब किस लिए, मेरी मिट्टी थी जहलम में वो बह गई। इन जमीनों ने कितना लहू पी लिया, ये खबर आसमानों तलक है गई। रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, सरहदों पे खड़ी बेबसी रह गई। दे गई घर गली शहर मेरा किससे, दे गई घर गली शहर मेरा किससे, क्या पता किससे बख्शी वो क्या कह गई।
1: क्या बात है।
2: ये तकसीम के ऊपर बख्शी आपका जो दर्द था कि अपनी जन्मभूमि को पीछे छोड़ के आना पड़ा
1: जी जी
2: माँ की तरह, इस पोएम से ही जाहिर होता है
1: जी। आनंद बख्शी एक जमाने में फौज में थे, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगता था, वो तो फिल्मी दुनिया में बतौर गायक शामिल होना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका। मुंबई में उन्होंने संघर्ष किया और किस्मत ने उन्हें गीतकार बना दिया। सन 1962 में आनंद बख्शी को पहली कामयाबी मिली, फिल्म थी मेहंदी लगी मेरे हाथ। सन 1965 आनंद बख्शी की कामयाबी का एक बेमिसाल साल, क्योंकि तब आई जब जब फूल खिले। इसी बरस आई हिमालय की गोद में।

ये वो दौर था जब आनंद बख्शी बाकायदा एक कामयाब गीतकार बनने के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रही थी। सन 1967 में फिल्म मिलन के गाने उन्होंने लिखे।

0: आनंद बख्शी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। वो रेल से सफर कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी थी और गांव का एक व्यक्ति मिलन फिल्म का उनका एक गाना गा रहा था। आनंद बख्शी का दिल बहुत खुश हुआ और उन्हें यह एहसास हो गया कि अब वो पक्के गीतकार बन चुके हैं, क्योंकि अब वो जन जन तक पहुंच चुके हैं। आनंद बख्शी के कुछ गानों की कहानी फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
1: शुक्रिया यूनुस जी, और मैं इतना खुश हूँ कि मैं विविध भारती पे हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं हर चैनल सुनता हूँ। मैं हिंदुस्तान में जितने चैनल हैं, बाहर के भी जो चैनल हैं, मैं ऑनलाइन सुनता हूँ। और मैं अभी भी कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई चैनल नंबर वन है भारती जो है, दैट इज एक्चुअली द रीडर्स डाइजेस्ट ऑफ रेडियो।
0: राकेश जी, बख्शी साहब की याद का दिन है और पूरा देश जो है वो उन्हें याद कर रहा है, संगीत के चाहने वाले, गीतों के चाहने वाले। हम चाहते हैं कि कुछ गानों के बनने की कहानियां आप सुनाएं।
1: बख्शी साहब का एक गाना था एक फिल्म में, जहाँ पर विलियन और वैम्प ने हीरो को बांध कर रखा हुआ है और उसका फैसला नहीं हो रहा कि क्या किया जाए इसके साथ। तो बख्शी साहब को एक लाइन याद आई, उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ी थी या कहीं कहानी में पढ़ी थी, कि जब इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ने हरमक हमला किया था हिंदुस्तान पे, तो तब जब किंग पोरस को कैद कर दिया गया, डिफीट कर दिया गया, तो तब ये सवाल उठा था कि क्या किया जाए उनका, उनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो उनको ये बात याद आई और जो राजकोषा साहब की फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश में जो सिचुएशन बनी, तो उन्होंने फिर वो वहां यूज किया, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।
0: क्या बात है, मतलब देखिए इतिहास से रेफरेंस लेके और उन्होंने उसे एक मॉडर्न गाने में बदल दिया।
1: यस यस,
0: एक तो अच्छा तो हम चलते हैं कि भी बड़ी दिलचस्प कहानी है।
1: हाँ, वो बख्शी साहब और जब सेटिंग चल रही थी गाने की, तो काफी वक्त निकल गया, मेरे ख्याल में एक दो दिन कुछ बात नहीं बनी, सेटिंग हो रही थी लक्ष्मी जी प्यारलाल और बख्शी साहब और डायरेक्टर साहब जीवन प्रकाश जी, और कुछ बात नहीं बन रही थी, कुछ मुखड़ा नहीं बन रहा था, कुछ अंतरे नहीं बन रहे थे, कुछ बन ही नहीं रहा था। जब तक मुखड़ा नहीं बनेगा फिर अंतरे नहीं निकल सकते, क्योंकि अंतरे मुखड़े से ही निकलते हैं। तो बड़े परेशान हो गए, फड़प हो गए वो लोग, और उन्होंने बख्शी साहब ने उठा, या बख्शी साहब उठे या लक्ष्मी जी उठे, उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, अच्छा तो हम चलते हैं। बख्शी साहब ने पूछा फिर कब मिलोगे, तो जब वो जवाब देने लगे तो बख्शी साहब ने उनको रोक दिया, उन्होंने कहा कि रुको रुको, बैठो बैठो, अभी मुझे एक आइडिया है। और वहीं उन्होंने वहीं थर्ड लाइन लिखी, जब तुम कहोगे, और उससे गाना गाने की शुरुआत होती है, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, आधी रात को, हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ, वही जहाँ कोई आता जाता नहीं।
0: क्या बात,
1: तो ये वहां से वो बात निकली।
0: अच्छा,
1: गाना है अपना, एक बार सुभाष भाई साहब आए थे घर पे
0: जी,
1: उन्होंने बख्शी साहब से कहा कि मैंने नई फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं आपको आज आके स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी सुनते सुनते वो रात हो गई और खाने का वक्त हो गया, और खाना वाना खाया, और जब खाना खा के जब हाथ धोने चले गए बख्शी साहब वॉश बेसिन पे, तो हाथ धोते धोते बख्शी साहब ने सुभाष जी का हिसाब को कहा कि एक यार, मुझे एक लाइन याद आ रही है, तेरी फिल्म का नाम सौदागर है, मुझे एक लाइन याद आ रही है, सौदागर सौदागर सौदागर, दिल लेकर दिल देकर। वॉश बेसिन में हाथ धोते धोते वो लाइन उनके दिमाग में आ गई। एक और मुझे बड़ा अच्छा किस्सा याद आ रहा है कि एक बार वो बख्शी साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे बम्बई, क्योंकि शायद फादर आ रहे थे बाहर गांव से, तो वो बम्बई सेंट्रल स्टेशन जा रहे थे उनके अपने पिताजी को लेने के लिए। उनके साथ एक दोस्त था उनकी गाड़ी में, उनके दोस्त अपने दोस्त की गाड़ी में गए थे, क्योंकि तब उनके पास पैसे नहीं थे अपनी गाड़ी खुद की गाड़ी खरीदने के लिए। तो दोस्त की गाड़ी में जा रहे थे और बख्शी साहब बैठे थे बाजू में, दोस्त चला रहे थे, तो वहीं पर रास्ते में कहीं बख्शी साहब ने गाड़ी रोक दी।

0: लिखना है। उन्होंने कुछ अपना उनके पास एक, जब उनके पास किताब नहीं रहती थी ना, तो वो अपना 555 सीजर पैकेट पे पीछे लिख देते थे लाइनें जो भी था, क्योंकि पेपर तब तो मोबाइल नहीं था, कुछ लोग हमेशा पेपर लेके नहीं घूमते थे, पेन तो हमेशा रहता था जेब में, राइटर हैं तो हमेशा पेन लेके घूमते थे। और 3-4-6 महीने बाद जब एक बार ट्रायल हुआ फिल्म का, तो बख्शी साहब ले गए अपने दोस्त को ट्रायल के लिए, चलते कोई नई फिल्म दिखाता हूँ लगने वाली 2 हफ्ते में, और चले गए फिल्म देखने। और जब वो गाना आया तो बख्शी साहब ने बोला, याद है तेरे को हमने वो खूबसूरत लड़की को देखा था, तूने क्या कहा था, तूने कहा था क्या रूप पाया इस लड़की ने, तो मुझे वहीं पे लाइन स्ट्राइक की थी और मैंने ये गाना लिखा था तब कि रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कहीं हमसे ना हो जाए।
1: ओहो, तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी जिंदगी की घटनाओं को उन्होंने गीत का रूप दे दिया। कोई एक घटना बताइए, एक फादर के तौर पर कैसे थे बख्शी साहब, पिता पुत्र की कोई घटना याद कीजिए।
0: हजारों घटनाएं हैं, 2 घटनाएं जो हैं, एक तो जब मैं छोटा था तो हमेशा रात को लेट आते थे काम से, क्योंकि 70s में बहुत पॉपुलर हो गए थे बख्शी साहब, 68-64 के बाद बहुत पॉपुलर हो गए थे, जब जब फूल गले रिलीज हो गई थी, मिलन आ गई थी, आराधना आ गई थी, तो ही वॉज वेरी पॉपुलर, वेरी इन डिमांड, तो लिखते भी थे 10-15 घंटे डेली, 10 घंटे लिखना डेली, फिर रात को फिर दोस्तों की पार्टी, फिल्मी पार्टी में जाना, इवेंट्स में अपना अवार्ड फंक्शन में जाना, काफी बार लेट आते थे रात को, हम सो जाते थे, बख्शी डैडी आए घर पे, लेकिन हम तो सोए हुए रहते थे, 2 बजे आते थे, 3 कभी 3 बजे आते थे। तो जब मैं बहुत छोटा था, उनकी आदत थी, वो हमेशा आके सर को या बदन को हमारे थपथपाते थे, यू नो लाइक जैसे माँ कैसे लोरी गाती है बच्चे के लिए, वो हमेशा वो बच्चे को थपथपाती है हाथ से, यू नो हाथ के हाथ ऐसे लगा के टप टप करके, तो वो हमेशा रात को आके ही शुड डू दैट फॉर टू मी एंड टू माई ब्रदर टू माई सिस्टर। लेकिन उनके हाथ लगाने से मैं जाग जाता था, जब मैं जाग जाता था वो शर्मा जाते थे और वो चले जाते थे, फिर वो फिर नहीं करते थे वो छोटा कोई लोरी सुनाना या कुछ। तो मुझे याद है कि मैं हमेशा फिर जब आते थे, अगर मैं उठ जाता था तो मैं आंख बंद ही रखता था ताकि उनको पता चल जाएगा तो चले जाएंगे, मैं आंख बंद करके उसका मजा लेता था उनकी लोरियों का। दूसरी मुझे एक बात याद है कि जब शायद कॉलेज में था, तो मैंने नाश्ता किया और अंडा छोड़ दिया, अंडा नहीं खाया मैंने, तो मेरे डैडी ने कहा कि तेरे को पता है संडे का भाव क्या है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, होगा 50 पैसे 25 पैसे जो भी होगा, 1 रुपया होगा, आई डोंट नो। तो इसे की जब तुम छोटे थे ना, तुम दो भाई दो बहने छोटे थे, तुम्हारी माँ एक अंडा 4 टुकड़े में बांट के तुम चारों को देती थी और खुद नहीं खाती थी ताकि तुमको न्यूट्रिशन मिले, तुम्हारी माँ ने ये प्राइस पे किया एक अंडे का, बिकॉज माय फादर वाज स्ट्रगलिंग फॉर एटलीस्ट 10-15 इयर्स ऑफ हिज करियर इन द डिग्री।
1: बिल्कुल,
0: तो तब उनके पास शायद अंडे के भी पैसे नहीं होते थे, तो एक ही अंडा हम चारों को बांटना पड़ता था फैमिली में। तो मेरे फादर ने कहा था कि ये है अंडे की कीमत, तो ये तुम्हारी माँ ने जो अंडे की कीमत दी है ना, वो अंडे की कीमत कभी नहीं भूलना, फूड कभी वेस्ट नहीं करना, खाना कभी वेस्ट नहीं करना।
1: क्या बात है,
0: भले वो एक अंडा ही हो।
1: क्या बात है,
0: इसी बात मुझे बड़ी अच्छी याद है कि एक बार मेरा कॉलेज में किसी के साथ अफेयर हो गया
1: जी,
0: और वो मेरे डैडी की पसंद भी नहीं थी, तो मेरे डैडी ने कहा कि मिलना जुलना सब बंद करो, ये सब लव वर्व नहीं चलता, अभी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करो। तो मैंने झट से एकदम रूडली उनको एकदम कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, मैंने कहा अरे आप तो आनंद बख्शी हो, आपने तो अभी लव स्टोरी में गाना लिखा है, आपने पिता में गाना लिखा, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, आपने लव स्टोरी में कुमार गौरव के लिए कितने अच्छे गाने लिखे हैं, आपने बॉबी में इतना अच्छा लगा गाना लिखा है, आपने रॉकी फिल्म में इतना लव स्टोरी लिखी, अच्छी गाने लिखे, आपने एक दूसरे के लिए कितने अच्छे लव स्टोरी गाने लिखे, अब अभी मेरा वक्त आया तो आप बोल रहे कि यू कैन नॉट मीट हर, अभी तुम्हारा रोमांस का टाइम नहीं है, पढ़ाई का टाइम है
1: जी।
0: तो मुझे डैडी ने कहा कि वो मेरा शौक नहीं है, वो मेरा काम है, काम में और शौक में फर्क होता है, वो मैं जो गाने लिखता हूँ लव स्टोरी के लिए तुम्हारे लिए नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ क्योंकि वो स्टोरी की डिमांड होती है, कैरेक्टर की डिमांड होती है, एक सिचुएशन की डिमांड होती है, वो मैं अपनी फैमिली के लिए लिखता, अब तुम्हारा वक्त है स्टडीज करने का, लव स्टोरी में पढ़ने का अभी तुम्हारा वक्त नहीं है।
1: क्या बात है, अच्छा अब मुझे बताइए कि बख्शी साहब की याद में आप कौन सा गाना समर्पित करना चाहेंगे अपनी तरफ से विविध भारती पर?
0: गाने तो बहुत है, हजार है, जैसे कि क्या होता है हर गाना आपको एक जब आप किस मूड में हो उस मूड के हिसाब से आपको कोई गाना अच्छा लगता है।
1: मैं समझ
0: सकता हूं। मुझे याद है एक बार मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था, मेरा अफेयर डामल डोल से चला गया था, यू नो विद अ गर्ल, कॉलेज में था शायद, वो मेरा अफेयर टूट गया था, मेरा बड़ा दिल का बड़ा मुझे दर्द हुआ था, तो मैं कम से कम 2 हफ्ते एक ही गाना सुनता रहा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया था। तो मेरे डैडी ने झट से एक बार रूम में आके पूछा था क्या हो गया तेरे को, 2 हफ्ते से एक ही गाना सुन रहा है मेरा, कुछ लफड़ा उड़ा नहीं हो गया लड़की के साथ कुछ? अच्छा मुझे बहुत पसंद है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है,
1: जीत
0: चाहेंगे हम अगर तू संग है, क्योंकि काफी वक्त हम जिंदगी में शायद अगर हमारे साथ कोई नहीं होना हम हार मान जाते हैं, तो अगर कोई हो साथ में, माँ हो, बाप हो, लवर हो, बिलवेड हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, तो हर एक इंसान को कुछ ताकत चाहिए, तो इसलिए वो गाना मुझे आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: क्या बात,
0: ऐसा ही एक गाना है बख्शी साहब का जो मेरे ख्याल में किसी की भी जिंदगी में काम आ सकता है, और ये गाना है फिल्म अंगार का, मुश्किल में है कौन किसी का, मुश्किल में है कौन किसी का, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज।

0: क्या बात है, क्या
1: क्योंकि
0: बात है।
1: काफी बार क्या होता है, हम जब मुश्किल में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दोस्तों पे, रिलेटिव्स पे, लेकिन काफी बार ये सब भाग जाते हैं ये लोग, और कोई साथ नहीं देता। तो बख्श साहब ने यही कहा था मुझे कि कभी भी तुम जिंदगी में तकलीफ में होगे तो खुद को याद करो हमेशा,
0: क्या बात है,
1: दुनिया अपने आप साथ चलेगी तुम्हारे,
0: क्या बात है
1: लेकिन पहले खुद को याद करो, किसी
0: जी,
1: और को याद करने से पहले, भगवान को याद करने से पहले भी पहले खुद को याद करो। तो
0: वाह,
1: ये लाइन, आई थिंक ये गाना किसी की भी जिंदगी के काम आ सकता है। मुझे लगता है यही एक अच्छा गाना हो सकता है जो किसी की जिंदगी के काम आ जाए।
0: जी राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बख्शी साहब की याद का दिन, और आपने ये लम्हे हमारे लिए यादगार बनाए, बहुत शुक्रिया।

0: आनंद बख्शी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने हर तरह के हर सिचुएशन के गीत लिखे हैं, और कमाल की बात यह है कि बातचीत को गीतों में बदल देने का हुनर है आनंद बख्शी के पास।
1: सुनो कहा सुना।

0: फिल्मी दुनिया के तमाम संगीतकारों के साथ आनंद बख्शी ने काम किया और कोई ऐसा रेडियो स्टेशन दुनिया में नहीं होगा और शायद दुनिया में कोई ऐसा हिंदी रेडियो स्टेशन नहीं होगा जहां से आनंद बख्शी के गाने नहीं बजते होंगे।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना,

फिल्मी दुनिया के युग बदलते चले गए, संगीतकारों की पीढ़ियां बदलती चली गईं और आनंद बख्शी का काम बदलता चला गया। जहां उन्होंने चित्रगुप्त के साथ लिखा तो आनंद मिलिंद के साथ भी लिखा, एसडी बर्मन के लिए गाने लिखे तो आरडी बर्मन के लिए भी लिखे, रोशन के लिए लिखे तो उनके बेटे राजेश रोशन के लिए भी लिखे, कल्याण जी आनंद जी के लिए लिखे तो विजू शाह के लिए भी लिखे। यानी संगीतकारों की ही कई पीढ़ियों के साथ बख्शी साहब ने काम किया। फिल्म फेयर पुरस्कारों की बातें करें, सन 1979 फिल्म अपनापन का ये